0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी युद्ध पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के दो प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन वन और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमरीका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
7: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में

पांच माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजिकांगे भी शामिल हैं। दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजिकांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का

0: बात करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
1: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबलेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबलेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंग गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
6: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारी, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
5: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर FM मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉर्गेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
8: Hey, you're a tune into FM Muradabad, 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

कहते हैं जिंदगी जो है वो आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देती है। हर चीज आपके हिसाब से हो, ये जरूरी नहीं होती। जिसने जन्म दिया है ना भाई, वो जानता है कि आपको कब किस सिचुएशन में किस तरीके से निकालना है और कब किस सिचुएशन में आपको डालना है। तो हर चीज अगर हम अपने मुताबिक प्लान करेंगे तो ये तो होगा नहीं मेरे दोस्त। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हालचाल है। एक बार फिर से एक बेहतरीन सुबह में आप सभी का बेहतरीन वाला वेलकम है जी। हाँ जी दोस्तों, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:21। आनंद के साथ हैं। आज तारीख बहुत ही स्पेशल है, 9 तारीख है, सितंबर का महीना है और आज बहुत ही स्पेशल दिन है। क्यों है स्पेशल बताऊंगा आपको। पहले तो आज वेंसडे मॉर्निंग है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। और आज के दिन बहुत सारी चीजें स्पेशल हो रही हैं। क्या स्पेशल है जरूर आपको बताऊंगा। ढेर सारे गाने भी हैं ऑफकोर्स आपके लिए। आज की सुबह की शुरुआत हमारी जुड़ चुके हैं आप ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक।

चलो भाई अभी जरा सी देर में आएंगे, ये अच्छे गाने आप तक पहुंचाएंगे, आपके ही मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद पे, सुनते रहिए आरजे आनंद को। जल्दी से लौट कर आता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं ना मेरे साथ 9837 896 896।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आपका। ढेर सारे संदेश लगातार मेरे पास पहुंच रहे हैं, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहां भी निकल चुके हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। 8:32 हो रहे हैं, सुबह का समय है, वेंसडे मॉर्निंग है। आप आनंद को सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद रेडियो स्टेशन पे। और चलिए श्रोताओं, बात कर लेते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण कुछ ऐसी खास बातों पर एक नज़र डालेंगे। जैसे कि आज के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ ही है, जो मैं देख पा रहा हूँ आज इतिहास के पन्नों को स्पेशल बना देता है। श्रोताओं आपको बता दें, 1949 में भारत के संविधान में सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज ही के दिन 1949 में, हाँ जी, यानी कि आज ही का दिन था वो 9 सितंबर का। आपको बता दें, युगांडा ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1967 में आज ही के दिन। और आपको बताते चलें, पाकिस्तान ने सबूतिया संघ स्वतंत्रता पर हासिल की थी 1991 में आज ही के दिन। और इसके अलावा एक और खास चीज़ जो आज के दिन को और भी बेहद ही महत्वपूर्ण बना देती है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट को बेस्ट एक्टर तथा कैटेगरीलिस्ट बेस्ट का एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो इनको प्रदान किया गया था सन 2007 में आज के दिन। और इसके अलावा आपको बता दें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय आज के दिन लिया गया सन 2010 में। श्रोताओं आज की तारीख थी 9 सितंबर, हाँ जी। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो मैं आपके साथ साझा कर रहा था इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। चलिए अब एक नज़र और डालेंगे आज के दिन में जन्मे कुछ खास महान लोगों का, जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। श्रोताओं उन्हीं में से एक नाम आता है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, जो भारत की जूडो खिलाड़ी माने जाते हैं, बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं। 1998 में इनका जन्म हुआ। जी हाँ श्रोताओं, तुलिका मान जी का जन्म हुआ था आज के दिन। इसके अलावा आज के दिन जन्म हुआ था महबूब खान, भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक थे। सन 1907 में इनका जन्म हुआ था। श्रोताओं आज ही के दिन विक्रम बत्रा जी का जन्म हुआ 1974 में, भारतीय सैनिक थे। श्रोताओं आज ही के दिन जन्म हुआ था इनका भी। और गोपाल चंद्र जी का जन्म हुआ था सन 1874 को, उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा भाषाविद थे। श्रोताओं इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। एक और नाम जो बहुत ही स्पेशल बनाता है आज के दिन को, उनका जन्म हुआ था 1932 में, क्रांत कुमार जैन जी का, जो हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार थे। श्रोताओं आज ही के दिन इनका भी जन्म हुआ। तो ये थी आज के दिन से जुड़े कुछ महान चीज़ें जिन लोगों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। ये वो महान लोग हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट दिया है, जिन्होंने कुछ यूनिक किया है, जिनका नाम आज इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। श्रोताओं हम भी आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने कर्मों की किताब उठाइए और कुछ बेहतर से बेहतरीन लिख डालिए। जब आप बेहतर से बेहतरीन लिखेंगे तो यकीन मानिए, आज नहीं तो कल आपका वो बेहतरीन काम का परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। और कहते हैं ना, जब आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, जब आप सही दिशा में प्रयत्न करते हैं, तो यकीन मानिए सब कुछ बहुत ही बेहतर से बेहतरीन होता है। बस अपने आप पे आपको भरोसा रखना है, अपने काम पे आपको भरोसा रखना है, यकीन मानिए सब बहुत अच्छा होगा। एग्जैक्टली गाइज, आनंद के साथ हैं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। घड़ी मिला लीजिए अपने स्टूडियो की घड़ी के भैया मुताबिक, वक्त बता रहा हूँ 8:35 हो रहे हैं।
1: इस खिलाड़ी से इंटरनेशनल खिलाड़ी तक, हेरा फेरी से रुस्तम तक, सिंह स्कीम से बच्चन पांडे तक, इनकी कोई भी मूवी आप देख लो, आप तब तक बैठे रहोगे जब तक मूवी का टी एंड ना हो जाए। अपने अतरंगी से स्टाइल और अपने आम डायलॉग से एक खास पहचान बनाने वाले हम हैं सिंह।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
2: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
1: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: क्या मेरी कसम
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय
0: बिंदास मॉर्निंग। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
8: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
7: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
8: अरे नहीं,
9: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
8: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
7: अच्छा?
8: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
10: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
11: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मिस खिलाड़ी से इंटरनेशनल खिलाड़ी तक, हेरा फेरी से रुस्तम तक, सिंग स्कीम से बच्चन पांडे तक, इनकी कोई भी मूवी आप देख लो, आप तब तक बैठे रहोगे जब तक मूवी का टी एंड ना हो जाए। अपने अतरंगी से स्टाइल और अपने आम डायलॉग से एक खास पहचान बनाने वाले हम हैं।

वेलकम बैक है जी। आज बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सुन रहे हैं आज के हीरो के बारे में। ऑफ कोर्स आपको पता चल ही गया होगा मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। मेरे पास ढेर सारे मैसेज आ गए हैं। सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया, हेलो सर, हाय, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रिंस। हाय प्रिंस, गुड मॉर्निंग, ये लिखते हैं, मुरादाबाद से हूँ और गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके सुनकर। थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच, आपको हमारे गाने अच्छे लग रहे हैं। इसी बीच मेरे पास मैसेज आया श्वेता का, लिखती है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, हाउ यू, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड श्वेता, आई एम वेरी गुड। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है शिखा जी का, मानसरोवर कॉलोनी से, लिखती हैं, आनंद भाई वेरी गुड मॉर्निंग, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके शो से मिल जाती है और बहुत ही बेहतरीन गीत आप प्ले करते हैं सुबह सुबह, एकदम 90s का पिटारा खोल देते हैं। हाँ जी, पूरी पूरी कोशिश होती है मैडम कि हम सुबह सुबह जब रेडियो पर आएँ तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं ना रेडियो पे। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुमन, कैसे हो आनंद जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ सुमन जी, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने सारे मैसेज करते हो और बैक टू बैक जब हमारे बारे में पूछते हो तो सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, थैंक यू वेरी मच। एक और व्हाट्सएप आ गया है, हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ जी। इन्होंने लिखा है, सर सुबह सुबह अपने शो पर आप जो मुरादाबाद से जुड़ी जानकारी देते हो बहुत अच्छी लगती है और हमें पता चलता है कि कौन से हीरो का बर्थडे, क्या कुछ खास हो रहा है, ये सब कुछ आपके शो में जानकारी मिलती है, थैंक यू जी। रिहाना जुड़ चुकी है मेरे साथ, रानी नागल से गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। चमन लाल साहब जी का मैसेज पहुंचा है पुतली घर रोड से। एक मैसेज आया है चुड़िया टोला से, अरे वाह बड़ा यूनिक नाम है, इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज प्रियांशु, गुड मॉर्निंग प्रियांशु, ये लिखते हैं, सर आज रेडियो सुन रहा हूँ काफी टाइम के बाद, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, क्या बात है, इसी बात पे बेहतरीन गाना यार। आज ना एक बहुत अच्छी चीज हुई है मेरे साथ सुबह सुबह, क्या हुई है अभी लौट कर आता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। 8:55 हो रहे हैं, स्टेशन क्लॉक में आप कहीं मत जाइए, आई बी राइट बैक, अभी आता हूँ, उसके बाद कुछ खास बातें आपको बताने वाला हूँ, अपने देश दुनिया में क्या चल रहा है, मुरादाबाद में क्या हो रहा है, इस पे भी बात करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, आई बी राइट बैक, सुनते रहिए मुरादाबाद रेडियो आनंद के साथ।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। नमस्कार, राधे राधे। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और प्लेटफॉर्म है एफएम मुरादाबाद 89.6, जो है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और मैं आपका दोस्त भूपि शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ। आज का सुविचार, जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए, ताकि कोई उसमें कुछ घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाएं उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। नमस्कार, राधे राधे। भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज, बिंदास वॉइस नोट, जो सुनाई देंगे सारे शहर को, सारे देश को, और हो सकता है सारे संसार को। राधे राधे। नंबर 98-378-96-896। नमस्कार, राधे राधे।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
6: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
5: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉर्गेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
7: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
5: सुबह के 9:02 हो गए हैं और अभी हमारे साथ भूपी शर्मा जी जुड़े हुए थे नगर पंचायत पागवाड़ा से। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक वॉइस नोट भेजा, थैंक यू सो मच भूपी भाई, आपका वॉइस नोट सुन के बहुत ही अच्छा लगा। यार मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह आप जो भी अपनी प्यारी प्यारी वॉइस नोट पहुँचाते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच अपने प्यारे प्यारे वॉइस नोट देने के लिए। और इस घंटे Yes, तो अभी बिल्कुल मजा आएगा क्योंकि इस घंटे आप अच्छे गाने सुनेंगे। आज बर्थडे है किनका, जिनके बारे में
8: हम सभी
5: बहुत देर से मैं बात कर रहा था पाजी।
9: मैं सिर्फ तेरा महबूब, तू मेरी महबूबा।
5: Yes,
9: मुझे चाहे की बड़ा खूब मेरी महबूबा।
5: देखो यार आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स उनके बारे में आपको कब के पता चल चुका होगा, बहुत देर पहले ही पता चल चुका होगा, नहीं चला तो ये सुनो।
10: मिस खिलाड़ी से इंटरनेशनल खिलाड़ी तक, हेरा फेरी से रुस्तम तक, सिंह स्कीम से बच्चन पांडे तक, इनकी कोई भी मूवी आप देख लो आप तब तक बैठे रहोगे जब तक मूवी का टी एंड ना हो जाए। अपने अतरंगी से स्टाइल और अपने आम डायलॉग से एक खास पहचान बनाने वाले हम

0: एफ एम मुरादाबाद विशेष अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार।
1: कौन सा गाना है आपका नया वाला अक्षय कुमार का जो आपको बहुत पसंद है, जरूर मुझे मैसेज करके बताना आज की मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हालचाल है? सब बढ़िया चल रहा है। सूर्य देवता प्रकट हो गए और भाई साहब सुबह सुबह सूरज चाचा को देख के ऐसा लग रहा है सर्दियों वाली फील आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ऐसी अच्छी अच्छी सी वाइब आ रही है ना सुबह सुबह, आई डोंट नो आपको आ रही है नहीं, मुझे तो भाई साहब सच में आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है यार सच में एकदम से ना ठंडी वाली ठंड एकदम आ गई। मतलब जरा सी देर में ये गाना भी आपके रेडियो पर आएगा। आज पाजी का बर्थडे है, ये वेंसडे मॉर्निंग है। दिला बुर्ज खलीफा नहीं चाहिए यार अभी, आप बस मेरे को एक बुर्ज खलीफा चाय का प्याला दिला दो यार। मतलब सुबह सुबह चाय मिल जाए पीने को और क्या ही चाहिए यार। हाँ जी, कैसे हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में? मैं कह रहा हूँ सब बढ़िया चलना चाहिए भाई।
2: हर इशारा नया नया है, कौन जाने है सवेरा कहाँ।
1: एग्जैक्टली यार,
2: जर्रा जर्रा लम्हा लम्हा नया,
1: क्या लिरिक्स है इस गाने के।

अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जरा सी देर में बेहतरीन गाने अक्षय कुमार का बर्थडे है। एफएम मुरादाबाद की ओर से विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे अक्षय पाजी। आज अक्षय पाजी का बर्थडे यार, सो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी गाने के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं आप 9837896896 पर। एक पजल लेकर आता हूँ जरा सी देर में। क्या चल रहा है आसपास ये भी बताऊंगा थोड़ी सी देर में। आई विल बी राइट बैक।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अजय आनंद इज बैक।

0: वैरायटी से एंजॉय कर रहे हैं आप बेनी दियाल की आवाज। तू ही तो है कुमार मेरा। वाह व्हाट अ सॉन्ग, सच में प्रीतम का म्यूजिक इरशाद कामिल ने लिखा, व्हाट अ सॉन्ग यार, सुबह सुबह बहुत ही बेहतरीन गाना। ये जो तुमने इसमें ऐड किया है ना बाबू, इसका हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। वेल बाय द वे वेलकम बैक हियर वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी। सुन रहे हैं आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो, लेडीज एंड जेंटलमैन 9:13 हो रहे हैं, 9:13 आगे बढ़ते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ बिग शाउट आउट आज की मॉर्निंग आपके नाम होगा यार, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे हौसले अफजाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें फटाफट से अभी एक अलर्ट जारी किया गया है कि भैया देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है एक बार फिर से, कि भैया कुछ इन इलाकों में जो है बारिश होने की संभावना है, इन राज्यों में बारिश होने की संभावना है। भाई देखो मैं तो कह रहा हूँ मुरादाबाद में बहुत बारिश होगी, कोई बारिश नहीं चाहिए भैया यहाँ पे, बारिश से जो ना परेशान हो गए हैं। लेकिन अभी जो इंटरनेट पे एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ना सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला ट्रेंड आ गया है भाई, पिक्चर्स वाला 80s का ट्रेंड कम बैक हुआ है सोशल मीडिया पे। आप जैसे इंस्टाग्राम खोलोगे आपको सारे नए लोग पुराने वाले लुक में नजर आ रहे हैं, हो क्या रहा है सोशल मीडिया पे। भैया अगर अभी तक आपने ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो, हर इंसान जो है 90s की यादों में नहीं खोया भैया 80s की यादों में खो गया है। एंड बहुत ईजी है इसको बनाना, आप कैसे बना सकते हैं मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम खोलोगे ना आपको सारे लोग एकदम पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं, पुराने पुराने अच्छे अच्छे से कपड़े, फुल ऑन वाइब, 80s वाले हीरो हीरोइन लग रहे हैं ना आपके पड़ोसी भी देखने में इंस्टाग्राम पे। तो कैसे आप उसमें जो है खुद को भी आप कैसे यू नो इसमें जाकर के आप अपनी फोटो को भी बना सकते हैं ऐसा, अगर आपको ये करना है तो भाई मेरे पास है एक बहुत ही अच्छा फंडा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए फिलहाल अभी UPI के बारे में बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, अगर आपने समाचार सुने हैं तो उसमें भी आपको पता लगा होगा UPI के बारे में क्या बातें हुई हैं। देखिए भाई साहब मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, आज मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिनटेक फेस्टिवल में हिस्सा लिया और इस दौरान अपने संबोधन में PM मोदी जी ने कहा मुश्किल वक्त में भारत भरोसे पर बढ़ा और ये भरोसा जो है ना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें दुनिया के 11 देशों में UPI का इस्तेमाल हो रहा है, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। एंड आपको बता दें 25 अगस्त को UPI ने पूरे 10 साल कंप्लीट किए हैं, क्या बात है, मतलब पूरे के पूरे अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं 25 अगस्त में, वेरी नाइस यार, ये तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर चीज़ का अपना एक कहते हैं ना जब वक्त आता है तो उसकी बात ही अलग होती है। अभी वक्त हो गया गाने का, एक पज़ल आपके लिए थोड़ी देर में लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक स्कीम एक योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ, बहुत कमाल की योजना है। आपको पता है रैपिडो 6 महीने के लिए बंद हो गया है, क्या क्या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ना अरे भाई, अपने मुरादाबाद में नहीं हुआ है, कहां पर हुआ ये बताऊंगा अभी आपको। ये गाना भी आप तक पहुंच रहा है भाई साहब, एक ऐसा शहर अपने उत्तर प्रदेश का जिसने इंदौर को भी पीछे छोड़ा है, किस मामले में, साफ हवा के मामले में नंबर वन शहर बन गया अपने उत्तर प्रदेश का, आई कांट बिलीव दिस यार, कौन सा शहर है इसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल के लिए गाना केके की आवाज, प्रीतम का म्यूजिक, जरा सी इसमें सुनेंगे आप, वॉल्यूम बढ़ा लो यार और कहीं मत जाओ, कसम है आपको आपके इस प्यारे से गाने की जो आपका फेवरेट है, मैं भी लौट कर आ रहा हूँ। ठीक है जी,
1: यूर ट्यून इन टू FM मुरादाबाद 89.6 FM। सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर, 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर, किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी, 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक, आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने

0: पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: मिस खिलाड़ी से इंटरनेशनल खिलाड़ी तक, हेरा फेरी से रुस्तम तक, सिंग स्कीम से बच्चन पांडे तक, इनकी कोई भी मूवी आप देख लो, आप तब तक बैठे रहोगे जब तक मूवी का टी एंड ना हो जाए। अपने अतरंगी से स्टाइल और अपने आम डायलॉग से एक खास पहचान बनाने वाले

0: बढ़िया फिल्म थी यार ये। अक्षय बाजी की सारी फिल्में ताबड़तोड़ है यार। वैसे आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है अक्षय कुमार की, ये आप मुझे जरूर बताना मैसेज करके यार। स्टेशन ब्लॉक में गुड मॉर्निंग आनंद के साथ सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। कहाँ जा रहे हैं आप, स्टेशन रोड की तरफ है या दिल्ली रोड की तरफ है? नहीं है, आप कहीं भी जा रहे हो, चलो आप पहुंचते रहो, बाकी हम भी आपके साथ हैं आपके सफर को थोड़ा सा और एंटरटेनिंग बनाने के लिए। कुछ खास बातें और कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर जल्दी से मैं हाजिर हो गया हूं आपके रेडियो सेट पे। एंड एनीवेज, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। उससे पहले यार आपके लिए जोरदार तालियां, अच्छे मैसेज जो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इन मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज जो आप करते हो ना, ये मुझे बड़ा मोटिवेशन देते हैं यार। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, एक शहर है जो जिसने मतलब जो है इंदौर को भी पीछे छोड़ दिया। जब भी साफ सफाई के मामले में एक शहर का नाम लेते थे तो वो इंदौर आता था, राइट? लेकिन अभी आपको बता दें, स्वच्छता जो है, एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में उत्तर प्रदेश के 16 शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। राजधानी लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में देश का पहला स्थान हासिल किया है, जहां सोमवार को एक जारी मतलब आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है कि बयान के अनुसार स्वच्छ हवा के लिए किए जा रहे लगातार प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसमें आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और पर्यावरण की तरफ से एक वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में लखनऊ ने पहली बार इंदौर को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा स्थान हासिल किया है, और इनको जो है भाई साहब एक अलग लेवल का रिकॉर्ड दिया गया, यानी कि लखनऊ देश का सबसे साफ हवा वाला शहर बन चुका है। जी हाँ, जहां हम इंदौर को बोलते थे, अब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। भैया क्या बात है यार, देखो अपने लखनऊ की बात आई है, लखनऊ का जो टेस्ट है वो तो है ही कमाल का, लखनऊ का कपड़ा बहुत कमाल का है, वहाँ के लोगों में जो अदब है ना वो तो बहुत कमाल का है यार, उनका जो बात करने का तरीका वो मेरे को बहुत पसंद आया। लखनवी लोग होते ही बड़े कमाल के इंसान होते हैं। जोरदार तालियां यार, कितने अदब से पेश आते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई चलो भैया अपने उत्तर प्रदेश की बात, यानी कि अपने लखनऊ की बात हमने कर ली आपसे। और अभी हम बता रहे थे थोड़ी पहले आपको कि भैया आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है 80s वाला, आपने वो फोटो बनाई, यानी आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं व्हाट्सएप करके 9837896896 के माध्यम से। चलिए भैया, अभी मैं आपको ये भी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं फेस्टिवल टाइम में, तो आपको क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। देखिए दिवाली और छठ को लेकर जो है स्पेशल हो जाती है, आपको पता है स्पेशल ट्रेन्स भी चलाए जाते हैं ताकि आप आराम से अपने घर जा सको। सो दिवाली और छठ से पहले जो है हर कोई अपने घरों पर पहुंचना चाहता है, लेकिन इन त्योहारों से पहले जो है ट्रेनों में थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है, और ऐसे में जो है फेस्टिवल्स को देखते हुए ट्रेन तो स्पेशल चलाई ही जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ होती है टिकट, है ना। अगर आपकी टिकट नहीं होगी कन्फर्म तो आप कैसे जा पाओगे, और फेस्टिवल के टाइम पर इतना रश, तो इसीलिए भैया आप पहले से अपनी टिकट जो है डेफिनेटली बुक करा लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अच्छा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, फेस्टिवल सीजन में कैसे आपको कंफर्म टिकट मिलेगी, इस पे मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले मैं रैपिडो की बात कर रहा था यार, वैसे रैपिडो से फायदा तो है, नो डाउट यार। आपको बता दूं 6 महीने के लिए जो है बैन हुआ है रैपिडो, वो हुआ है चंडीगढ़ में। हाँ जी, पंजाब चंडीगढ़ में जो है 6 महीने के लिए रैपिडो बैन कर दिया है, एंड आई डोंट नो क्यों, अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए बंद हो गया है वहाँ पर। एंड ये अभी वहाँ पर जो भी लोग बाइक वगैरह या रैपिडो मतलब किसी फॉर्म में चलाते हैं उनके लिए भी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए सर्विस बंद कर दी गई है चंडीगढ़ में। देखो देश दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ आपको पता लगता है आनंद के साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक और बढ़िया गाना अक्षय कुमार का बर्थडे यार, एफएम मुरादाबाद 89.6 विशेष वेरी हैप्पी बर्थडे अक्षय पाजी। एक बार अक्षय पाजी से मिला था मैं दिल्ली में, एंड ही इज एक्सीलेंट पर्सनालिटी यार, क्या ऑरा है अक्षय भाई का। आज आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो अक्षय कुमार के साथ, और क्या चल रहा है, कौन कौन से और कमाल के लोगों का बर्थडे है, इनफैक्ट आज क्या स्पेशल डेज मनाए जा रहे हैं, इस पे भी बात करते हैं। अभी लौट कर आता हूँ फटाफट से, डोंट गो एनीवेयर, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक मेरे पास अच्छी पजल है आपके लिए, आज का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं अभी पर लौट कर आ रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको क्या सवाल होने वाला है आज का। लेकिन उससे पहले गाना
1: बाहों में आंसू लिए।
0: मीका सिंह की आवाज, देसी बॉयज का गाना, चलिए एंजॉय करते हैं।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
2: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
1: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
1: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190 श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: मिस खिलाड़ी से इंटरनेशनल खिलाड़ी तक, हेरा फेरी से रुस्तम तक, सिंग स्कीम से बच्चन पांडे तक, इनकी कोई भी मूवी आप देख लो, आप तब तक बैठे रहोगे जब तक मूवी का टी एंड ना हो जाए। अपने अतरंगी से स्टाइल और अपने आम डायलॉग से एक खास पहचान बनाने वाले

बेहतरीन ट्रैक निकाल दिया है। अक्षय कुमार का बर्थडे है आज, गोल मूवी का ये गाना है, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक। वॉल्यूम बढ़ा के सुन रहे हैं आप आनंद को। 89.6 FM आपके शहर का अपना रेडियो है, जहाँ पर बातें होती हैं दिल से दिल तक।

सच में यार कुछ गाने ना एकदम दिल को टच करके चले जाते हैं और उन्हीं में से एक गाना था ये जो भी आप एंजॉय कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन आनंद के साथ। वक्त हुआ है 9:37। वेलकम बैक है, बंदे के नाम आनंद है, बंदा हाजिर एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिस इज बिंदास मॉर्निंग। बात कर लेते हैं आज 9 सितंबर की, वेंसडे की सुबह है, आज सितंबर का दूसरा बुधवार है। बहुत बहुत बधाई आज के दिन की आपको। चलो अभी आपको बता दें हर साल 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसका एक मकसद है धुआं कम हरियाली ज्यादा, ई वाहन है भविष्य का वादा। ठीक है तो भैया हरियाली को थोड़ा सा महत्व ज्यादा देना है और ये जो विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाले जो वाहन है इनका स्पेशल डेज आज मनाया जाता है, इनको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आज अक्षय पाजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, ढेर सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, मैं डेफिनेटली पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आज हिमालय दिवस मनाया जाता है तो हैप्पी हिमालय डे। आज इसकी भी जो है सेलिब्रेशन की वाइब आपको फुल ऑन मिल रही है। सो हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल जो है सेलिब्रेट किया जाता है और हर दिन की तारीख जो है कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अब जो है आपको मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल भी मुझे करना है जिसके लिए ना मैं बेसब्री से वेट कर रहा था और आप लोग भी डेफिनेटली वेट करते ही हैं कि भैया आज क्या क्वेश्चंस हम नया लेकर आ रहे हैं, आज क्या हम आपके लिए स्पेशल करने वाले हैं ना। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ यार आपके रेडियो स्टेशन पे और ऑफकोर्स यहाँ पर आपके जो मैसेज आते हैं वो मुझे बहुत मजेदार लगते हैं। देखियो एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है, ये रिंकू जी का लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आनंद जी, आपकी आवाज और प्रोग्राम दोनों ही बहुत बेहतरीन लगते हैं। अरे वाह थैंक यू सो मच। चलो एक पहले क्वेश्चन उसके बाद एक हेल्थ अपडेट फटाफट देते हैं। आपको बताया जो अक्षय कुमार का बर्थडे है और एक थोड़ी सी पजल है जिसको आपको सॉल्व करनी है, मतलब एक छोटा सा मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ये तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी सुन लो यार। स्टोरी बहुत सिंपल है, शॉर्ट स्टोरी है, अगर आप जो है मुझे पहचान कर बता पाएंगे ये कौन सी कहानी है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर देना 9837896896 पे। अक्षय कुमार का बर्थडे, उन्हीं की फिल्म की एक स्टोरी है जो आपको सुना रहा हूँ और आपको बताना है कि कौन सी फिल्म की स्टोरी की बात कर रहा है आनंद, ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही स्पेशल है और ये कहानी है एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती और प्यार के बीच की जो है एक लकीर बहुत पतली हो जाती है। एक हीरो जो अपनी खुशियों से ज्यादा अपनी दोस्त की मुस्कान चाहता है और एक ऐसी कहते हैं ना कि जब लाइफ में कुछ अच्छी चीजें लिखी होती हैं तो वो हो जाती हैं और जब उसमें अच्छी चीजों में जब बुरा लिखा है ना तो वो भी हो जाता है। वो इस स्टोरी में हुआ है, इस फिल्म में हुआ है, बहुत ही कमाल की मूवी थी ये मूवी आपको गेस करनी है। और इस मूवी में मैं सबसे बड़ा आपको हिंट देता हूँ, जो आज जिनका बर्थडे अक्षय कुमार वो इसमें ना हीरो बनते हैं, ठीक है वो इसमें हीरो का रोल करते हैं। मैं आपको फटाफट इन शॉर्ट बता देता हूँ, इसमें हीरो का रोल प्ले करते हैं बेसिकली और बहुत ही पॉपुलर हीरो बन जाते हैं इस मूवी के वो। और इसमें जो हीरोइन होती है वो इनके यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी के रूप में काम करती है। अगर आपको समझ में आ रही है कौन से फिल्म की बात कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको अब बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये फिल्म सन 2002 में आई थी, बहुत ही कमाल की फिल्म थी। अक्षय कुमार का नाम इसमें राज मल्होत्रा होता है, बाकी दो एक्ट्रेस के नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो मैंने हाइड कर दिए हैं, ठीक है। आज अक्षय का बर्थडे, उन्हीं की फिल्म है। अक्षय कुमार का नाम राज मल्होत्रा है, वो इसमें एक एक्टर बनते हैं। बहुत ही आइकॉनिक मूवी है, इसका एक गाना है बहुत पॉपुलर एंड ऑफकोर्स अगर आप पहचानोगे तो मुझे मैसेज करिएगा 9837896896 पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9837896896 पर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन से फिल्म की बात कर रहा हूं। तो भैया आज की कहानी शुरू होती है दोस्ती से, जहां दो दिल एक दूसरे के बेहद ही करीब होते हैं। एक तरफ है हमारे हीरो जिनका दिल सिर्फ अपने यार के लिए धड़कता है और दूसरी तरफ एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जो अपनी जिंदगी जो है उनके साथ बताना चाहती है। एक दूसरे के लिए दोनों सपने देखते हैं पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और उसी बीच एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिनका नाम होता है अक्षय कुमार। यस अभी मैं उनका नाम भी आपको बता रहा था, इस मूवी में उनका नाम राज मल्होत्रा होता है और उनकी एंट्री हो जाती है इस मूवी में, जो इस मूवी के अंदर हीरो का रोल प्ले करते हैं और बहुत ही अच्छी मूवी थी। लेकिन लास्ट में क्या होता है थोड़ी देर में बताऊंगा, अगर आप समझ पा रहे कौन सी फिल्म है तो मैसेज करिएगा मुझे 9837896896 पे, 9837896896 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे मेरे पास मैसेज आने लगे हैं, ओ माय गॉड सच में यार आप लोग सच्ची ब्यूटीफुल लिसनर हो यार, इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज आप पकड़ लेते हैं।
थोड़ा इजी कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। मेरा आज का सवाल अक्षय कुमार का बर्थडे है, आप मुझे इन शॉर्ट बताओ कौन सी फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार ने राज मल्होत्रा का रोल प्ले किया था एंड उसमें वो एक हीरो बनते हैं। मतलब जैसे वो रियल लाइफ में तो हीरो है बट उस मूवी में भी वो एक बहुत पॉपुलर एक्टर बन जाते हैं। अगर आपको समझ में आए कौन सी मूवी है ये तो इन शॉर्ट आप मुझे नाम बता दो उस मूवी का, अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ अपना सही वाला जवाब व्हाट्सएप कर दो 9837896896।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की। और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: टेनिस खिलाड़ी से इंटरनेशनल खिलाड़ी तक, हेरा फेरी से रुस्तम तक, सिंगिस किंग से बच्चन पांडे तक, इनकी कोई भी मूवी आप देख लो, आप तब तक बैठे रहोगे जब तक मूवी का टी एंड ना हो जाए। अपने अतरंगी से स्टाइल और अपने आम डायलॉग से एक खास पहचान बनाने वाले
1: हम हैं।

Gasolier. Som un únic em sap. War song. नौ बज के 50 मिनट हो गए। ये मूवी भैया सबको याद है, लेकिन इस मूवी को लेकर मुझे लोग कह रहे हैं, आंसर कर रहे हैं कि आनंद जी ये मूवी होगी। तो देखो यार, इसमें ना अक्षय का नाम पता है क्या था ना आपको? मुझे नहीं पता, सीरियसली आपको पता है तो आप बता देना। लिटरली मैं भूल गया, समीर तो मुझे याद आ रहा है, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा यार। लेकिन अक्षय कुमार जी का नाम राज मल्होत्रा इस मूवी में तो बिल्कुल नहीं था भाई। कौन सी फिल्म थी जिसमें उनका नाम राज मल्होत्रा था, ये आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके।

0: भाई ऐसे तो आप लोग कभी जवाब दे ही नहीं पाओगे। चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ एंड आपके लिए आज की सुबह ना मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा इसका मतलब इस मूवी के गाने का बीस का पार्ट प्ले करता हूँ। आई एम श्योर आप आइडेंटिफाई कर दोगे मैं कौन से बेसिकली गाने की बात कर रहा था, मतलब आई मीन मूवी की बात कर रहा था। वो गाना जब मैं बजाऊंगा ना तो ऑफकोर्स आप समझ ही जाओगे, है ना। तो ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि सारे लोग गलत जवाब देने में लगे हुए हैं यार। कोमल मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह और कोमल जी आपने बिल्कुल जो है ना सही जगह पर निशाना मारा है। एग्जैक्टली मतलब कोमल जी हैं एक ऐसी जिन्होंने मतलब कमाल की ब्रिलियंट विनर जिन्हें मैं कह सकता हूँ अभी फिलहाल। ये जोरदार तालियां कोमल जी, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एकदम। मतलब आपने इतनी जल्दी गेस कैसे कर लिया, आई कैन बिलीव दिस यार। वेल बाकी लोग भी अभी गेस करेंगे। अच्छा मैं आपको ना एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, दिस इज योर हिंट। यहाँ पे जिस मूवी की बात करता हूँ उस मूवी का एक बेसिकली गाने का छोटा सा अंतरा प्ले करता हूँ, मतलब एक छोटा सा म्यूजिक प्ले करता हूँ, शायद आपकी थोड़ी सी नॉलेज में आ जाए। देखो ठीक है, ये जो म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ बेसिकली इस मूवी के गाने का बीच का एक बेसिकली म्यूजिक है छोटा सा, एंड दिस इज योर हिंट। आप जरा इसको सुनो और बताओ कौन सी पिक्चर में था ये। ठीक है अभी समझ आ गया, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। दिस इज योर हिंट, फटाफट मुझे मैसेज करो 9837896896। इस मूवी के अंदर अक्षय कुमार ना एक हीरो का रोल करते हैं और उनका नाम राज मल्होत्रा होता है। प्लीज अभी पहचानो। मैसेज करना है अभी आपने उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर।
1: मिस खिलाड़ी से इंटरनेशनल खिलाड़ी तक, हेरा फेरी से रुस्तम तक, सिंग स्कीम से बच्चन पांडे तक, इनकी कोई भी मूवी आप देख लो आप तब तक बैठे रहोगे जब तक मूवी का टी एंड ना हो जाए। अपने अतरंगी से स्टाइल और अपने आम डायलॉग से एक खास पहचान बनाने वाले हम

0: फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

वेंसडे की सुबह आप सुन रहे हैं आनंद को। 9 सितंबर की तारीख है, भगवान कृष्ण की आज छठी भी मनाई जा रही है। जो लोग जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करते हैं, आज उनकी छठी सेलिब्रेट की जा रही है। तो आज कड़ी चावल खाने को मिलेंगे। हाँ, फिलहाल वेंसडे की मॉर्निंग में आनंद के साथ है। अक्षय कुमार का बर्थडे है आज। ढेर सारे मैसेज तो आ गए मेरे पास, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिए। हो अफसोस, मुझे इस बात का हो रहा है कि सही जवाब नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल

0: सारे लोग डांस कर रहे हैं मुझे पता है।
1: सिर्फ तेरा महबूब तू मेरी महबूबा, मुझे चाहेगी बड़ा खूब मेरी महबूबा।
0: सुबह सुबह डांस करना अच्छा होता है, ये आपकी एक्सरसाइज में काउंट होता है। फिलहाल ये गाना सुन लिया आपने आनंद के साथ, अक्षय कुमार का बर्थडे है, ढेर सारी बातें हो रही हैं। अभी बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, 10:05 हो गए। एक बार अगर आप बनाना यानी कि केला अगर आप खाते हैं मॉर्निंग में, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है, आपकी एनर्जी बूस्ट करता है। एंड डेफिनेटली बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो इस्तेमाल करते हैं ब्रेकफास्ट में केला, तो अगर आप लेते हैं बनाना तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन केला और दूध का अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऑफकोर्स आपको ही पता है सदियों से ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो चलती आ रही है आपकी बॉडी के लिए। केला और दूध आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही एनर्जेटिक माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और भी बहुत सारे अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। स्पेशली ये मील के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही हेल्दी माना जाता है, बनाना एंड मिल्क, इसे कह सकते हैं बनाना मिल्क। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये आपकी मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट में एक ग्लास बनाना शेक लेते हैं तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है, बूस्टर का काम करता है। तो अगर आप बहुत बिजी रहती हैं और आपको लगता है आप ब्रेकफास्ट नहीं करके, पहले तो ब्रेकफास्ट स्किप भी मत करो, करके ही निकलो। बट अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो थोड़े थोड़े फ्रूट्स, यू नो एप्पल्स आप रख सकते हो, तो बनाना आप रख सकते हो, थोड़े सूखे ड्राई फ्रूट्स आप रख सकती हैं। जब भी आपको गाड़ी में या आपको ऑफिस में समय मिले, आप डेफिनेटली इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बॉडी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें अच्छी चीज़ों का डालना, राइट। हाय हाय,
1: मुझे चाहेगी बड़ा खूब मेरी महबूबा।
0: आनंद साहब कमाल गाते हैं, साथ में सुनिधि चौहान, बहुत ही अच्छा गाना अजनबी से अभी आप एंजॉय कर रहे थे। और मैंने आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था अक्षय कुमार का बर्थडे, मैंने कहा था आप मुझे बताओ फटाफट से कौन सी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार का नाम राज मल्होत्रा था और उसमें वो मूवी में हीरो बनते हैं, मतलब उस पिक्चर के अंदर वो एक्चुअली उन्होंने दिखाया कि कैसे एक हीरो की पॉपुलैरिटी होती है और एक हीरो को कैसे कैसे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो एक बहुत ही पॉपुलर हीरो बनते हैं उस मूवी के अंदर। एंड वो मूवी का नाम आपने मेरे को बताना था और उस मूवी का एक थोड़ा सा गाना भी मैं प्ले कर रहा हूँ। दिस इज योर हिंट, लास्ट चांस। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करिएगा, ढेर सारे मैसेज ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं। एक लकी कॉलर को शॉर्टलिस्ट करता हूँ, जोरदार तालियां आपके लिए। 10:07 का समय, एंड ऐसे ही बस आप लोग हमारे साथ ट्यून इन रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए आनंद विद यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, जुड़वा टू का ये गाना सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

0: देखो भैया, आपने इतनी प्यार से बुलाया इसलिए मैं चला आया। वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आनंद को सुन रहे हैं आप और ढेर सारी बातों के बीच लेकर आया हूँ एक लकी विनर।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
3: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
2: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
4: मुरादाबाद, तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
5: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारी, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
4: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं।

0: पवार साहब, ये दोनों भी हमारे शो के विनर बनते हैं। सर, आप दोनों के लिए भी जोरदार तालियां। कोमल जी, आपके लिए भी कंग्रेचुलेशन, आपने भी जवाब दिया। ऑल द वे बेस्ट। एंड ये विकास जी, निखिलेश जी जो है वो फिलहाल मुझे सुन रहे हैं इस वक्त अपनी गाड़ी में, और शायद अगर मैं आपका नाम से ही अनाउंस कर पा रहा हूँ तो सर पुलिस लाइन से इन्होंने मुझे मैसेज किया है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना बढ़िया काम करते हैं। सबसे पहले तो ऑल द वे बेस्ट यार, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज देती हैं हमारे पुलिस प्रशासन, भाई जोरदार तालियां। चलिए फिलहाल आप लोगों के मैसेज पढ़ के मैं यहाँ से आपको बोलूंगा बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। जल्दी होगी आपकी मेरी मुलाकात इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, फिर से होंगी और भी बातचीत। आप कहीं मत जाइएगा, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ईदगाह से मैसेज पहुंचा था शफी अहमद रईस दुल्ला अंसारी जी का, एंड लदावली कांटरोड से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक देवी, आदित्य कसाना जी भी मेरे साथ सही जवाब के साथ जुड़े थे। डी के अरोड़ा जी राइट आंसर के साथ चंदन नगर से जुड़े थे। रजा हुसैन साहब मेरे साथ जुड़े थे गोविंदपुर खुर्द से। एंड इसके अलावा मेरे पास मैसेज तो और भी बहुत सारे आए हैं। गुलाम चलानी पाशा जी ने एक वॉइस नोट पहुंचाया मेरे पास आज की मॉर्निंग, देखते हैं ये क्या पहुंचाते हैं।
1: आनंद सर, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब है हाँ, मैंने भी प्यार किया है मूवी
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: राधे राधे
0: राधे राधे जी
2: जी, जी। अक्षय कुमार की हाँ मैंने भी प्यार किया मूवीज की आप बात कर रहे हैं,
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: इसमें अभिषेक और
0: करिश्मा कपूर
2: थी।
0: एग्जैक्टली,
2: धन्यवाद।
0: थैंक यू अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: प्रोग्राम काफी अच्छे चल रहा है आपका, बढ़िया प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं।
0: थैंक यू मैम,
2: बहुत ही बिंदास प्रोग्राम है आपका।
0: जी जी,
2: आनंद जी के साथ सुनकर आनंद आ जा रहा है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, अभी फिलहाल बातें करने का टाइम नहीं है। और अमित वर्मा जी मेरे साथ जुड़े थे, लिखते हैं गाने अच्छे प्ले हो रहे हैं, सो अच्छा कर रहे हो, दोनों ही चीज बड़ी मजेदार लग रही है। थैंक यू सो मच अमित भाई। एंड मेरे पास कश्मीर से मैसेज आया था, बबलू जी मुंबई से मुझे मैसेज कर रहे हैं। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है गीता अंजान लक्ष्मी भाभी जी का, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग प्रिंस, मैं बढ़िया हूँ। हाय आनंद जी, आदाब, कैसे हैं आप? ये मुमताज राकेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीस पागवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपी शर्मा जी, रिहाना मेरे साथ जुड़ी थी आज की मॉर्निंग। ललिता कश्यप नवीन नगर से मेरे साथ जुड़ी आज की सुबह। एंड इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है? दुर्गेश सैनी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह। कोमल जी थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड आप लोगों ने सच में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने मैसेज भेज के डिलीट कर दिया, नॉट बैड, गलत बात। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी से स्टेशन ऑफ द नेशन पे। जिन लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किया उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल मॉर्निंग, बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: What's up?

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
2: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो लेकर। दोस्तों, वेनेसडे मॉर्निंग है एंड इतना ब्यूटीफुल दिन और बाहर का मौसम अगर बात करें तो बहुत कड़क धूप भी है। और आज का ब्यूटीफुल थॉट जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, दोस्तों, कभी कभी ना जिंदगी में हमें रास्ता नहीं मिलता क्योंकि जिंदगी चाहती है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं। आज किसी से आगे निकलने की कोशिश मत कीजिए, बस कल वाले खुद से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। याद रखिए एवरीवन, धीमी शुरुआत कोई हार्ड नहीं होती, बस चलते रहने का हौसला चाहिए। और वो हौसला आपके अंदर है, देखिए आप भी अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और रेडियो को भी सुन रहे हैं। यहाँ पर खुशी भी आ गई है आपके लिए, ढेर सारी खुशियां लेकर। वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 10:28 राइट नाउ। और आज तारीख है 9 सितंबर की, नवा महीना, 9 तारीख। और नवे महीने का नवा दिन भी है ना, 999 999 हो गए हैं। और दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है। क्या कुछ खास है सब आपको पता लगेगा। आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। क्या कुछ खास है सब आपको बताऊंगी। और देखिए, ये गाना मैं बहुत ही प्यारा सा ट्रैक यहाँ पर प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए, फ्रॉम द मूवी दी दनादन। और भैया, पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, हाँ, लेकिन जैसे ही एक तारीख आती है ना और सैलरी हाथ में मिलती है तो कैसे कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। पूरे महीने हम इंतज़ार करते हैं कि सैलरी मिलेगी और जैसे 31st या फिर महीने का लास्ट डे जब आता है तो हमारे अंदर ना बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत हैप्पी होते हैं कि अब सैलरी मिलने वाली है। और जब सैलरी हाथ में आ जाती है तो कैसे वो फर से उड़ जाती है पता ही नहीं चलता है। हाँ, इतने सारे खर्चे होते हैं, ओ माई गॉड। पर बाद में सोचते हैं, अरे यार, महीना कब पूरा होगा, कब हमारी सैलरी फिर से आएगी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन कि आपको जो सैलरी मिलती है ना, उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा के रखो, बहुत ज़रूरी है पैसों को सेव करके रखना। और बाकी मैं बहुत सारी बातें आप सभी से करने वाली हूँ, लेकिन अभी पहले गाना सुनवा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना।

किया। बात ही दोस्तों, ये ब्रेकअप सॉन्ग सुनकर कैसा लगा आपको आज की सुबह? एंड अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी ये दिल है मुश्किल। और इस खूबसूरत ट्रैक को गाया था अरिजीत सिंह, साथ में बादशाह, जुनिता गांधी और नकाश अजीजी की बहुत ही शानदार आवाज में ट्रैक आपने सुना। और दोस्तों, ये ब्रेकअप सॉन्ग सुनकर आपको क्या लगा कि आज किसी का दिल टूटा है? नहीं जनाब, आज तो मैंने भी सुबह सुबह ब्रेकअप किया है, लेकिन किसी इंसान से नहीं, अपने गुस्से से। हाँ दोस्तों, हुआ यूं कि आज की सुबह मैं जब उठी तो मैंने सोचा कि चलिए मेरा फोन जो है ना वो डाउन है, एंड उसको मैं चार्जिंग पर लगा देती हूँ। और सुबह उठकर मैंने फोन को चार्ज पर लगाया, एंड उसके बाद जब मैंने ऑफिस आने का टाइम हुआ ना, तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने फोन को उठाया कि चलो आज तो फुल बैटरी मिलेगी। लेकिन ऐसा जैसे ही मैंने फोन को देखा तो बैटरी ने कहा, मैडम आपका फोन ना कल रात से ही डाउन है। तब मुझे पता चला, ओहो, फोन तो मैंने चार्जिंग पर लगा दिया था लेकिन स्विच ऑन करना ही भूल गई थी। और बस उसी पल मैंने अपने गुस्से से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह गुस्सा करके अपना ही मूड क्यों खराब करना, क्यों दोस्तों? सोचा बैटरी भले ही लो है लेकिन खुशी का मूड लो नहीं होना चाहिए।

तो दोस्तों आज का लेसन बस बहुत सिंपल सा है कि हर छोटी बात पर गुस्सा मत कीजिए। कभी कभी स्विच ऑन करना भूलना भी जिंदगी का एक क्यूट सा मोमेंट है। और मैं आज की सुबह बस आपसे कहना चाहती हूँ, कभी अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो ना तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके लगातार खूबसूरत मैसेज आ रहे हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। मुझे पता है आप भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं, तभी तो मैं अपनी बातों को यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करती हूँ और आपके संदेशों को शामिल करती हूँ हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले मैं मैसेज पहुँचाती हूँ आज की सुबह। गुड मॉर्निंग खुशी दी, आपकी दोस्त अफरोज फातिमा कहती हैं कि हवाओं में खुशी घोल देती है आरजी खुशी की आवाज, हर दिल को छू लेती है आरजी की आवाज। ओहो हो, ये बात है भाई अफरोज, क्या चाहते हो आप सुबह सुबह इतनी तारीफें। और ये कहती हैं कि आज की सुबह मैम मुझे एक ट्रैक सुनना है। अच्छा, फ्रॉम द मूवी बाजीराव मस्तानी से, नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। एंड साथ में इनकी फ्रेंड भी हैं नजमा एंड लाइबा और रामपुर से शबनम जी हैं, और ये ट्रैक आपके लिए, थैंक यू। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया आज की सुबह। जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दुर्गी सैनी जी मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया प्रेम मित्र खुशी जी को, नमस्कार गुड मॉर्निंग। और ये कहते हैं कि प्रोग्राम सच में बहुत मजेदार है, शुक्रिया आपका। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से। अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आता है, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। दिलक्षा फातिमा जी का मैसेज आज की सुबह हमारे पास आया है, और इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे हम आप सभी के ट्रैक को प्ले करने का। एंड आप भी आज की सुबह मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, और बहुत सारी बातें हैं जो आप तक मुझे शेयर करनी है। बस आप बने रहिए खुशी के साथ और यूं ही मुस्कुराते रहिए। एंड अपने संदेशों को ना बिल्कुल भी भेजना मत भूलिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और ये गाना सुनिएगा

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर मॉर्निंग मसाला शो में। आरजे खुशी आपके साथ है और आप भी मेरे साथ हैं। एंड इस सफर को बनाएंगे आपके हम खूबसूरत। और दोस्तों, बदलते वक्त के साथ हमारी जिंदगी भी बदल रही है और अब सफर भी बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर साल 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवीडी यानी विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन के प्रति जागरूक करना और एक स्वच्छ एवं हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। आज पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कार, स्कूटी और बाइक भी हमारी सड़कों का हिस्सा बन रही हैं। कम प्रदूषण, शांत सफर और पर्यावरण को बेहतर रखने की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक वाहन एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया है। तो आज वर्ल्ड ईवी डे पर एक छोटी सी बात याद रखिए विवन, सफर वही खूबसूरत है जो मंजिल के साथ साथ हमारी धरती का भी ख्याल रखे। बदलाव की इस रफ्तार में हम भी अपना हाथ बढ़ाएं, पेट्रोल डीजल को कहें अलविदा और जब संभव हो इलेक्ट्रॉनिक सफर को अपनाएं। हैप्पी वर्ल्ड ईवी डे एवरीवन। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और सब मुझे बता रहे हैं कि मैम आज अक्षय कुमार जी का बर्थडे है और सुबह से आप उन्हीं के ट्रैक सुन रहे हैं। कुछ गाने मैंने भी प्ले किए हैं, उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज एक और खूबसूरत सा दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा डे है मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा इंतजार करो। आपके यहाँ पर जो संदेश आ रहे हैं उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कलोनी मुरादाबाद इरशाद हुसैन अंसारी जी का और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, शहीद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? आपका शो मॉर्निंग मसाला हम सुनते हैं एंड जो कि हमें बेहद पसंद आता है, शुक्रिया आपका। ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। बहुत खूबसूरत गीत है सर, इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें यहाँ पर मिला है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी का, हमारी तरफ से आप सभी को प्यारी प्यारी सी हेलो गुड मॉर्निंग। और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं फ्रॉम द मूवी हीरो से, बिल्कुल मैम हम ये ट्रैक आपको सुनवाएंगे, ठीक है। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर गुलाम जलानी पाशा जी का और आज की सुबह ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है आरजे खुशी सिस्टर जी को, हमारा गुड मॉर्निंग। अजीत कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया और साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, कांट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह और ये कहते हैं अक्षय कुमार जी उफ राजीव भाटिया जी का आज बर्थडे है। जी सर, एंड मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगी, ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करिए आप। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से गुड मॉर्निंग आज की सुबह ही पहुंचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती हैं आज कृष्ण भगवान जी की छठी भी है। हाँ जी बिल्कुल मैम, इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें भी लिखी हैं कि राधा का प्रेम, यशोदा का दुलार, कान्हा की मुरली और वृंदावन का प्यार, जिसके हृदय में बस जाए श्री कृष्ण का नाम, उसके जीवन में खुशियां रहे हर सुबह शाम। अरे वाह क्या बात है मैम, कमाल कर दिया आपने तो। और नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि माखन चुराया दिल भी चुरा लिया, कान्हा ने प्रेम का रंग सजा दिया, मुरली की धुन में ऐसी मिठास है, श्री कृष्ण का नाम ही जीवन की आस है। और नेक्स्ट इन्होंने एक लाइन और लिखी है बड़ी खूबसूरत सी कि अंदाज अलग मेहनत बेमिसाल, अक्षय कुमार हैं सबके दिलों के लाल, ओहो हो हर किरदार में दिखता है हुनर शानदार, इसलिए तो हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार। वाओ
क्या बात है मैम, ये तैयारी आपने पहले से करके रखी थी, बताइए मुझे। बहुत खूबसूरत आपने लिखा है एंड ये ट्रैक सुनना चाहती हैं, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। अरे वाह क्या बात है भाई, हाँ सबके ड्रीम होते हैं पहले कि मेरी नौकरी लगेगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करने वाली हूँ, ये खरीदने वाली हूँ, ये शॉपिंग करूँगी, वहाँ घूमने जाऊँगी, है ना। तो अक्षय बाजी का ये ट्रैक हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, बहुत प्यारा गाना चुना है आज की सुबह आपने। एंड दोस्तों आपके भी यहाँ पर मैसेज हम शामिल करेंगे, लेकिन पहले ये गाने सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे, ठीक है। आप इंतज़ार कीजिए और अपने संदेश पहुँचाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9833-7896-896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ मुस्कुराते भी रहिए, ठीक है। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है और सुनिएगा ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं को पसंद है मैं जानती हूँ।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

एग्जैक्टली दोस्तों, जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आती है, नो डाउट। और अभी आपने सुना बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक, लिरिक्स कितने ब्यूटीफुल थे ना दोस्तों। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी यूं ही बदलती रहेगी। और लाइफ ही देखिए, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हैप्पीनेस भी आती है ना। सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और जब खुशी आती है ना, तो क्या होता है ना, वक्त का पता नहीं चलता है, क्योंकि सब लोग हमारे साथ होते हैं। और जब थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आती है हमारी लाइफ में, तकलीफें आती हैं, तो फिर हम क्या होते हैं ना, हमारा साथ बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग देते हैं। तो इसीलिए वो पीरियड जो होता है, वो टाइम जो होता है ना, वो हमें बहुत लॉन्ग लगता है। लेकिन धीरे धीरे समय चलता रहता है, समय रुकता नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए चाहे खुशी हो या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी चाहे बदलती रहे। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप परेशान मत होइएगा ज़्यादा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? और समय मैं आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। 11:08 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों। और आपको बताएं कि कुछ पहाड़ ना सिर्फ ऊंचे नहीं होते हैं, वो हमारी सांसें, हमारी सांसों, हमारी नदियों और हमारी यादों से जुड़े होते हैं। और उन्हीं में से एक है हमारा हिमालय। जी हाँ दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत कहते हैं प्रकृति की उस खूबसूरत तस्वीर के साथ, जिसे देखकर मन बस यही कहता है कि काश कुछ पल बस यहीं रुक जाऊं। आज यानी 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि हिमालय सिर्फ बर्फ से ढकी खूबसूरत पहाड़ों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण, नदियों, जैविक विविधता और जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए दोस्तों, सुबह सुबह पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती सूरज की पहली किरण, बर्फ से ढकी सफेद चोटियां, देवदार के पेड़ों से आती मिट्टी और बारिश की खुशबू, वादियों में बहती ठंडी हवाएं, दूर कहीं झरने की आवाज और बादलों के बीच छिपते निकलते पहाड़, ये सिर्फ नजारा नहीं है, प्रकृति की लिखी हुई खूबसूरत कविता है। और हिमालयों की वादियों में जाने वाला हर इंसान शायद यही महसूस करता है कि शहर में ज़िंदगी दिखाई देती है, लेकिन पहाड़ों में ज़िंदगी महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, जिस हिमालय को देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, उसकी खूबसूरती और नाजुक परिस्थितियों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। बढ़ता प्रदूषण, नियोजित निर्माण, जंगलों पर दबाव और जलवायु परिवर्तन हिमालय क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। तो दोस्तों, पहाड़ों पर जाइए तो उन्हें सिर्फ तस्वीरों में कैद करके ना लौटें, उनकी खूबसूरती को बचाने की जिम्मेदारी भी अपनाएं। हैप्पी हिमालय डे एवरीवन। प्रकृति को प्यार कीजिए, पहाड़ों को सम्मान दीजिए, क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों की विरासत भी है। और एक प्यारा सा गाना मैंने यहाँ पर चुना है, वो मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर और भी संदेश आए, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए, हाय मैम गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रिंस, मुरादाबाद से प्रिंस ने मैसेज पहुँचाया है आज की सुबह। और ये एक ट्रैक सुनना चाहते हैं जीवन साथी, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आज अक्षय कुमार जी का जन्मदिन है एफएम मुरादाबाद, और मेरी तरफ से अक्षय कुमार जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं आप, तेरे दिल में आ गए हम, फ्रॉम द मूवी आरजू। एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अमित कुमार वर्मा जी, हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, खुशी जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग,
और आपने जो ये शायरी लिखी है ना, बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं, इनको हम ज़रूर शामिल करेंगे सुजाता जी, थोड़ा इंतज़ार कीजिए सुजाता मैम। तो चलो दोस्तों, कुछ खूबसूरत गाने यहाँ पर जो मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, एंड ये गाना मैंने यहाँ पर आज की सुबह सेलेक्ट किया है फ्रॉम द मूवी राम तेरी गंगा मेली से। बहुत प्यारा गाना है, आप सभी को पसंद आएगा, लता जी की आवाज़।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। और अभी सुना आपने ये अमेजिंग ट्रैक। दोस्तों, बॉलीवुड में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी अपने एक्शन जो कभी एक्शन करते हैं, कभी कॉमेडी से हंसाते हैं, कभी देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं और अपने स्टाइल से तो हर बार दिल जीत लेते हैं। जी हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार जी की। 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में जन्मे अक्षय कुमार जी का असली नाम आपको पता है ना क्या है? उनका पूरा नाम है राजीव हरिओम भाटिया। फिल्मों में अपने शानदार एक्शन, कॉमेडी और अलग अलग तरह के किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अक्षय कुमार जी को प्यार से खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है। और दोस्तों, अपने लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने उन्होंने फिल्में तो एक से बढ़कर एक करी हैं और अभी भी वो कंटिन्यू काम कर ही रहे हैं। और दोस्तों, उन्हें कई यादगार किरदार दिए गए हैं और पद्मश्री के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी अपने नाम किया है उन्होंने। तो आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से खिलाड़ी कुमार जी को ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन की। और दोस्तों, अब थोड़ा सा बॉलीवुड क्यूज हो जाए, क्यों हम भी तो जाने आखिर अक्षय कुमार जी के कौन कौन दीवाने हैं। तो आज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा,

दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्षय कुमार जी की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उनका किरदार राजू के नाम से बेहद लोकप्रिय हुआ था? जी हाँ, आपको बताना है अक्षय कुमार जी की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उनका किरदार राजू के नाम से बेहद लोकप्रिय हुआ था। आपको उस फिल्म का नाम मुझे बताना है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बस इतना छोटा सा आपको काम करना है आज की सुबह। और अभी हमारे पास कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आए तो मैं उनको भी इमीडिएटली प्ले कर लेती हूँ यहाँ पर। क्या पहुँचाती हैं हमारी जो ऑडियंस है आज की सुबह, हमारे लिसनर्स, ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं आज की सुबह। गुड आफ्टरनून मैम। अरे बाबा, अभी गुड मॉर्निंग में गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं आज की सुबह सनी अग्रवाल, काशीराम नगर मुरादाबाद से। और ये कहते हैं कि मैम, आज मेरा भी एक ट्रैक प्ले कर दीजिएगा। श्योर, मैं प्ले करूंगी। थैंक यू सनी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। अस्सलाम वालेकुम खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ये नेहा जी का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से। और ये आज अपने भाई के लिए एक ट्रैक सुनना चाहती हैं। बिल्कुल सुनवाएंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है गुड मॉर्निंग सीमा अंसारी जी का। और ये सॉन्ग सुनना चाहती है, नाचा नाचा कहाँ नाचा। वही, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं पर रहने वाले हैं, आप चिंता ना करो। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हाय मैम कैसे हैं आप? आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। आयशा जी का मैसेज हमारे पास आया है बागवाड़ा से। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? और ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह हरिओम महेश्वरी मुरादाबाद लाइन पर से। तो चलिए दोस्तों, कुछ खूबसूरत ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं। और मैंने आज की सुबह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, पता है आपको? भूल गए आप? क्या कह रहे हैं कि आपको पता है? वेरी गुड, तो जल्दी से अपना जवाब पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज की सुबह अक्षय कुमार जी की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उनका किरदार राजू के नाम से बेहद लोकप्रिय हुआ था। आपको उस फिल्म का नाम बताना है आज की सुबह, और हमारे शो का लकी सुपरस्टार आपको बन जाना है। चलो अभी गाना सुनो।

0: चाचा चाचा जरा जल्दी चला।
1: समथिंग स्पेशल टू द पार्टीज एंड ऑल द परजॉइन।

हेलो हाय एवरीवन, इतने सोने सोने गाने सुन के तो आप नाचने लगे हो। हाँ, अच्छी बात है, मैंने इसीलिए ऐसे ट्रैक प्ले किए ताकि आप थोड़ा डांस वांस कर लें। एंड जब डांस करते हैं ना तो हमारी बॉडी में ना और एनर्जी आ जाती है एंड हमारी बॉडी फिट भी रहती है, राइट? तो दोस्तों, आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था और उसके हमारे पास सही जवाब भी आ रहे हैं बहुत सारे श्रोताओं के बैक टू बैक। मानना पड़ेगा आपको, आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि अक्षय कुमार जी की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उनका किरदार राजू नाम से बेहद लोकप्रिय हुआ था, पॉपुलर हुआ था। तो बस आपको उस फिल्म का नाम मुझे बताना है। एक मौका और आपको देते हैं, और समय में आपको बता देती हूँ, राइट नाउ वक्त हुआ है 11:41। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ना अक्षय पाजी की तरह एकदम फिट दिखना, तो आपको क्या करना होगा मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, अक्षय कुमार जी की फिटनेस की खास रूल्स मैं आपको बताती हूँ जो वो एवरी मॉर्निंग करते हैं। सुबह जल्दी उठना, अक्षय कुमार जी लंबे समय से जल्दी उठने और दिन की शुरुआत जल्दी करने के लिए जाने जाते हैं। एंड वो मॉर्निंग में उठते हैं सुबह 4 बजे और नेचुरल वर्कआउट जिम के साथ साथ वे स्विमिंग, योगा, मार्शल आर्ट, रनिंग और आउटडोर एक्सरसाइज जैसी गतिविधियों को पसंद करते हैं। मार्शल आर्ट, कराटे और मार्शल आर्ट उनकी फिटनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और सिंपल डाइट है उनकी, बहुत संतुलित और घर का खाना पसंद करते हैं और ओवर ईटिंग से बचने पर जोर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि खाना खाइए, कम खाइए लेकिन हेल्दी खाना खाइए और डिसिप्लिन, जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। उनकी फिटनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट कोई एक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि रूटीन को लगातार फॉलो करना है। नींद बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, वो देर रात तक जागने की बजाय पर्याप्त और समय पर नींद लेने की बात कई बार कह चुके हैं, काफ़ी पॉडकास्ट में मैंने भी सुना है।

0: तो दोस्तों ये छोटी छोटी उनकी हैबिट हैं जो उनको बनाती हैं फिटनेस का, यू नो. जी हाँ, वो इतने हैंडसम यू अभी भी वो गुड लुकिंग लगते हैं और इतने यंग लगते हैं, तो आप भी दिख सकते हैं. बस आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना है और लेट नाइट नहीं सोना है. एवरी मॉर्निंग जब आप टाइम पर सोएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी मॉर्निंग में टाइम पर ही आंखें खुलेंगी, और जब आप रात में 1 बजे 2 बजे सोएंगे तो सिंपल सी बात है, लेट ही उठेंगे ना. तो इसीलिए आपको लेट नाइट नहीं सोना है, ठीक है. जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे और सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है. अभी वक्त हुआ है 11:45 और आपके यहाँ पर सही जवाब भी आ रहे हैं, तो बस मैं अभी लौट कर आती हूँ. उसके बाद आप सभी के मैसेज शामिल करेंगे और देखते हैं आज के हमारे शो के कौन बनते हैं लकी सुपरस्टार. वो तो मैं जब आऊंगी ना तभी बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे. हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना. आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त.
6: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा.
7: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद.

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: दोस्तों दिल तो मेरा आपके सही जवाबों ने लूट लिया है। एक्चुअली आपकी बॉलीवुड नॉलेज इतनी स्ट्रांग है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और सीरियसली मुझे इतना मतलब नहीं था कि इतने सारे हमारे जो लिसनर हैं वो सही जवाब पहुंचा पाएंगे, बट सभी ने सही जवाब दिए हैं। कमाल ही कर दिया आपने तो एवरीवन। मानना पड़ेगा आप सच में बॉलीवुड की कमाल की नॉलेज रखते हैं, और इसी बात पर आपके लिए जोरदार क्लैप है। और हमारे पास सही जवाब आए हैं। सबसे पहले हमें सही जवाब कहाँ से पहुंचाया है हमारे श्रोताओं ने वो हम जान लेते हैं। हमारे लिसनर कौन है आज के लकी सुपरस्टार वो जानते हैं, आपको भी बताते हैं, दिल थाम के बैठिएगा। वैसे आप सभी ने सही जवाब दिए, लेकिन जो सबसे पहले सही जवाब पहुंचाते हैं वही बनते हैं शो के लकी सुपरस्टार, उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास सबसे पहले हमें सही जवाब पहुंचा है यहाँ पर कोमल शर्मा जी ने। एंड आज के हमारी लकी विनर बनती हैं कोमल शर्मा जी। तो कोमल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब, और ये जोरदार तालियां आपके लिए। एंड राइट आंसर था फ्रॉम द मूवी हीरा फेरी। जी हाँ, मैंने आपसे पूछा था आज की सुबह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो मैंने कहा चलो यही पूछ लेते हैं। आज अक्षय पाजी का बर्थडे है और ये पॉपुलर फिल्म भी रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं, इनका नाम तो नहीं यहाँ पर मुझे शो कर रहा है, बट इन्होंने थोड़ा सा गलत जवाब पहुंचाया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर ललिता कश्यप जी का आया है और ये भी सही जवाब के साथ जुड़ी है, हीरा फेरी फ्रॉम द मूवी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है प्रिंस का, और प्रिंस भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं आज की सुबह, फ्रॉम द मूवी हीरा फेरी। एंड इस मूवी में उनका नाम राजू था, अक्षय कुमार जी का। एग्जैक्टली राइट आंसर, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबलू सैनी जी का, मुंबई महाराष्ट्र से। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, और अक्षय कुमार जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहुंचाते हैं आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। लुधियाना पंजाब से हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह मोहम्मद ईशान जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हीरा फेरी मूवी का नाम है मैम। प्रेम पाल सिंह जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं सही जवाब के साथ, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विक्की सागर जी का, हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से। और हमारे पास एक वॉइस नोट भी आया है बड़ा प्यारा सा, तो मैं उसको भी जल्दी से प्ले कर लेती हूँ आज की सुबह। मैम क्या पहुँचाती हैं अपनी मधुर सी आवाज में?
1: राधे राधे खुशी, आप कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है। खुशी, राजू नाम अक्षय कुमार का हेरा फेरी मूवी में था, और जो दोबारा हेरा फेरी आई थी उसमें भी राजू ही नाम था उनका।
0: थैंक यू सो मच मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आपने दिया है सही जवाब। और आपने कहा राधे राधे कैसी हैं खुशी आप, मैं बहुत अच्छी हूँ। आपकी ये प्यारा सा वॉइस नोट सुनकर ना और खुश हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है,

0: आसिफ जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह इटली से, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इनका संदेश आया है आज की सुबह, ये कहते हैं खुशी जी गुड मॉर्निंग। खुशी जी उम्मीद है आप बिल्कुल बढ़िया होंगी, आपका कार्यक्रम वाकई दिल को छू लेता है और आपकी शानदार प्रस्तुति सुनने का अपना ही एक अलग ही आनंद है। और आज के इस खास दिन पर अभिनेता अक्षय कुमार जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र, अच्छी सेहत और जीवन में निरंतर कामयाबी प्रदान करें। अगर इजाज़त हो तो मेरी भी एक छोटी सी फरमाइश है, कृपया मेरी पसंद का एक गीत अपनी प्लेलिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल सर, और कहते हैं कि आपका कार्यक्रम यूं ही अपनी खूबसूरत बातों और मुस्कुराहटों से श्रोताओं का दिल जीती रहिए आप, बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और पूरे एफएम रेडियो परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कहते हैं खुशी जी मैं भी कोशिश करता हूँ अक्षय कुमार जी की तरह डाइट करूँ, हर बार सोचता हूँ कि अब की बार पूरा कंट्रोल करूँगा, लेकिन जैसे ही सामने पिज़्ज़ा बर्गर या बिरयानी दिखाई देती है ना, तो पता ही नहीं दिल में क्या होने लगता है फिर सारी डाइट और सारी वादे वहीं के वहीं रह जाते हैं। अरे अरे अरे, अब आप ही बताइए ऐसे में मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं, खुद पर कैसे कंट्रोल करूं। ये तो है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं समझ सकती हूं, बट कोशिश करेंगे ना आप तो कामयाबी मिलेगी आपको सर। थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहां पर आया है दौलतबाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी का, आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा पेश कर रही हैं आप खुशी मैम, आपकी बातों में जो ओ तबस्सुम की झलक है, अरे अरे थैंक यू सर, थैंक यू। और सही जवाब के साथ सर भी आज की सुबह जुड़े हैं। तो एवरीवन अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आया है और उन्होंने भी सही जवाब पहुँचाया है आज की सुबह, तो एक्चुअली क्या नाम है उनका मैं बता देती हूँ ऑन एयर, क्योंकि सब इतने प्यार से इतनी मेहनत से अपना मैसेज पहुँचाते हैं तो हम चाहते हैं कि सभी के संदेशों को शामिल करें। हमारे पास यहाँ पर सही जवाब के साथ जुड़े हैं, अच्छा ये मैम जुड़ी है ममता जी चंदन नगर मुरादाबाद से, सही जवाब पहुंचाती हैं, मूवी का नाम है हेरा फेरी, थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए दोस्तों हम मुलाकात करेंगे आपसे, सी यू सून 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, एक बार वंस अगेन जोरदार तालियां आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबडी, एंड ख्याल रखिएगा अपना और यूं ही मुस्कुराते रहिएगा, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, नई बातों के साथ नई एनर्जी के साथ फिर से मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा अनुमति, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। हाँ मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, खुशी इसीलिए कहती है क्योंकि वो भी खुश रहती है और वो चाहती है कि हमारे सभी लिसनर ना हैप्पी रहें ऑलवेज। अब मैं चलती हूँ, भाई ठीक है, जाने का मन नहीं करता है पर जाना पड़ेगा, जब जाऊँगी तभी तो वापस आऊँगी ना, और फिर से मुलाकात करेंगे आपसे नई बातों के साथ, बाय बाय।
1: Hey, you're tuning into FM Muradabad 89.6 FM।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: सुनो ना मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में, ना ट्रैफिक की चिंता ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: Sincerely.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, किशोरियों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए

0: देहतिया भैया जी हैं।
1: नमस्कार खुशी जी। जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलट सकता है, इसलिए सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे पूर्वावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा। कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: भैया, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखो जी, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है। ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे कैसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती है, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधाएं कितनी जरूरी हैं?
1: बिल्कुल आरजे खुशी, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है, लड़कों से कहा जाता है कि अब घलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसे करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है, फिर लड़के की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक ही सिमट जाती है।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो डर की वजह से चोरी चुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है, इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
0: ठीक कहा आपने। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है।
1: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वे बहुत ही नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कॉन्डम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वह कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो वह अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सेहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता, तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या होगा, सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरते रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रह, ऐसी बातें मत कर, इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो वो कमजोर नहीं है, एक समझदारी वाला काम है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते होंगे इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसी समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई न कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगे तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो तो वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है, उस लड़की की सेहत पर भी खतरा पड़ सकता है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कॉन्डम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होता है।
0: लेकिन एक बात बताइए सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया वे गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं होता है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना होता है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ही पहल हुई है?
1: बिल्कुल जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK, इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां किशोर अपनी समस्याएं खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं, क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूरण कार्यक्रम, इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना, इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों को सेहत के बारे में बता सके।
0: अच्छा सिहतिया जी, ऐसा क्या है?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गाँव की सीमा है, वो कक्षा 2 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना, इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सकें। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाते थे, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोर के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह सभी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
0: सिहतिया जी, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंच जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
1: देखिए जी, एक और बढ़िया योजना है अर्श, इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है सिहतिया जी।
1: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुराने शुरू कर देती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKS की योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी है। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
0: बिल्कुल सहेतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
1: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आ जाते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र गई और वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
1: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये है कि पास के गाँव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी। 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे उसने, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। बोली अब ज्यादा पढ़ाई का फायदा नहीं है, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल के पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनी गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने यह भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग दे रही है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद भी करती है।
0: अरे वाह सिहतिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिल जाए तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वह बीच का सफर तय कर रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा सिहतिया जी। दोस्तों, ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुलेगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई में। तब तक के लिए सुनते रहिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजना का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी सेहत के लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सेहत से लाभ कई में एक नए एपिसोड के साथ। मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूं और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना।
2: अरे पहले आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। मगर आरजे रीना, तुम्हारे तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी तुमने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
1: यही तो हमारी सामुदायिक रेडियो की खासियत है, हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो अपने श्रोताओं को कभी अकेले छोड़ते थोड़ी हैं। हम सब उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगी?
1: भाभी, बस इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती है कई तरह की फैलने वाली बीमारियां और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे, तो इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
2: सही कहा अर्जरीना, बाढ़ तो खैर बाढ़ है पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता, इसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है तो लोगों को बहुत सी बीमारियों की लपेट में ले लेता है। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
1: और हाँ, जब पानी धीरे धीरे सूखता है तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा रहता है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और वहीं सबसे तेज मच्छर पनपते हैं, पर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं।
1: भाभी आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गांव में क्या हुआ था।
2: अरे कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी, नालियों का गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया, लोग वहीं का पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैल गई। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है, कई लोग बीमार पड़ गए। रेशमा को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी, दस्त होने लगा, बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत घबरा गई, पहले तो सोचा कि घर पर ही इलाज कर ले, लेकिन हालात और बिगड़ गए।
1: फिर क्या किया गया भाभी?
2: रेशमा को हम तुरंत गांव के हेल्थ सेंटर ले गए, डॉक्टर साहब ने जांच की और बोले कि रेशमा को हैजा है। इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया था, डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया, दवा भी दी, अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए रेशमा जल्दी ठीक हो गई।
1: भाभी बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द, ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
2: रीना जी, बाढ़ के दौरान पानी गंदा हो जाता है, लोग वही पानी पी लेते हैं या उसे खाना बना लेते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गड़बड़ी के लक्षण हैं।
1: तो भाभी प्राथमिक सावधानी क्या होनी चाहिए?
2: बचाव के लिए साफ पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं।
1: बिल्कुल भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताज़ा भोजन करना। वैसे आजकल गाँव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान है, डॉक्टर साहब बोल रहे थे टाइफाइड फैल रहा है, टाइफाइड कैसे होता है?
2: टाइफाइड बुखार साल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण होता है, इसका मुख्य कारण है मल मुख मार्ग है, यानी ये संक्रमण तब फैलता है जब दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है। ये दूषित संक्रमण व्यक्ति या बिना लक्षण वाले वाहक के मल से होता है, गंदगी, साफ पानी की कमी, बिना धोए फल सब्जियां या सड़क का खाना खाने से ये संक्रमण आम तौर पर फैलता है, खासकर बरसात या बाढ़ के बाद ये बीमारी तेजी से फैलती है।
1: अच्छा, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
2: लक्षण बड़े साफ होते हैं रीना, लगातार तेज बुखार आना, सर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना और कई बार उल्टी भी हो जाती है। ये सब दिखे तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
1: और इससे बचने का क्या उपाय है?
2: इस बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें, पानी चाहे कुएं का हो या हैंडपंप का उबालकर ही पिएं। कई बार पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती। खाना हमेशा ढककर रखें। बाढ़ के बाद तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार रहे, थकान लगे या पेट दर्द करे तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
1: सही कहा भाभी, दवा तो डॉक्टर देगा लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी, साफ सफाई से रहने से हमारी पास भी नहीं भटकेगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रीना।
1: भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है। ये बीमारी कैसे होती है?
2: हेपेटाइटिस ए और कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं। यही है हेपेटाइटिस का असली कारण।
1: तो भाभी, इसके लक्षण कैसे पहचाने?
2: अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें व पेशाब पीले रंग की दिखने लगे तो समझ लीजिएगा लीवर पर असर हो रहा है। हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं।
1: क्या हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
2: पास के मोहल्ले में हन्नू काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी थी, धीरे धीरे उसकी आंखें पीली पड़ गई। पहले वो मामूली बुखार समझ घर के पास इलाज कराना शुरू किया लेकिन हालात बिगड़ते गए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर साहब ने बताया कि हन्नू को हेपेटाइटिस ए है। समय पर इलाज मिला तो बच्चा बच गया, वरना मुश्किल हो सकती थी।
1: भाभी, फिर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले तो साफ पानी पीजिए। अगर किसी में ये लक्षण दिखे तो खुद इलाज करने की गलती मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। याद रखिए, देर करना जानलेवा हो सकता है।
1: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग बुखार और बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ये तो लेप्टोस्पाइरोसिस हो सकता है। लोग इसे आसान भाषा में जंगली बुखार भी कहते हैं। ये बीमारी कैसे होती है?
2: देखिए श्रोताओं, ये बीमारी बाढ़ के गंदे पानी से फैलती है। उस पानी में जानवरों का मल मूत्र मिला होता है। अगर कोई गंदे पानी में जाता है और उसके शरीर पर कहीं भी चोट, खरोच या कटा फटा हिस्सा है तो वहीं से बीमारी अंदर चली जाती है। फिर बुखार, बदन दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
1: अच्छा भाभी, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
2: शुरुआत में तेज बुखार आता है, सर में और मांसपेशियों में दर्द होता है, कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो जंगली बुखार लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
1: इससे बचने का उपाय क्या है?
2: सबसे जरूरी है सावधानी। बाढ़ के पानी में नंगे पांव मत चलिए। अगर जाना ही पड़े तो रबड़ की चप्पल या बूट पहनकर जाएं। शरीर पर कहीं भी कटा या चोट हो तो उसे अच्छी तरह ढककर रखिए। जंगली बुखार के लक्षण दिखे तो घर पर इलाज करने की जगह डॉक्टर के पास जाइए।
1: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में जगह जगह पानी जमा हो गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, डर है कि कहीं डेंगू मलेरिया ना फैल जाए।
2: देखिए, जब बाढ़ का पानी गड्ढों, पुराने डिब्बों, कूलर या टंकी में जमा रह जाता है तो वहीं मच्छर अंडे दे देते हैं। ऐसे पानी में मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियां मच्छर के काटने से ही फैलती हैं। डेंगू वाला मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है जबकि मलेरिया वाला मच्छर रात में काटता है। ये बीमारियां बहुत तकलीफदायक होती हैं और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।
1: ओहो, तो भाभी इसके लक्षण कैसे पहचाने?
2: डेंगू में तेज बुखार आता है, शरीर बहुत टूटता है, आंखों में दर्द होता है और कई बार खून की कमी भी हो जाती है। मलेरिया में अचानक जोर की कपकपी लगती है, फिर तेज बुखार आ जाता है, इसके बाद खूब पसीना छूटता है और मरीज बिल्कुल निडाल हो जाता है। और समय पर इलाज ना मिले तो हालात और भी खराब हो सकते हैं।
1: भाभी, बचाव का सही तरीका क्या है?
2: बचाव आसान है, थोड़ी सावधानी रखनी है। घर के आसपास पानी जमा मत होने दीजिए। टंकी, गमले, कूलर सब हफ्ते में एक बार साफ कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल इस्तेमाल कीजिए और हाँ, ढीले ढाले पूरे कपड़े पहनिए ताकि मच्छर काट ही ना पाए।
1: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग कहते हैं उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ लोगों को तो फफोले भी पड़ जाते हैं। क्या ये सब त्वचा की बीमारी है?
2: बिल्कुल ठीक। बाढ़ आती है तो कई लोग गंदे पानी में चलते हैं। उस पानी में कीचड़, नालियों का गंदा पानी और जानवरों का मलमूत्र तक मिला होता है। अब जरा सोचिए रीना जी, अगर किसी के हाथ या पैर कटा या घाव है और वो गंदे पानी में चला जाए तो कीटाणु सीधा अंदर घुस जाते हैं, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है और फिर त्वचा पर तरह तरह के रोग हो जाते हैं।
1: ओहो, तो इसके लक्षण क्या क्या है भाभी?
2: शुरुआत में तो हल्की सी खुजली होती है, फिर धीरे धीरे लाल लाल दाने निकल आते हैं। अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, उससे पानी भी निकलने लगता है। कई बार जलन और दर्द इतना बढ़ जाता है कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं पाता। अगर ध्यान ना दिया जाए तो इस शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए।
1: तो लोग इससे कैसे बचे?
2: सबसे पहले तो जितना हो सके गंदे पानी से बचिए। अगर बाहर जाना ही पड़े तो नंगे पांव मत जाइए। रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए। अगर गलती से भीग जाए तो घर आकर साबुन से पैर धो लीजिए। यदि खुजली, लाल चकत्ते या फफोले दिखें तो घरेलू नुस्खे में वक्त मत गवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तभी सही इलाज होगा।
1: भाभी, बाढ़ के समय कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्या ये किसी बीमारी के संकेत हैं?
2: जी बिल्कुल रीना जी, बाढ़ के दौरान जब लोग एक जगह जैसे स्कूल या पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार है तो बीमारी दूसरों तक पहुंच जाती है। ऊपर से गीले कपड़े, लगातार नमी और चारों तरफ गंदगी, ये सब फेफड़ों पर बुरा असर डालती है। इसी वजह से सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और श्वसन संक्रमण फैलने लगता है।
1: इसके लक्षण क्या होते हैं भाभी?
2: देखिए, इसके लक्षण साफ होते हैं। अगर किसी को बार बार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में भारीपन लग रहा है या बुखार भी आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि मामला हल्का नहीं है।
1: इसके बचने का सही तरीका क्या है?
2: सबसे पहले तो साफ सफाई रखिए। गंदे और गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए। जहाँ रह रहे हों वहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे खोलकर हवा का रास्ता बनाइए। अगर भीड़ में हो तो मास्क जरूर पहने, खासकर जिनको खांसी जुखाम है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ा पहनाइए। किसी को सांस लेने में जरा भी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिएगा।
1: भाभी, बाढ़ के समय लोग सिर्फ पानी से नहीं कई और खतरों से भी जूझते हैं। कई बार लोग जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए?
2: देखिए, बाढ़ का पानी बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखे, अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। इसमें गड्ढे होते हैं, टूटी हुई तारे हो सकती हैं, फिसलन होती है और तेज बहाव से आदमी गिर भी सकता है। सबसे बड़ा डर होता है कि जहरीले जीव का, जैसे सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़ों का, ये सब पानी के साथ बहकर घरों तक आ जाते हैं।
1: अच्छा भाभी, अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो कैसे पहचाने?
2: सांप या बिच्छू काटने की साफ साफ लक्षण दिखते हैं, जैसे काटे गए हिस्से में तेज जलन, सूजन, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना और कई बार तो बेहोश भी हो जाती हैं। अगर सांप जहरीला है तो काटी हुई जगह नीली या काली पड़ जाती है। ऐसे हालात में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है।
1: तो फिर भाभी, ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
2: सबसे पहले तो घबराइए मत। घबराहट में ही लोग गलती कर बैठते हैं। काटे गए हिस्से को हिलाइए मत, हिलाने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए। देसी इलाज, झाड़ फूंक या नीम हकीम पर समय बिल्कुल मत गवाइए। जितनी जल्दी डॉक्टर तक पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी इलाज होगा। और हाँ, बचाव के लिए आप कुछ बातें जरूर कीजिए, जैसे बाढ़ के पानी में नंगे पांव बिल्कुल भी मत चलिए, रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए, रात को सोते वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए, घर के कोनों और बिस्तरों के नीचे साफ सफाई कर लीजिए ताकि सांप बिच्छू ना सके।
1: दोस्तों, आपने सुना, बाढ़ सिर्फ पानी नहीं कई खतरनाक बीमारियां भी ले आती है, लेकिन अगर हम सतर्क रहे, साफ सफाई का ध्यान रखे और समय पर इलाज करवाए तो इसके खतरों से बचा जा सकता है। पर जाने से पहले हम लेंगे शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण कराएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। अगली बार फिर मिलेंगे सेहत संबंधित किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई प्रोग्राम और मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है श्रोताओं। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्ना मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी सी गलती भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी मदद करेंगी टीकन भाभी, वो हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए और साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे को जन्म के बाद शहद, घुट्टी या फिर गाय बकरी का दूध पिलाया जाता है, कुछ लोग तो पानी भी दे देते हैं। भाभी, असल में सही है क्या ये?
1: सच तो ये है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध ही देना चाहिए। इसे कोलोस्टोम कहते हैं, यानी बच्चे की पहली दवा है। इसमें इतनी ताकत होती है कि बच्चा बीमारियों से बचा रहता है और उसका शरीर मजबूत होता है। हमारे गांव की गीता ने अभी कुछ ही महीने पहले बेटे को जन्म दिया। घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले शहद चटा दो, घुट्टी दे दो, लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर साहब की सलाह मानी। उसने बच्चे को तुरंत अपना पहला गाढ़ा दूध पिलाया। आज उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ना उसे बार बार सर्दी जुकाम होता है, ना ही पेट की कोई दिक्कत। याद रखिए कि ना शहद, ना घुटी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी, बच्चे की असली ताकत तो उसकी माँ के दूध में होती है।
0: भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है, ऐसे में माँ को होश आने में समय लग सकता है, उस वक्त नवजात को डब्बे बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है क्या?
1: बिल्कुल नहीं। अगर माँ को होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं तो उस दौरान माँ के साथ आए हुए किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को चाहिए कि शिशु को माँ की छाती से लगाकर जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करवाए। शिशु को तो ना डिब्बे बंद दूध देना चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी और का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित दूध सिर्फ उसकी माँ का ही होता है। और एक बात खास याद रखे, बच्चे को कभी भी बोतल से दूध ना दे। बोतल से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना।
0: भाभी, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर ही दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है?
1: देखिए, बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कोलोस्टम मिलता है। इसे बच्चे का पहला टीकाकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। दूसरा फायदा कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटा रहता है तो उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती है, इससे वो आराम और सुरक्षित महसूस करता है। तीसरा, माँ को भी इसका फायदा होता है, प्रसव के बाद उसका रक्तचाप कम हो जाता है और सेहत जल्दी ही संभल जाती है। साथ ही साबित हुआ है कि अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए तो नवजात शिशु की कुछ मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है।
0: भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं?
1: इसमें वो सब कुछ है जिसकी नवजात को शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे बच्चे की शरीर को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए तो उसमें प्रोटीन है, दिमाग को तेज और शरीर को गर्म रखने के लिए फैट है, ताकत देने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियां मजबूत बनाने और खून बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स है। माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा तो उसे बाहर से दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए खाना भी है और दवा भी है।
3: भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए।
1: बच्चा जब भी चाहे दिन में या रात, माँ को बार बार दूध पिलाना चाहिए। बच्चा रोकर या इशारा करके बता दे कि उसे भूख लगी है, ऐसे समय पर दूध रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा कम वजन का है यानी 2.5 किलो से कम, तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं पी पा रहा है तो माँ अपना दूध निकाल कर कप या छोटे साफ चम्मच से उसे पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ था। शुरू में सबको चिंता थी कि बच्चा कमजोर रह गया है, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी। उसने बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया।
3: भाभी, कैसे समझें कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर रहा है।
1: देखिए, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझे कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जागने पर खेल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा है, तो ये भी अच्छी निशानी है। और कुछ और सबसे पक्की बात ये है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता है।
3: भाभी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता, ऐसे में माँ को अपना दूध निकाल कर बच्चे को पिलाना पड़ता है, लेकिन ये काम कैसे किया जाएगा? कई बार इसे लेकर माँ बहुत घबराती है।
1: देखिए, दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठना चाहिए ताकि थकान ना हो। बच्चे को भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ना चाहिए। बच्चे की पोजीशन बहुत जरूरी है, उसका पूरा शरीर और चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरह से दूध पी रहा हो तो उसे गटकने की हकी सी आवाज भी सुनाई देती है। माँ और बच्चे दोनों आराम में हो तभी स्तनपान सही तरह से हो पाता है।
3: भाभी, कई बार मैं सुना है कि नई माओं को दूध पिलाते समय तन में सूजन, दर्द या सख्त जैसी परेशानियां हो जाती हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की परेशानी आम है। अगर माँ को ऐसा लगे तो सबसे पहले स्तन की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिए से सेकने से भी आराम मिलता है।
3: अच्छा, मतलब मालिश और गर्म से काम आता है, लेकिन शिशु को दूध पिलाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए माँ को आरामदायक अवस्था में बैठना चाहिए, शिशु को सही ढंग से स्तन से जोड़ना चाहिए। अगर स्तन ज्यादा भरा हुआ हो तो थोड़ा सा दूध पहले निकाल ले, इससे स्तन नरम हो जाएगा और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ पाएगा।
3: दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है?
1: माँ के लिए भी बड़े फायदे हैं। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है तो माँ का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है, इससे पेसेटा भी जल्द बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने का खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाए और वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी जरूरी है।
3: अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए?
1: हर दिन कम से 5 तरह की चीजें जरूर खानी चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और अनाज, तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेंगे।
3: दोस्तों, आज की बातों से साफ है, माँ का दूध न सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ढेर सारे फायदे लेकर आता है। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और माँ और बच्चे की सेहत पर फिर हम अहम बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
5: हेलो आनंद, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
3: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
5: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
3: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो लेकिन जैसे माइक ऑन बटन ऑन आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए। करेक्ट?
5: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
3: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में सोच बदलो प्रोग्राम में मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका। मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों, जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दोस्तों आज हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है? घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी?
1: कुमकुम, आप सभी की प्यारी दोस्त
0: जी। तो कुमकुम बताओ जरा, अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं, उसका रीजन मोबाइल ही है क्या?
1: हाँ जी राइट। हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है, सास बैठी हैं, ससुर बैठे हैं या मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिससे लोग देखते हैं कि हाँ एक साथ होने के बाद भी, एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, सही कहा कुमकुम जी ने और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल। मोबाइल जब से आया है ना, बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के, बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी, जो अपनेपन का एक एहसास था, वो भी कम हुआ है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल की आने की वजह से, क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है? क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं? इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, आप सुनते हैं जिसे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक परिवार था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे, बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी। दादी ने कहा, अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद दादी ने कहा, अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली, देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है। जी हाँ श्रोताओं, तो ये कहानी नहीं है, दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है। और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर। साथियों आप क्या सोचते हैं इन बातों से, आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने सुना, सैयारा, बहुत प्यारा गाना है। और इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बता दें प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा सोच बदलो। इस प्रोग्राम में मैं और कुमकुम आपके साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल और रिश्तों की दूरियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और ये आने से चीजें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अच्छी हुई हैं, नो डाउट। टेक्नोलॉजी हमारी यूज के लिए बनी है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग। बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्तों में गर्माहट थी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो कम होती जा रही है। और उसकी वजह क्या मोबाइल है? मुझे तो ऐसा लगता है हाँ, अगर मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
3: हाँ जी, जरूर हो सकता है, क्योंकि

0: जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके, आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं,
1: बिल्कुल
0: तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद, आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
1: अच्छा, ओके ओके, मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफकोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना, सब मोबाइल पे हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीजें डिजिटली प्लांट हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज, हर बंदा मोबाइल से ही सर्वाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी, अगर हम परिवार के साथ, हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, फिर हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने परिवार के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पर रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना, वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम। बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है। और मैं तो कहता हूं, अगर आप देख भी रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी चीजों पर आप बात कर सकते हो, बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और आजकल ना मोबाइल के आने से एक चीज तो है यार, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना, मतलब एक ही फैमिली में 10 लोग हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, मम्मी को अगर आवाज लगानी है तो वो अब व्हाट्सएप करके बोलती हैं, बेटा नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा लंच रेडी है, नीचे आ जाओ। एक टाइम था जब हमारी माँ किचन से आवाजें मारा करती थी और हम भागे चले आते थे। मान लीजिए श्रोताओं, या कुमकुम आप ही मान लो, अगर एक दिन के लिए फोन बंद हो जाए तो आप अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे? क्या करना चाहोगी अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा फोन बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैश बैक में चले जाए एकदम पुराने जमाने में, तो आप क्या करोगी अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
0: पहले कुछ टाइम के लिए तो सोचूंगी कि ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है,
1: क्योंकि एक तो एक्चुअली ना हमारी हैबिट हो गई है,
0: हैबिट हो गई है, और ऊपर से हमारी छोटी छोटी चीजें, सुबह को उठ के सबसे पहले फोन देखना और बाकी चीजें कॉन्टेक्ट करना, आज किस काम में क्या है, सारी डिटेल्स हम फोन में रखने लगे हैं।
1: करेक्ट। और दूसरों की लाइफ भी ताका झाकी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू,
0: राइट
1: ना, कहीं है ना,
0: व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
1: 100%। अगर एक दिन के लिए फिर भी फोन बंद हो जाए, सो प्लीज टेल अस, आप अपने दिन को कैसे बताओगे, मतलब क्या करना चाहोगे?
0: जैसे कि पुराने दिनों में कहा जाता था कि हाँ, खेत के पास जाना चाहिए, पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
1: बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर तो अब कोई जाना ही नहीं चाहता, सबको दिल्ली, मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती हैं, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है। सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों, भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूं लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में ये चीज नोटिस करता हूँ मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में, ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं, तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पे वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फैमिली को, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर उन्हें करने दो, मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाए और बच्चे जो देख रहे हैं देखने दो। तो भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन कई बारी हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना कर दे, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज, फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में, और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलती है, प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर आके आप बताइए आपको हमारे स्टेशन्स के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। चलिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लेकर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफकोर्स, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है, तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम, एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल। याद रखिए रील्स कुछ सेकंड की खुशियां देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं।
0: तो क्या क्या बात है। हाँ तो आगे बोलो,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे।
0: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं, थैंक यू सो मच। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे लगता है कि रील सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है। दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज निकलती है, अभी बिजी हूं बाद में आऊंगा, ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती होगी। मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम, पापा फोन पर, मम्मी रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है ना। कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है। उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें। अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है। और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं, थोड़ी सी देर में बात हुई उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई, अभी पता चला अभी नाराजगी थी अभी ब्लॉक हो गई चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है। ये स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सब चीजें जो है ना मत करो भाई, करो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार एक समय सीमा बना लो हर चीज की। सबसे जरूरी चीज है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना। क्यों कुमकुम, सही कहा मैंने? हाँ तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाजत, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये वही शहर है जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी चलें फिर कुमकुम?
1: जी हाँ चलते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ। तो सोच बदलो क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं आसपास होने चाहिए। याद रखिए कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे। तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए। अभी के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बजाते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए सफर पर।

0: जा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
3: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
2: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको definitely मजा आएगा इस conversation में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत happy feel कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम situation में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे doctors होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो questions आप हमें भेजते हैं basically, और आज हमारे पास आप ही के questions हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने
0: जमाने में बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देर आर लॉट ऑफ चीज, देर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास पा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबॉडी सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल है, बट उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते।
1: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है? हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा

0: थे, उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो. तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है. शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती. अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड. तो इन्वेस्टिगेशन एंड टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें. तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ. एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मेयर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो. डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे. अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे. आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे. तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ. अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकते. और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है.
1: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं. तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जिसकी मैम ने कहा. आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर. और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही है एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं. आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच. आजकल के लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
0: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर. ठीक है, अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर. ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता. एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है. इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे. करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस लेंस जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है. इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रहे हैं. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले. पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है. कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
1: एब्सोल्युटली
0: अब पोलियो इरेडिकेट हो गया हमारे. ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए. अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 से 4,000 रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट.
1: फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल.
0: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को. अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डासिल, ये सब वैक्सीन होती हैं. डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे. और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन. ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन. आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं. दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट. तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप इयरली नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाई ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें, प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है.
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया. यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं,

0: है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
1: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं। ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों ने बनाई हुई अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर्स को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना। जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्चे की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी।
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे
1: Right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी, अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट, पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
1: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड्स
2: और वही कहाँ गए थे घूमने,
1: जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं,
3: तो खाना कहाँ से
0: मंगवाया, इस डिजीज पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज। आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमिनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो।
4: और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं।

0: अमरीका के अनुसार पिछले दो दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके निर्माण की, वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
3: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुदुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
7: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
8: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
7: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
8: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
9: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और आप सभी को पता है दोस्तों कि हम आपके लिए लेकर आते हैं एवरी डे आपका फेवरेट शो महिला मंच। और आज हम महिला मंच में बात करने वाले हैं। आज का हमारा शो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम अपने शो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार की जिन्होंने मेहनत, अनुशासन और अपनी अलग पहचान से करोड़ों लोगों के दिलों को जीता है। जी हाँ, आज हम बात स्टार अक्षय कुमार जी की। तो एवरीवन, आज हमारे साथ में परी यहाँ पर हैं और परी से भी जानते हैं कुछ अक्षय कुमार जी के बारे में। तो हाँ जी परी, आप क्या कहना चाहेंगी?
10: आज अक्षय कुमार के बारे में बात हो रही है और उन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी इतनी आसान नहीं थी। आइए जानते हैं उनकी पूरी जर्नी।
9: अब जर्नी की बात आपने की है तो अक्षय कुमार जी की जर्नी के बारे में तो हम भी जानते हैं, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अक्षय कुमार जी के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि एक्टर्स सभी को पसंद है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार जी का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। उनका जन्म 9 सितंबर 1976 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। बचपन से ही उन्हें खेल और मार्शल आर्ट का बहुत शौक था।
10: मार्शल आर्ट सीखने के लिए वे बैंकॉक भी गए थे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक होटल में शेफ और वेटर का काम भी किया था। यह संघर्ष उनकी जिंदगी को सबसे बड़ी सीख बना।
9: जी दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ना कि एक्टर की लाइफ कितनी इजी होती है ना, मतलब इतना पर्दे पे आना, एक्टिंग करना, यही काम होता है। लेकिन हर किसी की लाइफ में संघर्ष होता है दोस्तों। अब आपकी लाइफ में भी होगा, हर कोई अपनी लाइफ का हीरो है, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी की। और अभी जैसे हमें बताया परी ने कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बने हैं अक्षय कुमार जी। भारत लौटने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी। यहीं से उनकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया।
10: मॉडलिंग के बाद उन्हें फिल्मों में मौका मिला। उनकी पहली फिल्म सौगंध 1991 में आई थी, लेकिन असली पहचान उनको खिलाड़ी 1992 से मिली। इसके बाद उन्हें खिलाड़ी कुमार कहा जाने लगा और वो आज भी खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाते हैं।
9: और दोस्तों, 1990 के दशक में उन्होंने कई एक्शन फिल्में की, लेकिन वो सिर्फ एक्शन हीरो बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों में भी हाथ आजमाया। हेरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार कमिंग अभिनेता भी बना दिया। इसके बाद एयरलिफ्ट, रुस्तम, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन, केसरी और मिशन मंगल जैसी फिल्मों से उन्होंने सामाजिक और देशभक्ति से जुड़े विषयों पर भी काम किया।
10: साल 2001 में अक्षय कुमार ने अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से शादी की और आज उनके दो बच्चे हैं। वे अपनी फिटनेस और अनुशासित जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह जल्दी उठते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और समय का बहुत सम्मान करते हैं। यही आदतें उन्हें आज भी फिट और सफल बनाए हुए हैं।
9: हाँ, अभी बात की आपने परी कि अक्षय कुमार जी एवरी मॉर्निंग सुबह जल्दी उठते हैं, राइट? तो आप मुझे बताइए, मैं आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ, आप कितने बजे सुबह सोकर उठती हैं?
10: मैं तो सिचुएशन के हिसाब से उठती हूँ। अगर सुबह को जल्दी काम है तो जल्दी उठ गए, और अगर सैटरडे संडे है तो आराम से अपना समय लिया और फिर अपना काम शुरू किया।
9: ओके, कभी ऐसा हुआ है परी कि आपने सोचा कि आज मैं जल्दी उठूंगी और आज मैं सारे काम करूंगी, लेकिन उसी दिन आपको लेट नाइट नींद आई और आप लेट उठे?
10: मैं तो हर रोज सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के सब काम करूंगी, पर आलस इतना है कि बस नींद ही नींद आती है और कुछ नहीं, काम के नाम पे भी आलस आता है।
9: ओह माय गॉड, लेकिन यहाँ पर आज स्टूडियो में जब आप आई हो तो यहाँ पर तो आपके चेहरे पर कोई आलस नहीं झलक रहा है, यहाँ पर तो बहुत एनर्जी आपके अंदर नजर आ रही है।
10: यहाँ पे एनर्जी इसलिए है, सबसे पहली बात तो कि आप लोगों के संग मैं हूँ यहाँ, तो मुझे एनर्जी आ गई है आप लोगों से बात करके मिलके, और एक तो हमारा टॉपिक भी इतना हॉट है कि हम अक्षय कुमार के वो बारे में बात कर रहे हैं, ये सीट भी हॉट हो गई है और फिर तो मेरा माइंड भी खुल गया है और फिर मैं एनर्जेटिक भी हो गई हूँ।
9: अरे वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, अभी हमने बात की फिटनेस के बारे में और अब हम करने वाले, उन्हें कई बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। साल 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया फिल्म रुस्तम के लिए, उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। अक्षय कुमार जी की कहानी हमें सिखाती है एवरीवन कि मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने का जज्बा इंसान को बहुत आगे ले जाता है।
10: बैंकॉक के होटलों में काम करने से लेके बॉलीवुड तक का सफर, सितारों में शामिल होने तक का उनका सफर हर किसी के लिए प्रेरणा है।
9: तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सपना है, आज से ही उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, कौन जाने अगली प्रेरणादायक कहानी आप ही हो। तो दोस्तों, अभी हमने बातें की है अक्षय कुमार जी के बारे में, और उनके गानों का जिक्र ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए, अक्षय कुमार जी की फिल्म का एक शानदार गाना सुनते हैं, थोड़ा सा आपको भी थिरकाएंगे और थोड़ा हम भी थिरकेंगे, तो मुस्कुराइए, लौट कर आते हैं म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: तो दोस्तों देखिए, आपने अभी प्यारा सा ट्रैक सुना खिलाड़ियों की खिलाड़ी फ्रॉम द मूवी से, हमें सीधे साधे अक्षय अक्षय। लेकिन हम इधर जो दो कुड़िया बैठे हैं ना स्टूडियो में, हम बिल्कुल भी सीधे साधे नहीं है, हम बहुत नटखट बहुत शरारती हैं और इधर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, पर इधर खुशी आप सभी के बीच फिर से कनेक्ट हो गई है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों शो का नाम है महिला मंच और आज हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी के बारे में। तो दोस्तों अब अक्षय कुमार जी के बारे में हमने बात की है, अब बात करते हैं उनके कुछ सुपरहिट गानों के बारे में। दोस्तों उनका एक शानदार गाना है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली, टिप टिप बरसा पानी, जो कि मानसून आपको बताइए चल ही रहा है। और ये गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास इतनी आती है ना एवरीवन, मैं आपको काउंटिंग नहीं करा सकती, मतलब मैं काउंटिंग करना ही भूल जाऊंगी, इतनी बारी हमें रिक्वेस्ट आती है इस गाने की। और अगर एक गाने की और बात करें, गो गो गोविंदा, दिल ने ये कहा है दिल से, फ्रॉम द मूवी धड़कन, याद आया आपको वो राम का किरदार कितनी खूबसूरती से अक्षय कुमार जी ने उस किरदार को निभाया। और वो फिल्म तो सभी की धड़कनों में बसी हुई है क्योंकि गाने इतने प्यारे प्यारे हैं धड़कन मूवी के। शिल्पा शेट्टी जी साथ में सुनील शेट्टी जी, अक्षय कुमार जी का किरदार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक अच्छे बेटे का किरदार उन्होंने निभाया, एक अच्छे पति का रोल उन्होंने प्ले किया, बहुत ही अच्छी फिल्म रही है अक्षय कुमार जी का वो मासूम सा चेहरा। और अब बात करते हैं हम तेरी ओर, कैटरीना कैफ जी के साथ ये प्यारी सी फिल्म की है। तो गाना कितना प्यारा है ना तेरी ओर, हम आपके और चले आते हैं एवरी डे आपके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों लाल घगरा ओए होए होए सौदा खरा खरा, आपको पता है ये गुड न्यूज मूवी का ये प्यारा सा ट्रैक है। और तो दोस्तों अभी आपने ये सुना होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी रहा है बाला बाला एंड जैसे गाने आज भी लोगों की प्ले लिस्ट में शामिल है। और इन गानों पर आज भी पार्टियों और शादियों में लोग झूमते हैं, मैं तो बहुत झूमती हूँ, बाकी परे आप बताओ आप कैसे झूमती हो इन गानों पर, क्या अभी इन गानों को पसंद करती हो?
1: बिल्कुल, अक्षय कुमार के सभी गाने, उनकी फिल्में और उनकी एक्टिंग के तो हम सभी दीवाने हैं, और उनकी फिल्में भी हम देखते हैं, उनके गानों पर भी झूमते हैं, और वो इतनी कॉमेडी फिल्में बना करते हैं उसमें भी हम सबको कितनी हंसी आती है। उनके संग जो कलाकार होते हैं वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी सब बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, हंसाते हैं, एक से बढ़कर एक हैं। अक्षय कुमार के संग काम करना एक बहुत ही ट्रिकी टास्क है क्योंकि उनका हम छोटा सा एक अक्षय कुमार का डेली रूटीन जानेंगे, जिसमें क्या आपको पता है दोस्तों कि वो रोज सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और अपनी लाइफ को पूरे डिसिप्लिन में रखते हैं। सुबह उनके उठने का समय आप लोग गैस भी नहीं कर पाएंगे, 4:30 से 5 बजे तक उठते हैं। उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, वो मुंबई की बीचों पर रनिंग करते हैं, वो अपने घर में संतुलन बनाए रखते हैं, खाना पीना भी वो बहुत संतुलित मात्रा में खाते हैं, और वो शाम का सूरज जो जब ढल जाता है, सनसेट हमारा हो जाता है, उसके बाद वो ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं और वो 9:30 तक सो जाते हैं। और उनका मानना है कि अच्छी सेहत ही असली दौलत है। कितनी बढ़िया बात कही, आजकल लोग पैसों पे मरते हैं और दौलत पे मरते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, पर अक्षय कुमार पहले ऐसे एक्टर हैं जो सेहत को दौलत मानते हैं। इससे बड़ी बात सीखने के लिए और हमारे पास क्या हो सकती है।
0: बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा परी कि सबसे जो कीमती होती है वो होती है हमारी सेहत।
1: सही बात,
0: क्योंकि हम अगर फिट रहेंगे तभी तो हम हर एक चीज का लुफ्त उठा पाएंगे ना, और जब हमारी सेहत ही नहीं अच्छी होगी तो हमारे पास कितना भी पैसा आए, कितना भी ऐशो आराम आए, हम उसका लुफ्त ही नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों आप भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखो, जो फिट है वो हिट है। आगे आप क्या कहना चाहेंगे परी?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते हैं, अगर आप स्वस्थ रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे तो अपने परिवार को भी समय दे पाएंगे और खुद का भी ध्यान रखो।
0: बहुत अच्छा बोला है आपने। तो फिटनेस की बात अगर आई है तो हम से भी जान लेते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है ना, एक्टर के साथ साथ ना अपनी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना बनता है। और मुझे भी अच्छा लगता है जब अपने बारे में हम थोड़ा सा गपशप करते हैं। देखो परी मुस्कुराने लगी है अभी से ही। तो परी मुझे आप बताओ आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं?
1: एक्सरसाइज तो जैसे की वॉकिंग हो गई, हाँ। कि रात का खाना खाने के बाद हमने थोड़ा टहल लिए, हाँ। और फिर पेरेंट्स के संग थोड़ी देर क्या बोलते हैं टहलते टहलते बात करते करते आगे निकल गए, जिससे फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाता है और पापा मम्मी के साथ मेरी वॉक हो जाती है और उनकी वॉक हो जाती है। तो वॉकिंग क्या होता है कि उससे आपका जो नसें हैं वो ठीक रहती हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक रहता है, और क्या बोलते हैं सबसे बड़ी बात, वॉकिंग करने से आप ये देख पाते हैं कि आपके आसपास हो क्या रहा है, आपको गॉसिप्स मिल जाती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और शायद लड़कियों में तो गॉसिप इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी गॉसिप इकट्ठी कर लेती हैं।
0: जब वो एक बार बोलना शुरू करती है ना एवरीवन, तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती है।
1: जैसे कि आप हम लोगों को ही देख लीजिए
0: जब तक कोई हमें कहना दे कि रुक जाइए। अब हम आरजी का काम ही होता है बोलने का, और दोस्तों तभी तो इस फील्ड में आए है ना।
1: वैसे तो खुशी मैम आपने बहुत पूछ लिया मेरे बारे में, अब थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और ऑडियंस को ये बताएं कि आपका डेली रूटीन क्या है। आप सुबह कितने बजे उठती हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करती हैं, खाना पीना क्या खाती हैं, और आप अपने पूरे दिन में क्या क्या करती हैं।
0: ओके, तो आपने बात की मेरी फिटनेस के बारे में कि आप कैसे क्या आपका डेली रूटीन होता है, आप कितने बजे सोकर उठती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा जो टाइमिंग है सोकर उठने का, वो मैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ, और 5 बजे उठकर पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ हर एक चीज के लिए, एक नया सवेरे के लिए, एक नए दिन के लिए, और इतनी उन्होंने अच्छी लाइफ हमें दी है, इतना अच्छा जीवन दिया है। एंड उसके बाद मैं करती हूँ वॉक पर जाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में।
2: गाइस ये सच नहीं बोल रही है
0: तो मैं सुबह सुबह वॉक करने जाती हूँ, टहलने जाती हूँ, और सुबह का वातावरण इतना खूबसूरत होता है, चारों तरफ एकदम शांत माहौल होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, और सुबह मैं देखती हूँ कि इतने सारे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सीनियर सिटीजन तक, सभी लोग अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, तो मुझे भी लगा कि मेरे को भी करना चाहिए। तो मैं सुबह सुबह ऐसे दिन की शुरुआत करती हूँ, और मैं बताना ही भूल गई कि मैं पहले गुनगुना पानी भी पीती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, गुनगुना पानी पीती हूँ, फिर वॉक करने जाती हूँ, उसके बाद आती हूँ, फिर आकर स्नान करती हूँ, फिर घर के सारे काम करके पूजा करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद तैयार होती हूँ, फिर ऑफिस चली जाती हूँ, उसके बाद आकर जो अपने काम होते हैं वो रूटीन वो करते हैं। फिर शाम को जब मैं अपने घर जाती हूँ तो पहले मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ, पहले मैं आराम से सो जाती हूँ, फिर अपने काम को फिर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हमारा इतना बिजी होता है कि रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, और बॉडी आपको बताया कि थक जाती है। तो फिर मैं आराम करने के बाद शाम को फिर डिनर बनाती हूँ, कुछ हल्का लाइट वो खाती हूँ, फिर 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। ये मेरा रूटीन है। तो दोस्तों देखिए, आपने मेरे बारे में परी ने पूछा तो मैंने बता दिया ये मेरा डेली रूटीन है। हाँ, फोन भी चलाती हूँ, ये तो बताना ही भूल गई थी दोस्तों। चलो अभी मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और लौट कर आते हैं फिर से करते हैं।

0: तो दोस्तों, अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी धड़कन, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, और हमें सच में आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है दोस्तों, क्योंकि आप सबको एफएम मुरादाबाद से प्यार है, तो हमें आपसे प्यार है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो क्या गम है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं अक्षय कुमार जी की कुछ हिट फिल्मों के बारे में। अब बात करते हैं अक्षय कुमार जी की हिट फिल्मों के बारे में। दोस्तों, उनकी फिल्म रही है मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हीरा फेरी, गरम मसाला, भूल भुलैया, वेलकम, सिंह इज किंग, राउडी राठौर, राउडी राठौर, स्पेशल 26, बेबी, एयरलिफ्ट, रुस्तम, पॉलिटिक प्रेम कथा, पैडमैन, गोल्डन केसरी, मिशन मंगल, सूर्यवंशी और ओएमजी जैसी फिल्मों ने उन्हें हर वर्ग का पसंदीदा अभिनेता बना दिया।
1: दोस्तों, अब हम जानते हैं अक्षय कुमार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 30 से अधिक वर्षों का फिल्मी करियर रहा है उनका, 150 से ज्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके हैं, और कुछ फिल्मों में तो उन्होंने अपने स्टंट्स खुद किए हैं। फिल्मों से हटके अगर हम थोड़ी बात करें, रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी भी उन्होंने होस्ट किया है, और उससे थोड़ा और हटके बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, और सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है।
0: तो दोस्तों, अब हमारा जो दोस्तों, अब हम चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। अब हमारे जाने का भी वक्त हो गया है। दोस्तों, संघर्ष से सफलता तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और अनुशासन उसे संभव बना देता है। कहते भी है ना कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अक्षय कुमार सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि समय की पाबंदी, फिटनेस और मेहनत की मिसाल है। इसी प्रेरणा के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक नए कार्यक्रम में नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, दोपहर हो या शाम, जब संगीत हो सा तो हर धड़कन कहती है बस बजता रहे अपना गाना खास। और आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आप सभी का अपना म्यूजिकल टाइम शुरू हो चुका है। जी हाँ, हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइशें सिर्फ एक गाना नहीं होती है बल्कि उससे जुड़ी होती है आपकी कहानी, आपकी यादें और आपके दिल की बातें। और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:05। आप भी इस बेहतरीन शो में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई अपने पसंदीदा गीत आप सुनना चाहते हैं या कोई शायरी सुनाना चाहते हैं तो फटाफट से कॉल लगाइए आप मुझे। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और हमारे साथ ना हमारी फर्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार, नमस्कार।
0: आपको
1: नमस्कार।
0: भी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं हूँ दफ्तर रेडियो श्रोता, संघ जिला मंदसौर तहसील शामगढ़ मध्य प्रदेश से राधेश्याम टेलर बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बस बढ़िया है। आप कैसे हैं और आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
0: हमारे यहाँ का मौसम धूप भी है और हल्के से बादल भी हो जाते हैं, धूप भी हो जाती है, ऐसा मौसम है हमारी मुरादाबाद सिटी का। आप बताइएगा एमपी का मौसम कैसा है आपकी साइड?
1: जी हमारे यहाँ शामगढ़ का मौसम तो काफी सुहाना है और इस सुहाने मौके पर काले काले बदल भी आड़ में आ रहे हैं, सफेद बदल भी है और धूप भी खिली हुई है।
0: हाँ जी हाँ जी, तो बताइए सुहाने से मौसम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: जी पहले मेरे दोस्त को है लोकेंद्र वर्मा जी, वो भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: का नाम है गरीबों का दाता, है ना?
0: हाँ
1: और
0: जी।
1: गीत है इस लड़की कल मिली थी, मिल जाए आज फिर तो मैं उससे खुल के दिल की बात करूं, बतलाओ कौन है उसका है नाम क्या, कोई भी हो तुझे उससे है काम क्या। ये गाना सुनना।
0: अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा गुनगुनाया है सर। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया सर। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक और मैं वापस आती हूँ। जब तक आप भी कॉल लगाइएगा, आपका कॉल भी तुरंत लग जाएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत

0: अरे तौबा, क्या करती हो
1: तुम? ये बताओ, तुमसे वो मिलेगी तो तुम क्या करोगे?

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक मोहम्मद अजीज साथ में जानकी जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी गरीबों का दाता से ये गाना अभी आपने एंजॉय किया। और अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जिला अमरोहा में वस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी बोल रहे हैं
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: बस अच्छे हैं, मैं फोन लगा लिया आपको।
0: जी बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम रहेगा दो रास्ते, गाने के बोल उस तरफ हैं, छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, ये गाने के बोल रहे हैं।
0: ओके, अभी आप सर कहाँ पर हैं? आपके बैकग्राउंड में पक्षियों की आवाज आ रही है मुझे।
1: देखिए यहाँ पर थोड़ा बाहर आकर बातचीत कर रहे थे, तो हमारे भाई साहब का खेत था, तो वहाँ पर गुलर के भी पेड़ हैं, बकान के भी हैं,
0: अच्छा
1: पाखड़ का भी पेड़ है, तो वहाँ पर पंछी बैठे हैं।
0: ओके, वो भी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ
1: जी हाँ।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गाना आपको। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका, मोस्ट वेलकम। नमस्कार आपको भी सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक, छुप गए सारे नजारे हुए क्या बात हो गई, तुमने काजल लगाया दिन में रात हो गई। बहुत ही खूबसूरत गाना है, सुनते हैं उसके बाद लौट कर आएंगे। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दूर रास्ते जो 1969 में आई थी, और इस खूबसूरत गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने एंड साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी एंड लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, आदाब।
0: आपको भी आदाब, गुड आफ्टरनून, कैसे हो डियर? मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ, शमा से बात करके और अच्छे हो गए हैं। या बताइएगा शमा परवीन जी, कैसे हाल चाल है आपके परिवार में, सब लोगों के?
1: परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं मैम।
0: ओके, और आप बताइए इस वक्त क्या कर रहे थे?
1: मैं

0: अच्छा आराम फरमा रही थी मोहतरमा। हाँ
1: जी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आराम करते करते आपने सोचा चलिए कॉल भी लगा लेते हैं, और कॉल लग जाए तो फिर सोने पे सुहागा क्यों?
1: जी जी मैम
0: जी, बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: मैम मूवी का नाम रहेगा जानते हैं नाम, और गीत के बोल रहेंगे रोने न दीजिएगा तो
0: गाया
1: न जाएगा।
0: अरे वाह, ये गाना किसके लिए सुनना चाहते हो?
1: मैम हम जितने छोटा समय सभी के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे।
0: ओके ठीक है,
1: और
0: तो, हाँ हाँ टेल मी, क्या बोला आपने, दोबारा बोलिएगा।
1: और मैं धुलाई ने कहना चाहूंगी।
0: जी बिल्कुल कहिए, हम सुनने के लिए बेताब हैं।
1: मैम कहते हैं कि टूटा हुआ दिल कभी जोड़ा नहीं जाता, टूटा हुआ दिल कभी जोड़ा नहीं जाता, अपना बनाकर कोई छोड़ा नहीं जाता, उसकी सूरत लगती है मुझको इतनी प्यारी कि उसको देखकर भी मुंह मोड़ा नहीं जाता।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल ही कर दिया आपने तो। बहुत खूबसूरत लाइनी थी आपकी शमा, एंड मोस्ट वेलकम डियर, सुनवाते ही गाने, आप एंजॉय कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बताइएगा।
1: मैम जैसे कि है निकट फातिमा, दायवा फातिमा और रुकैया फातिमा, गाड़ी समाधि से हाजी गफार अंकल, और खनिया कॉलोनी से आगे समुना बासी जी, और मुरादाबाद से है पम्मी जी, और प्यारे प्यारे आपको।
0: ठीक है, सभी के साथ सुनवाते ही गाने, एंजॉय कीजिएगा। मोस्ट वेलकम, आपको भी टेक केयर। तो चलिए अभी फर्स्ट सुनते हैं ये ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत, और आपको भी ये मौका मिल रहा है तो फिर देर किस बात की है, जल्दी कॉल लगाओ ना आप, इतना आलस ठीक नहीं होता है। नंबर मैं बता रही हूँ, आप नंबर की टेंशन ना लो, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896, इस नंबर पे आपको कॉल लगाना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। अभी फिलहाल ये गाना एंजॉय करो।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो।

0: एंड गुड आफ्टरनून, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है, आप भी कॉल लगा सकते हैं, अपना फेवरेट कोई भी गीत आप सुन सकते हैं। तो ये मौका आपको मिला है, इसे बिल्कुल मिस ना करें, जल्दी से हमें कॉल कीजिएगा। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं राइट नाउ। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर।
1: हाँ जी, हम बोल रहे हैं संबल से, छोटे अंसारी
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सब।
1: बहुत बढ़िया हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी जी, मेरा कॉल लग गई तो बहुत खुशी होती है।
0: आपकी हर बार कॉल लगती है और आप हर बार खुश हो जाते हैं, ये हमें जानकर बड़ी खुशी होती है सर। बताइएगा आज आपकी आज आपका कौन सा गाना सुनने का मन है, ये बताइए पहले।
1: तो फिल्म का नाम है बगावत।
0: हाँ जी।
1: हाँ, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की
0: जी।
1: हाँ, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीत के बोल इस तरह हैं, नागिन सा रूप है तेरा, मैं बन के प्रेम सा फेरा, ले जाऊंगा तुझको दुनिया देखेगी।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत गाना है। और ये गीत आप किन के साथ सुनना चाहते हैं, कोई आपके दोस्त हैं जिनका आप नाम लेना चाहते हैं सर।
1: एक तो आजी जी हैं, खुशी जी हैं और बाबू भाई हैं, छप्पर वाली मस्जिद के साथ भाई हैं
0: जी।
1: और जी और बहारुल हुसैन सद्दीकी भी हैं, ये हमारे भतीजे हैंगे बिलाल भाई, और संबल से छोटे अंसारी तो हैं जी।
0: जी, तो आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं फिर ये खूबसूरत सा गीत। आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं ये सर की पसंद का प्यारा सा गीत, और हम अभी बस इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, शायद आपका भी कॉल लग जाए, है ना। तो कोशिश करते रहना चाहिए कंटिन्यू, जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको सफलता भी मिलेगी, चाहे वो हेलो फरमाइश शो के लिए हो या अपनी लाइफ में कोई ड्रीम अचीव करने की हो। जब आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तभी आपको सफलता भी मिलती है।
2: जानता नहीं हम कौन हैं।

0: मदन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाए बहुत ही प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में। मूवी का नाम था बगावत, जो 1982 में आई थी। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, आपको आवाज आ रही है सर?
1: हमारी आवाज आपको आ रही है?
0: हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज हमें मिल पा रही है। बताइएगा अपना नाम।
1: मैं भी सुन पा रहा हूँ मैम आपकी आवाज। मैम मैं ग्राम गोविंदपुर खुर्द से वाजिद अली मिस्त्री बोल रहा हूँ
0: जी। बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, चल रहा है। दोपहरी में 10 की खास की गर्मी पड़ रही है मैम इस टाइम।
0: हाँ गर्मी तो बहुत ज्यादा है सर।
1: जी मैम जी
0: जी, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना सुनना चाहते हैं, मतलब ये लोग यहाँ पर, मतलब ये जमाना सोचा साया साथ देगा लिखला वो बेगाना।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गाना आपको, आपकी पसंद क्या?
1: सुनने वाले हैं दो चार सोचा सुनने वाले हैं।
0: जी जी बताइएगा, आपके दोस्त कौन है जो आपके साथ सुनना चाहते हैं ये गाना?
1: ये हमारे मोहम्मद उमर, वारिस अली
0: जी,
1: जैनुल आबेदीन
0: ओके,
1: और हमारे मामा है, ये हमारे संग काम करते हैं रेगुलर, ये
0: ठीक है जी। आप अपने परिवार एंड अपने दोस्तों के साथ सुनिएगा ये गीत। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर। तो एवरीवन सुनते हैं ये गाना किशोर कुमार जी की आवाज में, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर आपको याद है ना? अच्छा नहीं याद है, ओहो भूल जाते हो आप। चलो मैं बताती हूँ, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक किशोर कुमार जी की आवाज में, और अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: ये जो मेरी आंखों से लाली नहीं जाती, ये जो मेरी आंखों से लाली नहीं जाती, जैसे से तेरी याद निकाली नहीं जाती, कोई आए और संभाले इसको, हमसे तो ये जागीर संभाली नहीं जाती। मैडम जी नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत बढ़िया है, आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, हम लोग भी ठीक है, आप बताइएगा। मौसम कैसा है आपकी साइड?
1: मौसम तो मैम ठीक है, क्योंकि अभी दो तीन दिन पहले रात को जबरदस्त बारिश हुई थी, उसके चलते हमारे पूरे मतलब बरेली शहर में पानी का भरा हो गया है, इसमें कहीं आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस समय की बात करें तो इस समय धूप खिली हुई है और बहुत ही अच्छा मौसम है।
0: ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, जान के हमें भी अच्छा लगा कि अब मौसम ठीक है। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप सब?
1: गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर, इसका गाना है अब के बरस बरसों के बाद प्यार करने का मौसम आया, लेकिन जिससे पहले प्यार लेने में आपको जरूर पेश करना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल।
1: ये सफर दोस्ती का कभी खत्म नहीं होगा, ये सफर दोस्ती का कभी खत्म नहीं होगा, हमारा ये प्यार कभी कम नहीं होगा, दूर रहकर भी जब महके की खुशबू इसकी, हमें कभी दूरियों का एहसास नहीं होगा।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत लाइन है आपकी सर, मोस्ट वेलकम सर। सुनवाते ही गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। जी तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, और तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल लग जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 98-378-96-896, इस पर कॉल लगाइएगा और अपनी पसंद का गाना सुनते जाइएगा।

0: देखिए दोस्तों, हर मौसम अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों हर मौसम का ना आनंद लेना चाहिए, चाहे बारिश हो या फिर विंटर्स हो, समर्स हो, हर एक मौसम का लुत्फ उठाइए। जिंदगी तभी खूबसूरत लगती है। देखिए जैसे लाइफ है ना, हमारी जिंदगी में कभी खुशी कभी गम चलते रहते हैं, तो वैसे ही मौसम में भी बदलाव आता है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, प्यारा से गाना आपने एंजॉय किया है और जान लेते हैं अगली फरमाइश क्या है, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। आप भी ये जानने के लिए यू नो भी करार रहते हैं ना कि पता नहीं नेक्स्ट फरमाइश क्या होगी, कौन सा गाना होगा, है ना। मेरे लिए भी ऐसा ही होता है। चलो अभी बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी हेलो।
1: गुड आफ्टरनून।
0: वेरी गुड आफ्टरनून।
1: और कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ। आपके पास साइड में छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है इतना?
1: मैंने बाहर जाना है, घुमा के लाऊंगी।
0: अच्छा ओके जी, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैम आप जब्बू मैन का गाना सुना दो।
0: जब्बू मीट मूवी का कौन सा गाना सुना है? अच्छा ठीक है, सुनवा देते हैं हम ये गाना। आप घुमाइए अपने प्यारे सी भांजी को, वरना वो रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लेगा। छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं। मोस्ट वेलकम। तो चलिए जी फन सुनते हैं पिंटू जी की पसंद पर ये गाना और हम वापस अभी आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक्चुअली रेडियो से हमारे दिन की शुरुआत होती है और हमारी शाम भी रेडियो के साथ ही होती है। जैसे ही हम उठते हैं घर में, तो सबसे पहले हम रेडियो ऑन करते हैं और रात को सोने से, मतलब जब तक जागते हैं तब तक रेडियो सुनते रहते हैं। इतनी मोहब्बत है हमें, और दिन में तो पूरे दिन रहते ही हैं आप सभी के साथ कनेक्ट। एंड दोस्तों, अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया मोहित चौहान जी की आवाज में। लिरिक्स थे इरशाद कामिल जी के, म्यूजिक डायरेक्टर थे प्रीतम जी। बात करते हैं अभी अपनी नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्ते जी, बताइएगा क्या नाम है आपका।
1: अनु पांडे बात कर रही हूँ मैं, कोंडा से।
0: ओहो पांडे जी, नमस्कार, क्या हाल है आपके।
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बस, आप बताइए आप कैसे हो।
0: मैं भी ठीक हूँ अनु, बताइएगा परिवार में सब ठीक है आपके यहाँ पर।
1: एकदम मस्त है, सब लोग अच्छे हैं।
0: ओके,
1: आज याद आ रही थी तो हमने सोचा कॉल लगा देते हैं, कॉल भी लग गई तो बात भी हो रही है, बातों के जरिए मुलाकात भी हो रही है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तभी हम सोचे अनु कि आज हमें हिचकियाँ क्यों इतनी आ रही थी। ओहो अभी पता चला है कि अनु जी हमें याद कर रही थी। हाँ
1: सॉरी मैं हिचकियाँ आने के लिए, लेकिन क्या करूँ, आप कितना मीठा बोलते, इतने अच्छे हो कि याद आ ही जाती है।
0: थैंक यू। एंड बताइएगा अनु, और क्या हो रहा है आज, मौसम कैसा है आपके साइड गोंडा जिला का।
1: मैम मौसम ना बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना सा है,
0: सुहावना सा मौसम है,
1: मतलब ऐसे थोड़ा बहुत चल रही है और धूप नहीं है, एकदम बादल बादल
0: नहीं। ओके अरे वाह, तो बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हो आप, कौन सा गाना है जो दिल के करीब है आपकी।
1: मैम मेरे भी दिल के बहुत करीब है, और स्पेशली ये सॉन्ग आपके लिए है, मुझे आपकी चाहत यहाँ लेकर आई है।
0: हाँ इसमें तो कोई शक करने वाली बात नहीं है, रियलिटी है, हमारी मोहब्बत आपको खींच कर ले आती है। थैंक यू अनु, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, फिर मुरादाबाद सुनते रहिए और ये प्यारा गाना हम आपको सुनवाते हैं।
1: ओके मैम बाय।
0: बाय अनु, टेक केयर। तो चलिए अनु पांडे जी की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक उदित नारायण जी की बहुत प्यारी आवाज में, प्यारा सा गाना। हम लौट कर आते हैं, आप भी कॉल लगाइए। देखिए इतने दूर दूर से कॉल आ रहे हैं और आप हैं कि कॉल लगाने के लिए सोच रहे हैं। ओहो मैम नंबर तो बहुत बिजी आता है, कैसे कॉल लगाएं। भैया आप ट्राई करो तभी तो कॉल लगेगा ना, आप कोशिश भी ना करें ऐसे कैसे हो जाएगा। हाँ

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है हेलो फरमाइश। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग सा ट्रैक उदित नारायण जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी शौहरत सी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं राइट नाउ। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाय, क्या नाम है आपका?
1: कोमल शर्मा।
0: कोमल शर्मा जी, बड़ी कोमल सी आवाज है आपकी, क्या नाम, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मुरादाबाद लाइन पर आपके पड़ोसी।
0: अच्छा, आप हमारे पड़ोसी हैं
1: जी,
0: हमने तो आपको देखा नहीं है मैम।
1: देखो
0: देखो, कहाँ देखे बताइए,
1: बताओ कहाँ मिले हम आपको?
0: आप हमें मिल जाइए जहाँ आपका दिल चाहे,
1: सामने मिल जाना
0: फिर आप। ओके मैम, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आप मेरी फरमाइश का गाना सुनवाते तो वो नहीं हो
0: मैम, ऐसा मत कीजिएगा, आप नहीं सुनवाते हैं, सुनवाती तो हैं। कभी कभी होता है कोई गाना ऐसा जो हमें, क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि देखिए रेडियो पे ना वो गाना प्ले होना चाहिए जो सबको पसंद आए, समझ रहे हैं आप, और हमें सबको सबकी चॉइस को ध्यान में रखना होता है। तो कुछ गाने होते हैं जो हमें परमिशन नहीं होती है प्ले करने की, हाँ, वरना कोशिश तो हम करते हैं कि सभी की फरमाइशें पूरी करें। आज बताइए कोमल जी, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: ओ यारो, मैंने पंगा ले लिया।
0: किससे? किससे लिया है पंगा, बताइए कोमल जी?
1: आपसे।
0: अरे यार, मुझसे पंगा ना लो, मैं तो बहुत सीधी सादी सी लड़की हूँ, हार जाऊंगी।
1: हराने तो है।
0: अच्छा, पक्का?
1: अच्छा, सोचते हो तो थोड़ा कठिन पूछा करो जो लोग सोचते रह जाए और मैं विनर बन जाऊं।
0: आप तो विनर बने थे आज भी सुबह मॉर्निंग में, याद है आपको?
1: पता है,
0: हाँ, तो देखिए आप तो विनर बन जाती है। और थोड़ा चलिए कल से हम थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे जिसमें बताने में ना आपका थोड़ा सा जो माइंड है ना उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है?
1: ठीक है
0: जी, तो सुनवाते हैं अभी आपको ये शानदार से गाना। थैंक यू सो मच कोमल जी कॉल करने के लिए। ठीक है?
1: ठीक है,
0: ओके, बाय
1: बाय।
0: तो चलिए कोमल जी की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक दोस्तों आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9833789689693786। इस नंबर पे कॉल लगाइए और खुशी के साथ कनेक्ट हो जाइए, अपनी पसंद का गाना सुनते जाइए।

0: तो दोस्तों ये सुना अभी आपने अल्ताफ रजा जी की आवाज में खूबसूरत सा गाना। और हमारी अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हाय दी।
0: हाय, क्या नाम है आपका?
1: राबिया बात कर रही
0: हूँ मैं। ओके, बताइए राबिया, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ राबिया। और दरक्षा की आवाज एक जैसी क्यों लगती है?
1: जी मैम, सिस्टर है ना।
0: अच्छा, बहने हैं आप? जुड़वा बहने हैं?
1: जी नहीं मैम।
0: अच्छा, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा मैच करती है आप दोनों की।
1: अच्छा मैम।
0: बताइएगा आप क्या सुनेंगी राबिया?
1: मेरी सास सास मेरे यार के लिए।
0: अच्छा ओके, तो ये गाना किनके साथ सुनना चाहते हैं आप बताइएगा? कौन है वो आपकी दोस्त?
1: ये दरक्षा फातिमा, फातिमा लाइबा काजमी, रुकैया।
0: ओके तो सुनवाते हैं ये गाना।
1: जी मैम।
0: ओके, थैंक यू कॉल करने के लिए डियर। तो चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर। राबिया की पसंद पर सुनते हैं ये गाना, बहुत ही खूबसूरत सा है, कुमार सानू जी और साथ में कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप कहीं मत जाना, रेडियो किसी को बिल्कुल भी नहीं घुमाना और प्यारे प्यारे गाने सुनते जाना ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी पहली मोहब्बत से, कुमार सानू और साथ में कविता कृष्णमूर्ति जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में ये प्यारा सा गाना। म्यूजिक डायरेक्टर थे नरदीम शरवण जी एंड लिरिक्स थे समीर जी के। और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम मोहम्मद तामिल है, मैं जैनपुर से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइएगा।
1: मैं रेडियो सबको सलाम करना चाहता हूँ।
0: वालेकुम सलाम। बताइएगा सर, क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: आज मैं शादी का पिक्चर लगाना सुनना चाहता हूँ, मुझे मिल गया।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको।
1: ये जो है मैं नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी जी बताइएगा।
1: हमारी बहन सुनना चाहती है, मेरे को फहीमा, और हमारे बहनों में सुल्तान
0: जी,
1: और हमारे दोस्त हैं नदीम भाई।
0: ओके ठीक है, आपकी फैमिली के साथ और आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। फ्रॉम द मूवी पाकीज़ा से ये गाना है जो 1972 में आई थी फिल्म। एंड दोस्तों मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा और ये सुन गाना सुनते जाइएगा।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और हमारे साथ ही कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। तो लगता है ये हमें नहीं सुन पा रहे हैं शायद। चलिए दोस्तों, ये तो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हाँ फिलहाल मैं आपको एक गाना सुनवाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारा सा है। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी, मैं क्या जी, की हाल चाल दस दो मैनू, की कह रहे हो तुसी? ओ हो, सब बढ़िया हो? चलिए बढ़िया ही रहना चाहिए, और क्या चाहिए जिंदगी में। चलो अभी बात करते हैं, हमारी एक लिसनर जुड़ी है जो कि चंडीगढ़ से कनेक्ट हुई है हमारे साथ राइट नाउ, तो उनसे बात करते हैं। और जब चंडीगढ़ का नाम सुनते हैं ना पंजाब का, तो पंजाबी जो है ना वो लैंग्वेज मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर आने लगती है। प्रॉपर तो पंजाबी नहीं आती है, बट हाँ जितनी भी पंजाबी आती है हम कोशिश करते हैं कि बोलें, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज में ना एक अलग ही प्यार है यार। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: सत श्री अकाल जी। नाम की है थोड़ा? हाँ नाम बताएगा। अच्छा, ओके, यूपी वाले हैं जी, चंडीगढ़ में रहते हैं, है ना? चलिए बढ़िया है जी, और बताइएगा कैसे हैं परिवार में, हम सब आपके यहाँ पर
1: सारे लोग हैं और सभी लोग अच्छे हैं
0: जी। तो बताइएगा, आज फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, कैसे लग रहा है आपको?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज पहली बार बात हो रही है आपसे, और बहुत ज्यादा खुशी हो रही, खुशी मन से बात हो रही है।
0: और ये क्रेडिट आप अपने दोस्त को भी देना चाहेंगे ना, जिन्होंने आपको इस
1: अनु पांडे जी ने हमें जोड़ा है,
0: हाँ कनेक्ट किया है भाई। तो बताइएगा मैम, फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं, आप इतना हैप्पी हैं, तो अब आप रेगुलर जुड़ोगे ना आप हमारे साथ, सुनोगे ना
1: हमें
0: जी मैम। अच्छा ये बताइएगा रोशनी जी, आपने अभी फर्स्ट टाइम कॉल लगाया है, तो टाइम तो नहीं लगा ज्यादा या इजीली कॉल लग गया आपका? हाँ बिल्कुल, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, जब मन में ठान लेते हैं ना चीजें करने का तो सफलता मिलती है।
1: हाँ जी।
0: तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगी आज मैम?
1: मैम आप अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए मुझे।
0: अच्छा, सुनने के लिए तैयार हैं आप?
1: हाँ जी।
0: अरे वाह,
1: मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने अनु पांडे जी को।
0: हाँ,
1: स्पेशली आपको।
0: थैंक यू सो मच,
1: सभी को डेडिकेट रहेगा हमारा सॉन्ग।
0: थैंक यू रोशनी जी, आपने तो हमारे एफएम में कॉल करके पूरे स्टूडियो में रोशनी फैला दी है रोशनी जी।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम, नाइस टॉकिंग टू यू।
1: तो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना कि आपने मेरी मतलब कॉल रिसीव की।
0: हाँ मैम, देखिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इतनी शिद्दत के साथ कॉल लगाते हैं, तो हम सभी की कॉल अटेंड करने का पूरा कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं
1: जी।
0: मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, आप भी अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, और सुनिएगा ये प्यारा सा ट्रैक। बाय, टेक केयर। तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं रोशनी मैम की पसंद पर, और हम लौट कर आते हैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की उस पर। एक बड़ा ही प्यारा सा गाना है फ्रॉम द मूवी बागवान से, मेरी मखना मेरी सोनी, बहुत ही शानदार गाना है, तो मैंने कहा चलिए ये सुनवा देते हैं आप सभी को।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
6: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
5: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक सुदेश भोसले और साथ में अलका याग्निक जी की आवाज में। ये अमेजिंग ट्रैक आपने एंजॉय किया। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, बताइएगा अपना शुभ नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या नाम है आपका?
1: नाम है ग्राम चमरुआ, जिला संभल से, और इस समय हम दिल्ली द्वारका सेक्टर 9 से बात कर रहे हैं।
0: जी बताइएगा कैसा वेदर है वहाँ का?
1: बढ़िया, एकदम धूप खिली हुई है 2 दिन पहले तक।
0: अच्छा अच्छा, बताइएगा।
1: खूब हुई है, बस भरपूर वाली।
0: अच्छा,
1: और आपके नियम श्रोता है हम तो।
0: हाँ हाँ, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं सर। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: फिल्म चाहत का गाना सुनवा दीजिए, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, जो कुमार सानू जी की आवाज है।
0: अच्छा, और ये ट्रैकिंग के साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: ये हमारी दीदी कविता, बेटी वैष्णवी, बेटा दिव्यांग, भाई किशन व सोमपाल, छह परिवार।
0: ओके ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको सर।
1: जी धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये गाना। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपका अगर मंडे में कॉल लग चुका है ना, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट मंडे ही कॉल करें, क्योंकि नए नए लिसनर्स को भी मौका मिलना चाहिए। और बहुत सारे श्रोता हमारी बात को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ हैं कि नहीं मानते हैं, कॉल किए जाते हैं बैक टू बैक, तो ऐसा ना करें।

अच्छा नहीं लगता हमें कि हम बार बार आपको बोले उस चीज के लिए। तो इन बातों को ध्यान रखिए, बाकी सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुंबई में पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। वित्तीय सूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिटयूनिक्स, डीजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स्ड फ्लॉट और ट्यूब बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देशभर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगिताओं का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। बेन शेल्टन ने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमेरिकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:14 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 9 सितंबर। और बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है आपने, मैं किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं। अक्षय पाजी भैया इस मूवी में, और सच बताऊ ना तो ये गाना एक टाइम बहुत ट्रेंड पर था, बहुत ज्यादा ट्रेंड पर। जिसका भी दिल टूटता वो यही गाने की स्टोरी लगा देता। मतलब उस टाइम जब भी आप देखते, क्योंकि अभी भी ये गाना कम नहीं है, टूटे हुए दिलों का ये गाना है, बहुत प्यारा गाना है। बी प्राक की आवाज में, मतलब उनकी आवाज में भैया गाने आए हाय, क्या ही कह सकते, बड़ा ही खूबसूरत गाना लगता है उनकी आवाज में। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं 2 घंटे के लिए, ढेर सारी बातें करेंगे, मुरादाबाद से लेकर लोकल फोर वोकल तक बात करने वाले, देश दुनिया की बात करने वाले हैं। और आज का स्पेशल डेज और साथ ही साथ बर्थडे स्पेशल, अगर आपका भी बर्थडे है तो आप बिल्कुल हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आज हमारा बर्थडे है। और सोचिए रेडियो पर जब आपकी आपका जो बर्थडे है सेलिब्रेट किया जाएगा, हर कोई सुनेगा, तो आपको और कितनी ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी भैया, अगर आपका भी आज बर्थडे है तो बेधड़क बिंदास होकर हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि आज हमारा भी बर्थडे है, तो आपका बर्थडे रेडियो पर सेलिब्रेट और विशेस दिए जाएंगे। तो उसके लिए हमारा नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करना है और फिर तो आपने मजा ही आने वाला है। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए 7 अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए 7 अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी।

तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है कि तू क्या चीज है।

0: ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ?
1: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है दिलजीत सिंह की आवाज में। और इनकी आवाज में भैया जितने भी गाने होते हैं ना, आय हाय, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही शानदार वाले गाने होते हैं। और अभी राइट नाउ अगर समय की बात करूँ तो 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। अगर आप ऑन द वे हैं तो हेलमेट सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हेलमेट सीट बेल्ट लगाना जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप लगाएंगे हेलमेट और सीट बेल्ट तो आप सेफ रहेंगे। और साथ ही साथ मुरादाबाद के टेम्परेचर की बात करूं भैया तो 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और ये कहा जा रहा है मुरादाबाद में राशन के बारे में लेकर, राशन कार्ड जो आप राशन उठाते हैं उसके बारे में आखिरकार क्या अपडेट है, क्योंकि कल है 10 सितंबर और कल से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। देखिए कोई भी जानकारी है लेकिन थोड़ा सा क्रेज तो बनना चाहिए ना, थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा आपको। फिलहाल एक और बहुत ही शानदार वाला हम गाना सुनेंगे सतेंद्र सरताज जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत गाना, और इस गाने को एंजॉय करिए। फिर हम कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ और करेंगे क्या ढेर सारी बातें।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। आज रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:37 हो चुके हैं और आप आज रीना के साथ कनेक्टेड। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही है कि राशन, हाँ जी बिल्कुल, जो राशन उठाते हैं उनके लिए भैया एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन वो भी यूपी वालों के लिए। ठीक है जी, आप ये सोच रहे होंगे ना कि और कहीं से हैं तो आपको मौका मिलेगा, नो, ये मौका सिर्फ यूपी वाले हैं, वही इस मौके का लुत्फ उठा सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कल है 10 तारीख, 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपको फ्री राशन मिलेगा, यानी कि मुफ्त राशन, जहां से आप राशन उठाते हैं वहां से ले सकते हैं, यानी कि कल से शुरू होएगा और वो 25 तारीख तक रहने वाला है। आखिरकार ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 अक्टूबर से राशन कार्ड में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो उसका आपने ध्यान रखना है। अगर अभी तक आपने राशन नहीं उठाया तो कृपया करके राशन उठा लीजिए, ताकि आपका राशन कार्ड है वो सील नहीं होएगा, साइलेंट नहीं होएगा। तो देखिए, अब फ्री राशन कार्ड यानी राशन मिलने वाला है आपको 10 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक, तो आप राशन उठा सकते हैं, अपना कोई पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री मिलने वाला है आपको, तो इस मौके का लुत्फ उठाइए। और ये बीच यानी कि 10 से 25 का टाइम इसीलिए रखा गया है कि बहुत से काम में बिजी रहते हैं, काम पर चले जाते हैं, जिसको टाइम नहीं मिल पाता, तो इसीलिए इतने दिन का टाइम मिला है। और साथ ही साथ अगर बताऊँ राशन मिलने का जो टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मिलेगा, फिर उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, फिर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फिर से आपको मिल सकता है। तो इसीलिए इसका अंतिम तिथि है 25 सितंबर, तो आप राशन लीजिए और इंजॉय करिए। और आज रीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए, फिलहाल एक और गाना सुनते रहिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गर्ड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:48 हो चुके हैं श्रोताओं, और आज का दिन बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। बॉलीवुड में तो भैया आए हाय बल्ले बल्ले तो है ही, साथ ही साथ हमारे रेडियो में भी आज का जो माहौल है बहुत ही शानदार वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम वहाँ तक आए तो बिल्कुल आप आइए, घूम कर जाइए, स्टूडियो देख कर जाइए कि कैसा होता है रेडियो स्टेशन, है ना। बहुतों के दिमाग में ख्याल होता है कि भैया हमें भी रेडियो स्टेशन जाना है, देख कर आना है वहाँ पर कैसा क्या होता है। क्योंकि जब मैं रेडियो सुनती थी ना तो मेरे दिमाग में यही आता था, और मैं हमेशा सोचती थी ना एक ना एक दिन तो मैं जाऊँगी ज़रूर, और गई भी और यहाँ तक पहुँच भी गई। क्या पता आप भी ऐसे ही हो सकते हैं। तो आज का दिन स्पेशल क्यों है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि आज है 9 सितंबर, और आज मनाया जाता है बॉलीवुड के खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और हम सबको यही पता है ना कि उनका नाम सिर्फ अक्षय पाजी है, अक्षय कुमार है, लेकिन उनका रियल नेम, असली नेम पता है क्या है आपको? राजीव हरि ओम भाटिया जी। बचपन से उन्हें इसी नाम से बुलाया जाता था, और मार्शल आर्ट का शौक उनका बहुत था। इसी हुनर को सीखने के लिए वह ना यानी कि बैंकॉक भी गए। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई छोटे छोटे काम किए, मॉडलिंग भी की, यहाँ तक जब वो यानी कि भैया वो एक तरह से खिलाड़ी बहुत शानदार वाले हैं, तो उनको किसी ने कहा कि तुम मॉडलिंग लाइन में जाओ, तो उन्होंने उनकी बात सुनी और मॉडलिंग लाइन में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचाया। अक्षय कुमार की पहली रिलीज फिल्म सौगंध, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी होगी तो डेफिनेटली देखिएगा, 1991 में रिलीज हुई थी सौगंध मूवी। बहुत अच्छी मूवी है, शानदार वाली मूवी है। हालांकि इस मूवी से उनको इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली, फिर इनका मूवी आया दीदार, और इसके बाद बहुत सारी इनकी मूवी आई, फिर आया यानी कि 1992 में खिलाड़ी, जिसने अक्षय कुमार को भैया बॉलीवुड में एक अलग ही दीवाना बना दिया। इनकी एक्टिंग, इनका डांस, इनकी कॉमेडी, हर चीज़ इतना परफेक्ट है ना कि हर किसी को बहुत ही पसंद आता है, और हर कोई आसानी से इनकी जो मूवी है बड़े देखने के शौकीन भी है। तो आप बता सकते हैं आज आपके लिए, चलो एक छूट है, सिर्फ अक्षय पाजी की मूवी के गाने आप सुन सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, तो आप मैसेज कर सकते हो, नंबर है 9837896, और साथ ही साथ उनकी मूवी कौन सी पसंद है उसी मूवी का आप गाना सुन सकते हो। तो आप मैसेज करिए और गाना एंजॉय करिए। फिलहाल एक और अक्षय पाजी के हम गाने सुनेंगे जो कि बहुत शानदार है, और आप गाड़ी में भी है, और भैया जो प्यार के दीवाने हैं ना, ये गाना सच में उनके लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप रेडियो के वॉल्यूम है वो बढ़ाइए और इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई।

0: चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है, तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार देसानायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डिजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और URL हटाने का भी निर्देश दिया गया है। कीनिया की शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य मानवाधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के भारत के अनुभवों को साझा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जन सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड व्यक्तिगत और स्वाति चौधरी ने W1 व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में तोमन ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
3: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

कक्कर नहीं, मैं आरजे रीना हूँ। हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं भैया तो समय हो चुका है 6:10 और आपका ध्यान किथे है जी? ओहो कोई बात नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। ओहो कोई बात नहीं जी, आरजे रीना है ना आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए, आप सभी तक अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो टेंशन किस बात की लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिंदा होकर आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए।

0: और देखिए भैया, अगर मैं हनुमान अंश मूवी की बात करूं तो 2 करोड़ की लागत से बनी ये मूवी 170 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है भैया। ये मूवी भाई 1 महीना कंप्लीट करने के बाद भी ये जमकर भाई चले ही जा रही है, यानी कि डिमांडे लोगों को कम नहीं हो रही है। बस ये की बात आ रही है कि भैया मूवी अच्छी है तो ये मूवी देखी जाएगी। अब देखिए, इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि एक तो खाटू श्याम जी के ऊपर और साईं बाबा के ऊपर भी मूवी बनने वाली है, तो अब देखते हैं भैया इसके बाद। यानी कि पहले तो ये कहा जा रहा है कि हनुमान अंश का पार्ट 2 आने वाला है और हम भी कल एंजॉय करने वाले मूवी, तो आप भी आ जाइएगा। ठीक है जी, आ जाएंगे ना मेरे साथ देखने के लिए? बताइए कौन कौन आएगा मेरे साथ मूवी देखने के लिए, आपने मैसेज करके बताना, तब मैं पता लगाऊंगी ना कि आप भी आ रहे हैं। फिलहाल मेरे पास कुछ मैसेज हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। हेलो, गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? और गाने बिंदास सुना रही हो, ललिता जी कनेक्ट होती है, चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी, आज स्टूडियो में भेजवा दीजिए आप चाय। अक्षय पा जी का बर्थडे है तो हैप्पी वाला बर्थडे। ओह क्या बात है। और ये कुछ लिखती भी है, नाम ऐसा कि हर जुबा पर छा जाए, अंदाज ऐसा कि हर दिल में भा जाए, वक्त बदलता दौर बदले मगर जलवा वही रहा, अक्षय कुमार का सितारा आज भी सबसे, अंदाज उनका बहुत ही शानदार वाला। और आगे लिखती है, सितारों की भीड़ में एक सितारा खास है जिसके अभिनय में मेहनत और जुनून का एहसास है, हंसा भी सकते हैं रुला भी सकते हैं, हर बार अक्षय कुमार का अपनापन ही है जो हमें शानदार अंदाज दिखाते। क्या बात है जी, बहुत ही अच्छी आपने लाइनें लिखी हैं। और अगले मैसेज की बात करूं तो विक्की सागर जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग सर। और इनका कहना है कि नो डाउट जो ये हनुमान अंश मूवी है, मतलब मूवी अच्छी है, बात माननी पड़ेगी, एकदम बढ़िया है और हर किसी को देखनी चाहिए। फैमिली मेंबर के साथ आप जाइए और एंजॉय करके आइए, क्योंकि भैया ऐसी मूवी है ना, मुझे लगता है कि बच्चों और जो हमारे बुजुर्ग है, खासकर बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए ऐसी मूवी, क्योंकि आजकल के बच्चे कहते हैं नहीं हमारा मन पूजा में लगता ही नहीं है। अब क्या करें, बस नहीं लगता है तो नहीं लगता है, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार ज़रूर दिखाइए ये मूवी। और फिलहाल कुछ कमर्शियल वाले ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद मैं कनेक्ट होंगी, ठीक है?
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

क्या बात है जी, तोबा तोबा, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और आप फिलहाल आर्जेरीना के साथ कनेक्टेड। समय की बात करूं तो 6:22 हो चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर का जो तारीख है ना, सच बताऊं तो अपने आप में बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज बॉलीवुड में यानी कि अक्षय पाल जी का बर्थडे है। साथ ही साथ आज का स्पेशल डे, ओ माई गॉड, बहुत ही शानदार वाला है, स्टूडेंट के लिए खासकर है ये। यानी कि आपने कभी सोचा है कि किसी युद्ध या संघर्ष का सबसे बड़ा असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ सकता है? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दुनिया का, यानी कि अगर मैं बात करूं आज के दिन का, तो आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोडक्ट एजुकेशन

बिफोर अटैक। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों और शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस युद्ध और संघर्ष वाले इलाकों में खतरे का सामना करना। स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है बल्कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य की नींव होती है, लेकिन संघर्ष के समय स्कूल पर हमले, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट और शिक्षकों की सुरक्षा का खतरा, शिक्षक के अधिकार को प्रभावित करना, यानी कि मोस्टली ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया को यह संदेश देता है कि हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा पाने का अधिकार है। तो स्कूल सुरक्षित होंगे, बच्चे सुरक्षित होंगे और तभी उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। ये डे सिर्फ इसीलिए मनाया जाता है कि आपने जगह जगह पर देखा होगा, अभी मैं फिलहाल दिल्ली की ही बात करूँ कॉलेज के, यानी कि आपने देखा होगा कि मतलब वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, फिर भी उस बिल्डिंग के अंदर बच्चों को जो पीजी मिला हुआ था उसी बिल्डिंग के अंदर, और वो बिल्डिंग एकदम गिर गई और बहुत से बच्चों की जान चली गई। सोचिए जो लड़के अपने घर में सिर्फ इकलौते थे उनके माँ बाप का क्या हाल हुआ है। तो ये डे इसलिए मनाया जाता है कि बच्चे हो चाहे टीचर्स हो, हर कोई सुरक्षित रहे। अगर वो सुरक्षित रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, तभी अच्छे एजुकेशन उनको मिल पाएगा और आगे भी, यानी कि देश का नाम तभी आगे बढ़ा पाएंगे वो। फिलहाल और भी ढेर सारी बातें करेंगे, आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। एक मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए, कड़क म्यूजिक हो सकता है या कड़क क्वेश्चन हो सकता है या फिर डायलॉग पूछने वाली हूँ, बस आपने गैस करना होगा कि इस भैया जो मधुर मधुर आवाज़ है ना, किन की हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी गैस कर पाते हैं और हमें मैसेज भेज सकते हैं। चलिए फिलहाल गाना।

0: baby.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़िए। हिंद न्यूज 9 एवं FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़ी विशेष फिल्म। पावर्ड बाय ब्रजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, होटल MB ग्रीन्स क्लार्किन, राज कलेक्शन, ठाकुर राहुल सिंह, श्री साई मीडिया एडवर्टाइजिंग, PR एंड इवेंट्स, प्रभात मेडिकल स्टोर, मोहन ज्वेलर्स, मधुबन ग्रुप, हनुमान अंश स्पेशल, इनिशिएटिव बाय हिंद न्यूज 9 एंड FM मुरादाबाद 89.6। एंट्री बाय इनविटेशन ओनली।

बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया ले, बप्पू जिम्मेदार वाला आपने गाना सुना है श्रोताओं। आरजेडीना के साथ आप कनेक्टेड। समय की बात करूं तो यहाँ 6:35 हो चुका है, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि भैया यानी कि देश के अलग अलग कोने में अवार्ड मिलने वाले हैं, तो अगर मैं बात करूं यूपी की राजधानी लखनऊ, जिसे कहा जाता है नवाबों का शहर, जी अगर मैं इसकी बात करूं नवाबों के शहर लखनऊ की, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि इस बार इंदौर को भी पीछे छोड़ दिया है लखनऊ ने। देश के 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर लखनऊ ने 198 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है, और यही साथ ही साथ जिसे भैया पहले कहा जाता था इंदौर में बहुत ज़्यादा साफ सफाई स्वच्छ हवा मिलती है, वही लखनऊ ने अब की बार पहली बाजी मार ली है, यानी कि स्वच्छ हवा की दिशा में शहर की उपलब्धि में बड़ी कामयाबी माना जाता है। और यानी कि पहला रैंक जिसको मिला है वो है नवाबों के शहर लखनऊ को, अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वहाँ का जो वातावरण है शुद्ध और साफ सफाई को लेकर पहला रंग पहला अवार्ड उनको मिल चुका है। तो भैया बस अगर आप सोच रहे होंगे ना बहुत से भैया एक बार लखनऊ तो जाना चाहिए, अरे बिल्कुल जाइए, एंजॉय करके आइए, घूम कर आइए, वहाँ पर देख कर आइए, आखिरकार यूपी की राजधानी है ना, तो घूम के तो आना ही बनता है ना, तो घूम के ज़रूर आइए नवाबों के शहर में। और साथ ही साथ एक और गाना हम सुनाएंगे आप सभी के साथ, और फिर लेकर आने वाली कड़क डायलॉग होने वाला आज, बस आपने आवाज़ पहचानी है, और प्लस मूवी का नाम भी बताना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक और

0: हाँ जी, हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:44 हो चुके हैं और इसी बीच मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ कड़क म्यूजिक। अब कड़क म्यूजिक ये है भैया कि आपने बस थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा कि जो ये आवाज है किन की आवाज है, प्लस मूवी का नाम भी आपने बताना है। तो चलिए, क्या का आपने सुना दिया जाए, इवोन से सुनिए।
1: दम कर रखा तूने, हाँ विक्रम बेताल का खेल खेल रहा मैं तेरे साथ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, बाहर निकल। क्या
2: है,
1: कहाँ पढ़ते?
2: इकोनॉमिक्स।
1: कहाँ पढ़ते हो?
2: गुवाहाटी।
1: गुटी?
2: गुवाहाटी।
1: तूने गुटी नहीं बोला?
2: नहीं सच।
0: हाँ जी, बस आपने ये आवाज पहचानी है कि किन की आवाज है, प्लस किस मूवी से है ये भी आपने बताना पड़ेगा। अगर आपने मूवी देखी है तो डेफिनेटली आप आसानी से मैसेज कर पाएंगे। और आवाज ओए होए, जानी पहचानी लग रही है ना, एक बार और प्ले करते हैं। चलिए।
1: नाक में दम कर रखा तूने, हाँ विक्रम बेताल का खेल खेल रहा मैं तेरे साथ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, बाहर निकल।
2: क्या है,
1: कहाँ पढ़ते हो?
2: इकोनॉमिक्स।
1: कहाँ पढ़ते हो?
2: गुवाहाटी।
1: गुटी?
2: गुवाहाटी।
1: तूने गुटी नहीं बोला?
2: नहीं सच्ची, गुवाहाटी बोला।
0: अब आपने पहचानना है भैया कि इनकी आवाज प्लस मूवी का आपने नाम बताना है, बस सिंपल सा फंडा है, इतना ही पूछा मैंने आप सभी से। सोचिए और क्या करना जी, फटाफट तुसी मैसेज करो जी, तभी तो आप इवनिंग मस्ती शो के विनर बन पाओगे ना, अदरवाइज तो नहीं बन पाओगे। इसीलिए आपने जल्दी सोचना है और हमें मैसेज करना है। फिलहाल एक और गाना बहुत इशारा गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो जाता है भैया, उसके बाद ही तो हम फिर से कनेक्ट हो पाएंगे आप सभी के साथ।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM। सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

अगर मैं बात करूं देखिए दिल्ली की, तो दिल्ली के मुकाबले श्रीनगर को भैया स्वच्छ हवा, सुंदर प्रकृति के रूप में, यानी कि वहाँ को भी अवार्ड, श्रीनगर को भी अवार्ड मिल चुका है। यानी कि इस रैंक में दिल्ली से पीछे रह गए हैं। कौन रह गए दिल्ली से पीछे, सोचिए जरा।

0: नजरों से
1: थोड़ा सा सोचना है, बताएंगे जरूर हम इसके बारे में आपको, लेकिन उससे पहले जो कड़क म्यूजिक मैंने प्ले किया है ना, वो आपने थोड़ा सा गैस करना है और बताना है कि भैया आवाज किनकी है और मूवी क्या है। तो फाइनली लास्ट मौका आपको मिलने वाला है।
2: विक्रम बेताल का खेल खेल रहा मैं तेरे साथ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, बाहर निकल।
3: क्या है,
2: कहाँ पढ़ते हो?
3: इकोनॉमिक्स।
2: कहाँ पढ़ते हो?
3: गुवाहाटी।
2: गुवाहाटी?
3: गुवाहाटी,
2: तूने गुटी नहीं बोला?
1: गोटी किसने बोला और गुवाहाटी किसने बोला? ये तो बस आपने सोचना है और भैया बताना है कि ये आवाज है, इनकी आवाज है और कौन सी मूवी से है। वंस अगेन एक बार और प्ले करते हैं क्योंकि लास्ट चांस तो मिलना चाहिए।
2: विक्रम बेताल का खेल खेल रहा हूँ मैं तेरे साथ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, बाहर निकल।
1: चलिए जी, इतना ही इनफ है, सोचिए और अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज की ही है। फिलहाल जुबिन नौटियाल की आवाज

0: हाय हाय, बहुत ही शानदार जी जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गाना। और जैसा कि हम बात कर रहे थे अवार्ड की, है ना, तो हमारा यूपी पहले नंबर पर आ गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दिल्ली की हवा को लेकर, एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी कि NCAB के तहत जारी स्वास्थ्य आयु यानी कि एयर सर्वेक्षण 2026 में दिल्ली ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 48 शहरों की श्रेणी में 21वें स्थान पर हासिल किया गया है। वहीं दिल्ली को इस सर्वेक्षण में 172 अंक मिले हैं। वहीं प्राकृतिक रूप से साफ हवा के लिए पहचाने जाने वाले श्रीनगर को 162.6 अंक के स्थान पर यानी कि 26वां स्थान मिला है उनको। साथ ही साथ बेंगलुरु की बात करूं तो 32वें रैंक पर है। और अब सवाल ये आता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर की हवा इतनी खराब क्यों? इसके पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य और उड़ने वाले धुआं, औद्योगिक प्रदूषण और मौसम की स्थितियां में बड़ी वजह है। इस साफ हवा सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बेहतर मानी जाती है। इसीलिए प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हमारी भी है, क्योंकि हम भी इसी वातावरण में रहते हैं, तो हमें भी स्वस्थ रहना है, साफ हवा लेनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाइए, जो अनयूज जो गाड़ियां है जो अब यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उनको मत चलाइए, और ज़्यादा धुएं वाले जो आप है भाई, जितना हो सके कम यूज़ करिए गाड़ी। और पैदल यात्रा करना भी थोड़ा सा बॉडी पर कष्ट तो देना ही पड़ेगा जी।
1: Here's my beauty wish list. Such great deals.

0: और साथ ही साथ आज का कड़क डायलॉग भी मैंने आप सभी से पूछा है, जिसको बस आपने सुनना है और मैसेज करना है, क्योंकि अब बारी है आपकी मैसेज की।
1: नाक में दम कर रखा तूने, विक्रम निकाल रहा, खेल खेल रहा मैं तेरे साथ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, बाहर निकल।
2: क्या है,
1: कहाँ पढ़ते हो?
2: इकोनॉमिक्स।
1: कहाँ पढ़ते हो?
2: गुवाहाटी।
1: गुटी?
2: गुवाहाटी।
1: तूने गुटी नहीं बोला?
2: नहीं सच्ची।
0: चलिए अब ये देखते हैं भैया कि किनका हमारे पास राइट आंसर आता है और कौन सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर पहुंचाते हैं।

दिल चाहता। भैया सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर आता है, ललिता कश्यप जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं। आवाज है अक्षय पाठ जी का और मूवी है भूल भुलैया। सेकंड नंबर की बात करूं तो आप भैया ललिता कश्यप जी विनर बन गई है भाई, बड़ी एक्टिव लेडी है, जल्दी जल्दी सुनती है और एकदम मैसेज कर देती है ये। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं सफी जी।

0: और अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड इवनिंग रीना जी, प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज आप जो पंजाबी गाने प्ले कर रही हो ना वो भी वाकई बहुत शानदार है। माहौल ही बना दिया आपने, सुनने में बहुत मजा आ रहा है और इसी तरह बेहतरीन गानों और खूबसूरत अंदाज के साथ प्रोग्राम को हम भी खास बना रहे हैं आपके साथ। क्या बात है जी, अक्षय कुमार जी हैं, क्या बात है। और लेकिन मूवी का नाम बॉबी ये कौन सा है जी, ये तो जरासल थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, प्यारी प्यारी गुड इवनिंग पहुंचाती है और ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है।
1: नहीं सका सीधा तुझसे,
0: दौलत बाग मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं,
1: सुन ले जरा धीमे से,
0: राइट आंसर है अक्षय पाजी, लेकिन मूवी का नाम नहीं बताया सर, वो भी तो बताना था।
1: बदल जाए।
0: अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद शारी कली जी इनके दोस्त हैं। गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे। आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अभी आपने नवाबों का शहर लखनऊ के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि लखनऊ स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर आया है। यह खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा, यूपी की राजधानी लखनऊ नंबर 1 पर स्वच्छता में उनका नाम आ गया है। और जो मशहूर डायलॉग आपने प्ले किया है, जरा सर आप भी मुद्दे से भटक गए सर, गलत आंसर आ गया है।
1: प्यार करूंगा जो कह ना सका।
0: अगले ओ क्या बात है विक्की सागर जी, आपने मैसेज डिलीट करके फिर से मैसेज कर दिया, ये तो गलत बात है जी। सुनकर आपने राइट आंसर पहुंचाया, यानी कि नाम तो इन्होंने सही गैस कर लिया था अक्षय कुमार जी, लेकिन मूवी के नाम ही थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए थे।
1: कभी नाम
0: कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां चलती रहती है, कोई बात नहीं। फिलहाल अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, हम मिलेंगे आपको कल सेम टाइम एंड सेम जगह मिलने वाले, करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही स्वच्छ रहिए। और साथ ही साथ गर्मी का मौसम है, देखिए दो दिन तक तो भैया अच्छी खासी बारिश हो रही थी कि पंखों में भी हमें ठंड लग रही थी, लेकिन अब गर्मी फिर से बढ़ गई है, दो दिन के धूप में ही बताओ 32 डिग्री सेल्सियस है आज मुरादाबाद का। फिलहाल जरीना लेती यहाँ से जाने की इजाजत, बाय टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही अपनी जिंदगी में आप खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: कह दूं तुम्हें
1: हाँ
4: या चुप रहूं
1: ना,
4: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है,

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज का हमारा शो ये बेहद खास होने वाला है, यानी कि लीगल टॉक्स, जहां हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कानून। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या पैदल सड़क पार करते हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना हेलमेट बाइक चलाने पर सिर्फ चालान होता है या और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर कानून क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो में। आप बताइए कि रेडियो में आकर आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, मैं हर वीकेंड वेट करता हूँ कि कब आपका शो आए और मेरे को आप इनवाइट करो यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपने प्यारे जो लिसनर्स है कम्युनिटी रेडियो के, हमारे लिसनर्स है, उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको अवेयर कर पाऊँ, उनकी परेशानियों को दूर कर पाऊँ।
0: श्रोता तो हमारा इंतजार ही करते रहते हैं,
1: वेट करते हैं उनका कि हमारी उनसे कब मुलाकात होगी। और जो है, मैं भी बड़ा बेताब रहता हूँ कि मैं अपने लिसनर्स के जो उनके डाउट्स हैं या उनकी कोई लीगल अवेयरनेस है या उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो उसको मैं गाइड कर पाऊँ उनको।
0: तो श्रोताओं, हम बातें करते रहेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहने, क्योंकि शो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, जिसमें आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में जानकारियां हम लेना हमारे लिए ही अच्छा है। कभी कभी किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके खिलाफ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं, और जब आपको पूरी जानकारी होगी तो आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?
1: देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भारत का एक वह कानून है जो सड़क पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों, ड्राइवर, वाहन मालिक, लाइसेंस पंजीकरण, बीमा, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से जुड़े जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्वों को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना होता है।
0: क्या हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है?
1: हाँ, बिना वह ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है, और वाहन आपको डीएल तभी मिलता है जब आपको वाहन चलाना आता हो प्रॉपर, ठीक है, और बिना डीएल के अगर आप वाहन चलाते हैं तो गैर कानूनी है। तो लिहाजा जो है, अगर इसके लिए जो प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है और कार्रवाई के तौर पे आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कभी भी अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन के लिए आपको डीएल बनाना अनिवार्य है। आप पहले प्रॉपर परिवहन आरटीओ विभाग जाएं, वहाँ पे प्रॉपर आप अपने डीएल के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करें, डीएल बनवाएं, उसके बाद ही आप सड़क पे वाहन लेके आए। अधिकतर मैंने देखा आज की डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको स्कूटी दे देते हैं ऐसी।
0: हाँ, वही,
1: वो गलत है, वो इलीगल है। अगर आप बच्चा स्कूटी चलाते हुए किसी को हिट कर देता है या तो उसको भी चोट लग सकती है और सामने वालों को भी चोट लग सकती है, तो ये अपराध है।
0: लाइसेंस बनवाने के लिए सर एज लिमिट क्या होती है?
1: 18+ होनी चाहिए।
0: अच्छा, 18+ होना चाहिए,
1: बालिग होना चाहिए।
0: ओके, लेकिन तो आजकल अगर जेंजी की बात करूं तो वो 16-17 की एज में सड़कों पर ऐसे
1: इलीगल है, वो पेरेंट्स दे देते हैं, गलत है वो, तो आप ऐसे जो है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के आप व्हीकल नहीं चला सकते।
0: क्या वाहन चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपका डीएल होना चाहिए जो आपको इश्यू किया गया है, वो गवर्नमेंट आईडी होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रोड पे अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। फिर जो आप वाहन चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आरसी बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए,
0: चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, गाड़ी हो।
1: हाँ, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए,
0: पॉल्यूशन,
1: हाँ, पॉल्यूशन, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन, उसका डॉक्यूमेंट पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है। और आवश्यकता होने पे अगर कोई परमिट की, कोई हैवी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी स्टेट का परमिट है तो परमिट भी आपके पास में होना चाहिए। इन सबकी डिजिटल कॉपी मान्य है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं नहीं है कि आपको ओरिजिनली अपने पास में रखना है, डिजिटल कॉपी भी मान्य हो सकती है यदि कानून के अनुसार स्वीकार है वो चीजें, तो आप उसकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं।
0: तो सर जैसे आपने बोला कि कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो चाहे स्कूटी चला रहे हो बाइक चला रहे हो, मतलब अपने साथ रखना,
1: सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।
0: अच्छा, फोन में भी है,
1: फोन में भी चल सकती है, गवर्नमेंट ने उसको वैलिड कर दिया, पहले नहीं था। तो अब आप अपनी डिजिटल कॉपी भी माने हैं, अगर कोई आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है या चेकिंग हो रही है और वो आपसे कोई वैलिड आईडी मांगते हैं, आपका DL है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है, तो आप उसको मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, वो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर वो चीज ऑथेंटिक है सही है तो वो आपको जाने देंगे। वो
0: मान लीजिए सर कोई मेरा ही गाड़ी है, वो कोई और लेके जा रहा है तो
1: वो गलत है, कायदे में तो आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए अपनी। लेकिन अगर आपने गाड़ी दे भी दी है तो उस गाड़ी के पेपर उसको दे, आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दे, इंश्योरेंस की कॉपी दे, और जिसको आपने गाड़ी दी है उसका DL बना होना चाहिए।
0: अच्छा, उसका भी बना होना चाहिए,
1: उसका भी DL होना चाहिए। अगर आपने DL उसका नहीं बना हुआ, पेपर आपके पूरे हैं, DL आपका है और गाड़ी दूसरा चला रहा है जिसके पास DL
0: नहीं है,
1: तो वो भी गैर कानूनी है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो आजकल हर कोई भूल जाता है। क्या हेलमेट पहनना केवल चालक के लिए जरूरी है?
1: देखिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ आप देखते हैं कि लोग जो है हेलमेट नहीं लगाना
0: नहीं
1: चाहते,
0: लगा चाहते,
1: तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो है इससे आपकी सुरक्षा भी होती है, प्लस आप जो है दोपहिया वाहन चलाते वक्त जो है चालक और पीछे व्यक्ति बैठा हो दोनों जो है हेलमेट पहने रहते तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और ये एक कानून की निगाह से भी एक मैंडेटरी है, तो आगे आज आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। तो कई परिस्थितियों में जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने देखा कि अक्सर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी टक्कर लग गई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर जाती है, तो क्या होता है सर पे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है उसकी वजह से, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो कानून के हिसाब से भी हेलमेट आपको लगाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए आपको।
0: बहुत से देखा होगा सर आपने बोलते कि अरे 2 मिनट का तो काम ही है, यही जाना है, 2 कदम पर ही जाना है।
1: 2 मिनट का काम होता है लेकिन अगर जरा कोई मिसहैपनिंग हो गई 2 मिनट के अंदर ही तो आप क्या करेंगे।
0: करेक्ट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, सीट बेल्ट का क्या महत्व है?
1: सीट बेल्ट की भी यही मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोग पता नहीं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
0: एक तो बोल देते हैं हमने खाना खा लिया, पेट में दर्द हो जाएगा अगर उसको पहन लेंगे तो,
1: सीट बेल्ट
0: दबने लग जाएगा।
1: कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, वो कानूनन अपराध की मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीट बेल्ट दुर्घटना के समय कोई दुर्घटना हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है तो कई ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो है कई कैजुअलिटी डेथ तक हो जाती है। तो सीट बेल्ट अगर आप गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग होती है कुछ होती है तो हो सकता है साधारण चोट ही लगे, ज्यादा आपको चोट ना लगे और आपकी लाइफ बच जाए, तो सीट बेल्ट आपको कानून की दृष्टि से भी लगानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगानी चाहिए।
0: उसके साथ वाला जो बैठा होता है उसके लिए अनिवार्य है,
1: सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है तो लगानी चाहिए आपको।
0: सर कभी कभी जैसे कि मैंने ही देखा है कि वो सोचते हैं कि सामने पुलिस वाले तो है नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा।
1: देखिए, आप ये सोचिए कि भाई ठीक है मेरे को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो आप ये सोचोगे से मुझे चलान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या चलान से बचने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहननी है, तो ये गलत है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए।
0: ओके।
1: जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं ना, सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि मुझे जब जाना है तो पहले मुझे गाड़ी खोलनी है, फिर उसमें प्रॉपर बैठ के मुझे सीट बेल्ट लगानी है, तब मुझे आगे ड्राइव करना
0: है। आजकल तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं ना कि सीधा पकड़े जाओ।
1: हाँ, तो जो ई चलान होते हैं वो आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ई चलान से भी अगर आपने गाड़ी में देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपकी पिक्चर उसमें कैप्चर हो जाएगी, आपका चलान कट जाएगा उसमें,
0: यानी कि पॉकेट मनी कब उड़ जाएंगे।
1: टू व्हीलर पे भी ऐसी हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, चलान कट जाएगा आपका उसमें।
0: ओके।
1: तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चलान बचाने के लिए चीजें करनी है, आप ये सोचिए कि मुझे सुरक्षा की दृष्टि से भी करनी है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकता है?
1: देखिए, शराब पीकर तो वाहन चलाना ही नहीं चाहिए, ये गंभीर अपराध है, इसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने, अधिकतर सुना होगा कि भाई वो कोई कैजुअलिटी हो गई तो पता चला कि ड्रिंक कर रखी थी, उसने शराब पी रखी थी, इसके कारण भारी, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, ठीक है, आपका व्हीकल भी सीज कर सकते हैं पुलिस वाले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, कारावास भी भेज सकते हैं वो, और प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
0: यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है, अगर कोई पास में कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको, तो आप उसकी उससे आप मदद मांग सकते हैं। एम्बुलेंस और पुलिस को आप सूचना भी दे सकते हैं, 112 नंबर पे आप कॉल करके पुलिस को भी बुला के सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, कोई जैसे कोई ऑटो वाला जा रहा है उससे थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए, कोशिश करिए कि अगर वो बच सकता है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं।
0: पर सर आजकल ये हो गया ना कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता, उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है, अधिकतर भी हमने देखा, तो पहले तो था कि पुलिस थोड़ा सा पूछताछ करती थी कि भाई कब हुआ क्या हुआ, लेकिन अब जो है हमारे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस आई हैं, अगर कोई घायल है या कोई दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये तत्काल उसको मदद देनी है, पुलिस भी इसमें सहयोग करती है, और आपसे कुछ नहीं उसमें पूछा जाता है, आपसे कुछ कोई भी उसमें पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप सोचिए, आपने एक व्यक्ति के प्राण बचाए हैं, तो अब जो है बहुत लोगों में चेंजेस आए हैं, लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे की, तो आप ये सोचिए कि अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है, तत्काल उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो शायद वो उसके घर वाले आपको दुआएं देंगे अगर उसकी जान बच जाएगी, और आप किसी व्यक्ति के प्राण बचा पाएंगे। क्योंकि अगर एक्सीडेंट के केसेस में अगर आप वक्त पे किसी को फर्स्ट एड दिला देते हैं, ट्रीटमेंट दिला देते हैं, तो उसकी लाइफ बच सकती है।
0: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
1: देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं, यदि आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन या उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी जो होती है इंश्योरेंस, उस नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो आपको नहीं देना पड़ता, जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
0: यदि वाहन का बीमा नहीं हो तो क्या होगा?
1: देखिए, बिना वाहन के वैध

0: बी में कि आप आपका सीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये कानून का उल्लंघन है, इसके लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई है और फाइन है पेनल्टी वो भी पड़ सकती है। तो लिहाजा जो है आप वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए आपको, और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल भी जरूर कराएं।
1: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड।
2: रिकॉर्ड की भी जाँच करें 6002430।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद
2: को कहा है। वहीं दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने भी राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसका उद्देश्य असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकना है। संवाददाताओं से बातचीत में एमसीडी साउथ जोन के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि इसके लिए पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिल्डिंग का निरीक्षण करें और उनकी स्थिति का आकलन करें।
4: मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दे दिया है, सभी बिल्डिंगों की सभी मालिकों से भी निवेदन किया है कि आप भी सब बताएं और सारे अधिकारी जाके इसको देखें कि कौन सी बिल्डिंग कितनी पुरानी है और कितनी पुरानी नहीं है, और जो अगर मरम्मत से ठीक हो सकती है तो उसे मरम्मत करवाएंगे, मरम्मत से ठीक नहीं होगी तो उसे डिमोलिशन करवाएंगे।
2: राजधानी में आज ब्रिक्स देशों के व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों के विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज शामिल हुई। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, इनोवेटर्स और उद्यमियों को एक साथ लाया गया। इसके अलावा सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक मजबूती को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच शुक्रवार से आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास जारी है। एक रिपोर्ट।
5: दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 7 बजे से शुरू हो गई है और रात 10 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया गया है और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा, सरदार पटेल मार्ग और मथुरा रोड सहित कई प्रमुख मार्ग परिवर्तित रहेंगे। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवा का उपयोग करने और वाहन चालकों से निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करने तथा मौके पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यात्री यातायात पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर मार्गों की जानकारी भी देख सकते हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: वहीं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी द्वारा राजधानी में आयोजित होने वाले आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर अपने हरित क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, सुधार और रखरखाव के लिए एक व्यापक योजना लागू करते हुए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में एनडीएमसी द्वारा हरित सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत क्षेत्र में व्यापक बागवानी और लैंडस्केपिंग कार्य किए जा रहे हैं। एनडीएमसी द्वारा 15 प्रमुख स्थानों पर पुष्प बोर्ड स्थापित किए जाएंगे जबकि 9 प्रमुख स्थानों पर पुष्प फव्वारे लगाए जाएंगे। साथ ही एनडीएमसी की नर्सरी में तैयार किए गए 15,000 से अधिक गमलेदार पौधों को प्रमुख सड़कों, चौराहों, गोल चक्करों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। एनडीएमसी ने चाणक्यपुरी स्थित ब्रिक्स फ्रेंडशिप रोज गार्डन में बागवानी और सौंदर्यीकरण कार्य को भी तेज कर दिया है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप कुमार के साथ आज ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर राजधानी के प्रमुख स्थानों का विस्तृत संयुक्त निरीक्षण किया। इसकी शुरुआत ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन स्थल और भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्रों से की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
2: भारत भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
7: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
2: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
7: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
2: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज छात्रों के लिए वैकल्पिक आवास के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एन सरवाना कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल ने डीडीए को निर्देश दिया कि वे पीजी के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान करने का काम तेजी से करें, साथ ही एक ठोस योजना बनाने और हॉस्टल सुविधाएं विकसित करने के लिए नए मास्टर प्लान के प्रावधानों पर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ बातचीत करें। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में छात्रों को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास मिले। उपराज्यपाल आज एक निजी मीडिया समूह के वरिष्ठ नागरिक क्लब द्वारा आयोजित मेगा हेल्थ और सेवा कैंप में शामिल हुए। ये कार्यक्रम देश के प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदी समाचार समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण के 45वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि एक प्रगतिशील समाज अपने युवाओं की ऊर्जा को बुजुर्गों के अनुभव और समझदारी के साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का सीनियर सिटीजन ऐप और नियमित संपर्क जैसी पहल उनकी सुरक्षा और भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज होलंबी कला वार्ड नंबर 3 का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण कार्यक्रम दिल्ली को कूड़े से आजादी मुहिम के अंतर्गत चलाया गया। इस दौरान श्री यादव ने मेट्रो विहार होलंबी कला में अतिक्रमण हटाने और नालियों की सफाई कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। श्री यादव ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण किया और उपस्थित नागरिकों तथा कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रोफेसरों, छात्र प्रतिनिधि मंडल और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
8: बैठक के दौरान छात्रों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ वायु को बढ़ावा देना शीर्षक से अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें क्षेत्र की पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए विचारपूर्ण सुझाव और व्यवहारिक समाधान साझा किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि उन्होंने वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन, बायोमास जलाने, नदी पुनर्जीवन, बेहतर तकनीक और नवाचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिरसा ने कहा कि युवाओं को इस मिशन में सच्चे साझेदारी के रूप में आगे बढ़ते देखना अद्भुत रहा। पर्यावरण मंत्री ने छात्रों को ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करते रहने, नए क्षितिजों की खोज करने और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
2: दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आयोजित स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार विद्यार्थियों के लिए पीजी सुविधाओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में मजबूत नियामक व्यवस्था पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नए दाखिला वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉ महेश वर्मा ने राजधानी में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच को और व्यापक बनाना है। स्टूडेंट्स इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन नए दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक शोध, नवाचार, छात्र कल्याण और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित कराने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ये अत्यंत उत्साहजनक है कि आज की युवा पीढ़ी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नजदीक से जानने और समझने में विशेष रुचि ले रही है। उन्होंने कहा कि जेंजी भारत की जागरूक, जिज्ञासु और ऊर्जावान पीढ़ी है तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कैडर सीपीडब्ल्यूडी से अलग कर स्वतंत्र दिल्ली पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग कैडर के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव 30 वर्षों से लंबित रहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय राजधानी को तेजी से विकसित, सुरक्षित और विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के एस्केप ड्रेन 1, बिहारीपुर ड्रेन, बंड ड्रेन और गोकलपुर ड्रेन सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव से निपटने के लिए ड्रेन की सफाई तथा पंपिंग व्यवस्था मजबूत करने और इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज की। राजधानी में ब्रिक्स देशों की व्यापार जगत की महिला प्रतिनिधियों का विकास शिखर सम्मेलन आयोजित। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रतिनिधिमंडल और पर्यावरण विभाग के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे दो कदम के लिए निकले, चाहे आपको लॉन्ग सफर पर जाना है, आपने हेलमेट और सीट बेल्ट तो जरूर लगानी है, क्योंकि ये नियम है और इसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, किसी और की नहीं है श्रोताओं। तो चलिए अब सर से बात करते हैं, जो ये सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। आजकल की जो जेन जी है या फिर किसी और को भी सोच लीजिए, उनको रहती भैया हमें ना लेट हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना है। ओवर स्पीड क्यों गंभीर मानी जाती है?
1: देखिए ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर हम भी अगर रोड पे जाते हैं तो मैंने बहुत से लड़के ऐसे देखा, एक तो वो ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा
0: वे में चलाते हैं।
1: और फिर आप सिटी के अंदर देखिए, वो इतनी हाई स्पीड में, ओवर स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि सामने अगर कोई आ जाए तो उसको भी चोट लगेगी और इनको भी चोट लगेगी,
0: बिल्कुल
1: और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो अधिक गति से वाहन चलाने पर अगर आप चलाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज, अगर एकदम आपको ब्रेक मारने तो, और आप ब्रेक मारोगे भी तो गाड़ी स्किप हो जाएगी, आपकी फिसल सकती है। तो ये भी एक कानून, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानूनन अपराध है, उल्लंघन कानून का, तो इस पे भी फाइन हो सकता है और आपकी गाड़ी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ओवर स्पीड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो आप ये सोचिए मुझे आराम से चलाना है, ड्राइविंग है ना, जिगजैग गाड़ी नहीं चलानी है, और जो है आप अपनी भी केयर करिए, सामने वाले की भी केयर करिए।
0: सर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाइक भी चला रहे होते ना, तो एक बार हैंड फ्री होकर चलाते हैं।
1: हाँ तो वो सब चीजें गलत है। वो एक स्टैंड जो आजकल देखते हैं, जो बच्चे स्टैंड वगैरह दिखाते हैं, तो ये गलत है। और इस पे हमारी, मैं तो एक अपील करूंगा हमारी मुरादाबाद पुलिस से भी कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, अगर कहीं भी देखते हैं जो करते भी हैं वो लोग
0: स्टैंड मारते
1: हैं। हाँ ये गलत है। इससे कई सड़क पे बुजुर्ग बच्चे जाते हैं, उनको भी कई बार चोटिल होते हुए देखा गया है। तो निश्चित तौर पर ये गलत है और ये कानून का उल्लंघन है।
0: सो अगला भी क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है?
1: देखिए मोबाइल फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे कोई संदेश पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं और एक तरफ आप व्हीकल भी चला रहे हैं, तो सामने से कोई आ रहा है, तो आप कैसे उससे आप अपने आप को बचा पाओगे, कैसे डिफेंस

0: कर पाओगे। तो मोबाइल पे चलाने देखते हुए करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, उससे एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पे भी जुर्माना है।
1: अच्छा, बहुत से सर ये कहते हैं कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से चला ले, मैं फोन भी दोनों कर लेता हूँ।
0: इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, अगर आप मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपकी गाड़ी का जो परमिट कैंसिल भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है। तो उस समय जो भी नियम अनुसार जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है उसमें।
1: यदि ट्रैफिक पुलिस चालान काटे तो नागरिक क्या करे?
0: देखिए, ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो आप पहले तो आपको शांत रहना है, कोई आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई सोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रॉपर एक जेन्युइन से आप रीजन पूछिए कि आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं, क्या रीजन है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाइए। अगर आप अपनी जगह ठीक है, आप प्रॉपर गाड़ी सही से चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो जो कागज मांग रहे हैं आप उनको कागज अवेलेबल कराइए। और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी आपके ऊपर फाइन लगता है उसको आपको पे करना चाहिए।
1: ओके, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार क्या है?
0: देखिए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसे MACT बोलते हैं, MACT, ये एक न्यायिक मंच है जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या जो भी मृतक होते हैं, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके परिजन जो होते हैं उनको मुआवजा मिल सकता है। उसमें आप क्लेम डालिए तो आपको क्लेम मिलता है उसमें।
1: सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, दुर्घटना में मुआवजा किन लोगों को मिल सकता है?
0: देखिए, घायल व्यक्ति यदि कोई या कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गया या व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी आश्रित जो भी होते हैं उसके, जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार दावा कर सकते हैं, तो वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा।
1: सर, अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है कि आज CCTV फुटेज और डैश कैम रिकॉर्ड साक्ष्य बन सके?
0: हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आज की गाड़ियों में जो है, जो हमने देखा डैश कैम तो सारी गाड़ियों में मोस्टली आ रहा है, इतनी एडवांस हो गई है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डैश कैम से कई ऐसी चीजें हमें सामने वाले की गलती पकड़ में आ जाती है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर लगती है तो दोनों बोल देंगे कि भी मेरी गलती नहीं थी, उसमें हम गलती कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपकी गाड़ी पे डैश कैम लगा होता है तो डैश कैम क्या करता है, वो एक्चुअल जो आपकी जो जब आप ड्राइव कर रहे हो वो एक्चुअल सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करता रहता है।
1: सर, डैश कैम है क्या?
0: डैश कैम एक तरीके का कैमरा होता है, CCTV कैमरा होता है, वो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर,
1: मतलब वो जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है।
0: हाँ पता क्या, वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है वो।
1: अच्छा,
0: वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है, आजकल गाड़ियाँ ऐसी आ रही है उसमें डैश कैम लगा होता है, आप कहीं जा रहे हैं तो सामने से भी जो गाड़ी आ रही है उसको भी कैप्चर करता है, पीछे आपकी गाड़ी के वो भी कैप्चर होता है। तो अगर कोई भी मूवमेंट होता है ऐसा तो डैश कैम के थ्रू वो एज एन एविडेंस बन सकता है कि भाई किसने टक्कर मारी थी, किसकी गलती है, वो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। अगर कोर्ट में केस जाता है तो उसको हम वहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं,
1: मतलब ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है जैसे
0: रिकॉर्डिंग, जैसे आपके CCTV कैमरे लगे होते हैं तो वैसी एक तरीके का गाड़ी में CCTV कैमरा लगा होता है, तो उसमें मेमोरी होती है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करती रहती है, तो एज एन एविडेंस का काम करती है वो।
1: सड़क पर वाहन चलाते समय सबसे बड़ी कानूनी जिम्मेदारी क्या है?
0: देखिए, कानूनी जिम्मेदारी आपकी यही है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो एक वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, इंश्योरेंस पॉल्यूशन, और आप अपनी साइड पे ही चलें, कभी भी रॉन्ग साइड ना चलें और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, बस यही दो तीन चीजें हैं।
1: सर, जो आजकल की जेन जी आम नागरिक है और जो गर्ल्स है, विमेन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि सड़क पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको आराम से व्हीकल चलाना है, जिम्मेदारी दिखाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, नशे में वाहन ना चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित सफर ही सबसे बड़ी मंजिल है। और अगर उसके बाद भी आप मेरी बात नहीं मानते तो मुरादाबाद पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है।
1: वो तो है सर।
0: तो फिर उसके बाद फिर आप जो है, आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी लॉज है, उसको आप फॉलो करें।
1: तो चलिए श्रोता, ये शो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की बात से हमें यही समझ आई कि सड़क पर सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ कानून का डर नहीं बल्कि अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करना है। घर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाए। छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की खुशियाँ हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं। और सुनते रहे FM मुरादाबाद 9.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।

0: विजिट करो।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: गुड इवनिंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, एक ऐसी चीज जो बहुत अहम लाइफ में, अगर वो ना हो तो लाइफ अधूरी लगती है। जी हाँ, पैसा आते ही कहाँ चला जा रहा है। और देखिए, अब पैसों की बात हुई है, शाम का समय भी है, मुझे पता है आप ऑफिस से घर जा रहे हैं और आज की बात ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, तो मैंने कहा क्यों ना आज इसी पर चर्चा की जाए। दोस्तों, जिसके बिना ना जिंदगी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो है पैसा। अब कमाई हर किसी की अलग अलग होती है, जरूरतें अलग अलग हैं और खर्च भी अलग अलग हैं, लेकिन एक बात शायद सबके साथ एक कॉमन है, पैसा हाथ में आते ही कुछ ना कुछ खर्च होने लगता है। कभी घर का सामान, कभी बाहर का खाना, कभी शॉपिंग, और कभी कोई अचानक आई जरूरत। और फिर महीने की आखिर में हम सोचते हैं कि आखिर पैसे गए कहाँ। तो आज की शाम इसी इंटरेस्टिंग बात के साथ हम आपके साथ कनेक्ट हैं, और मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी है। हाय रीना, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे आने बता दो मुझे।
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, अभी तो तुम गई थी स्टूडियो से, फिर आ गई हो, क्या बात
2: अरे
3: है?
2: क्या करूँ मैं, मेरा मन नहीं लगता ना हमारे श्रोताओं के बिना।
3: अच्छा अच्छा, देखो मैं तो यही हूँ, लेकिन ये दोबारा आ गई है, तो हम चलिए बहुत अच्छी बातें भी करेंगे, यानी कि पैसा आते ही कहाँ चला जाता है। महीने की सैलरी आने का इंतजार शायद हर नौकरी करने वाला करता है। सैलरी आते ही मन में कई सारे प्लान्स बनने लगते हैं, ये खरीदना है, वहां जाना है, घर के लिए ये सामान लेना है, और थोड़ा पैसा बचाना भी है। लेकिन जैसे जैसे महीने का दिन गुजरते हैं, सैलरी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर महीने के आखिरी दिनों में हम अपने खर्चे का हिसाब लगाने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? सैलरी आते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? घर का खर्चा निकालते हैं, शॉपिंग करते हैं, या धीरे कुछ पैसा सेविंग में डाल देते हैं? आज इस खास मुद्दे पर हम बात करेंगे, मैं और जी, तो बस बने रहिए आरजे रीना के साथ।
2: अच्छा रीना, मैं देखो, आप हमारी श्रोताओं को बता रहे हो कि सबसे पहले पैसे आते हैं, तो आप क्या करते हो? शॉपिंग करते हो, घर का सामान लाते हो? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप क्या करती हो जब आपको सैलरी मिलती है? सबसे पहले बताओ बताओ, इतना मत मुस्कुराओ।
3: रूम रेंट।
2: हाय, ये तो मेरे साथ भी है यार, कॉमन है।
3: अक्सर जो घर से बाहर रहते हैं ना, उसके जहन में एक ही बात आती है, सबसे पहले रूम रेंट देना है,
2: लाइट
3: बिजली बिल देना है,
2: और बाकी शॉपिंग एंड घर के खर्चे, वो तो दूर है, लेकिन ये दो चीज बहुत अहम होती है।
3: शॉपिंग तो मैं इतनी नहीं करती हूँ, लेकिन जो घर के सामान खत्म हो ही होते हैं, वो लेकर जरूर आते हैं।
2: हाँ, और पता है, अब आपको जरूरत और शौक, ये भी लाइफ में बहुत
3: इम्पोर्टेंट है।
2: हाँ, मोस्ट है। अब एक जरूरी सवाल, हम जो सामान खरीदते हैं उनमें से कितनी चीजें वास्तव में हमारी जरूरत होती है और कितनी सिर्फ हमारी शौक। मान लीजिए आपका फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन बाजार में नया मॉडल आया, अब मन करता है कि पुराना फोन छोड़कर नया ले लेते हैं। इस तरह कपड़े, जूते या फिर घर का सामान भी हम कई बार जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, आखिर अपनी कमाई से अपनी पसंद पूरी करना भी जरूरी है, लेकिन अगर हर चाहत को जरूरत बना लिया जाए तो सेविंग मुश्किल हो जाती है। आपकी ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं? हाँ, बताइएगा जरूर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। और अभी सुनते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर करते हैं आपसे ढेर सारी बातें।

0: रीना, तुम्हें पता है आजकल ना शॉपिंग के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोबाइल उठाओ, एप्लीकेशन खोलो और कुछ ही में शॉपिंग शुरू। सबसे मजेदार बात तो तब होती है जब सामने लिखा आता है सेल डिस्काउंट लिमिटेड ऑफर। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन कई बार हम वो सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। डिलीवरी आने के बाद सामान देखकर खुशी तो होती है, लेकिन महीने का बजट देखकर थोड़ा अफसोस भी होता है। बताइए, ऑनलाइन शॉपिंग ने आपकी सेविंग बढ़ाई है या फिर खर्च किया है? हाँ हाँ, बताओ बताओ। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग बात अगर आई है ना, तो रीना का मुझे बहुत बार कॉल आता है। स्टूडियो में होती हूँ और ये कभी कभी बिजी होती है, तो मुझे बोलती है कि खुशी मेरा ना पार्सल आया है, प्लीज आप ले लेना बाहर से। भैया, लड़की इतने ऑनलाइन शॉपिंग करती है ना कि मैं इसके ऑर्डर ले लेके थक जाती हूँ। कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं ही रख लेती हूँ, पर अफसोस वो मेरी काम का नहीं है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट यूज करती है ना वो मैं नहीं करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वो ये यूज नहीं करती है।
1: ये होता है हर किसी का, बहुत ही रेयर होता है कि एक साथ अगर मैच हो जाए, अदरवाइज हर किसी का प्रोडक्ट अलग होता है। और बात की जाए चाय और छोटे छोटे खर्चे, देखो पैसे ज्यादा ना, मुझे नहीं लगता है कि हम बड़े सामान खरीदते उसमें खर्चे होते हैं, छोटी चीजों में ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं,
0: पता ही नहीं चलता यार।
1: हाँ, उसमें नहीं पता चलता है। एक तो आप हिसाब भी नहीं लगा पाते हो 10 रुपए के 20 रुपए के, यार उसमें हिसाब लगाएगा तो कोई लगाएगा कैसे? मान लो दुकान से हमने 2000 का सामान लिया, तो वो तो हमें याद
0: पता
1: रहता है,
0: पता रहता है
1: कि हमने 2000 का सामान लिया है। लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे इतना कौन याद रखेगा, लेकिन ये छोटे मोटे खर्चे ना बड़े खर्चे से ज्यादा खर्चे होते हैं। तो हम बात करेंगे, अक्सर बड़े खर्चे का हिसाब रखते हैं लेकिन छोटे छोटे खर्चों का नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह की चाय, शाम का स्नैक, बाहर का खाना, छोटी शॉपिंग या रास्ते में कुछ खरीद लेना, हर बार

0: है घर घर की।
1: घर चलाना अपने आप में ना किसी मतलब मैनेजमेंट से कम नहीं है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और उसके साथ शुरू होता है पूरा हिसाब, राशन, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई, ट्रैवल, घर का सामान और बाकी जरूरतें। कई बार बजट बनाकर चलने के बावजूद अचानक कोई ऐसा खर्च आ जाता है जिसकी प्लानिंग नहीं होती है, ऐसे में सेविंग पीछे रह जाती है। इसीलिए घर का बजट बनाना सिर्फ खर्च कम करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि पैसा कहाँ और कितना जा रहा है। आपके घर में बजट कौन बनाता है और आप सबसे ज्यादा खर्च किस चीज पर करते हैं?
0: छोटे छोटे सामान लाने में मुझे याद है।
1: सब्जियां शॉपिंग करने में मैं बहुत पैसा खर्च करती हूँ। जब मैं सब्जी खरीदने जाती हूँ ना, तो मैं बता नहीं सकती एवरीवन आपको।
0: मतलब मैं बताती हूँ इसकी रियलिटी क्या है
1: अगर मैं 200 300 भी लेकर जाऊंगी ना, तो उसमें से सिर्फ
0: कि इसकी आदत क्या है। ये एक बार सामान नहीं लेती है, कभी भी नहीं लेती है, छोटे छोटे सामान लेती रहती है। एक बार नहीं, नहीं कि एक बार हम बजट पूरा कर लेते हैं। नहीं, मैं तो आज अगर खाऊंगी तो आज ही लेके आऊंगी।
1: हाँ मैं ये करती हूँ यार, पर ये चीजें मुझे अभी अपनी ठीक करनी है।
0: हाँ, ये ठीक करनी भी चाहिए, क्योंकि देखो एक बार अगर हम सामान खरीद लेते हैं ना, तो हमारा मान लो महीने भर चल जाता है,
1: महीने भर चल जाता है,
0: लेकिन
1: उस
0: हम नहीं खरीदते तो महीने से डबल पैसे खर्च हो जाते
1: खर्च हो
0: हैं।
1: जाते हैं और फिर ही ना उसे ना हमारा बजट भी नहीं बन पाता है। हमारी चीजें हमें नहीं पता कितना खर्च हो रहा है। अगर हम आपने जैसे कहा कि एक बार अगर हम इकट्ठा सामान लेकर आ जाते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि अच्छा इतना महीने का हमारा राशन चल रहा है।
0: बिल्कुल, और तुम्हें पता भी चलता है कि इस महीने हमने 5,000 खर्च करे हैं, तो अगले महीने भी हमें 5,000, मतलब हर महीने 5,000 खर्च होंगे हमारे सामान लाने
1: हाँ
0: में।
1: हाँ बिल्कुल
0: एक वो हिसाब बन जाता है,
1: बन जाता
0: लेकिन
1: है।
0: जब आप छोटे छोटे सामान लाते हो तो आप मैनेज नहीं कर पाते हो।
1: हाँ तो अब एवरीवन रीना कुल मिलाकर ये कहना चाहती है आपसे कि अगर आप भी छोटा छोटा सामान लेकर आते हैं ना, तो आप ऐसा ना करें, एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको लगता है कि ये मेरी डेली बेस की काम आने वाली चीजें हैं, तो उसको आप इकट्ठा लेकर आ जाएं, राइट?
0: हाँ, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है भैया, जो लड़के हैं, जो हमारे फादर साहब है, वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना।
1: हाँ
0: वो
1: और
0: बार बार सामान नहीं लाते, गुस्सा करने लग जाते, बोलो अरे पापा ये भूल गई थी, तो पहले याद नहीं रखा जाना था तुम्हें क्या लाना है क्या नहीं लाना है। अब मैं नहीं लेके आऊंगा, जाओ तुम लेके आओ।
1: बताना चाहूंगी, जैसे आजकल बॉय की बात अगर आपने की है, तो बाहर हॉस्टल में स्टडी की वजह से रहते हैं, है ना, एंड कुछ जॉब की वजह से रहते हैं, तो
0: और बहुतों के पास जिम्मेदारियां रहती हैं।
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो सारी चीजें होती हैं। और
0: एक बात तो है, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी हिसाब में कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने पास डायरी रखते हैं। वो चाहे 10 रुपए का भी सामान लेकर आते हैं ना, तो अपने डायरी में नोट
1: नोट
0: करते
1: करते हैं
0: हैं।
1: और ये सबसे अच्छी बात है।
0: हाँ, तो उनको पता चलता है कि अच्छा इस बार महीने का खर्चा इतना हुआ है, अगली बार शायद इससे ज्यादा हो सकता है।
1: हाँ
0: देखिए, हम ये नहीं कहते कि छोटी छोटी जरूरतें पूरा ना करें, लेकिन उनको आप
1: अपने
0: इन
1: बजट के अनुसार करें।
0: हाँ बिल्कुल ज्यादा खर्चे ना करें।
1: अभी क्या कई बार ऐसा भी होता है रीना, कि जैसे हम शॉप मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, हम खरीदने के लिए गए, तो हमें कुछ चीज पसंद आ गई, जबकि वो हमें पता है कि हमारे काम
0: काम
1: इतना
0: की
1: नहीं
0: नहीं
1: आने
0: है।
1: वाली है,
0: हाँ,
1: फिर भी हम खरीद लेते हैं कि चलो कम पैसों में मिल रही है, ले लेते हैं,
0: अब वो पछतावा होता है फिर
1: और
0: बाद
1: फिर बाद
0: में।
1: में पछताते हैं कि यार हमने क्यों खरीद लिया।
0: ये रियलिटी है। तो चलिए, फिलहाल हम बात करेंगे हम पहली कमाई। आज हर किसी को अपनी पहली कमाई याद आने वाली है। तो हम
1: बिल्कुल,
0: बात करेंगे पहली कमाई के बारे में।
1: जब आपकी आपको फर्स्ट सैलरी मिली थी, तो आपने उस फर्स्ट सैलरी में से क्या किया था,
0: हाँ,
1: याद है आपको? हम याद दिलाने के लिए आए हैं।
0: पहली कमाई की खुशी शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत फाइनेंशियल मेमोरीज में से एक होती है। रकम छोटा हो या बड़ी, जब पहली बार अपने मेहनत के पैसे हाथ में आते हैं तो गर्व महसूस होता है।
1: हाँ
0: किसी ने पहली सैलरी से माता पिता के लिए कुछ खरीदा, किसी ने दोस्तों को पार्टी दी, और किसी ने पैसे संभाल कर रखे। आपकी पहली कमाई से जुड़ी कोई भी यादें जरूरी होगी। आज शाम पुराने दिनों को याद करते हुए हमें बताइए आपकी पहली कमाई कितनी थी, और आपने उस पैसे का सबसे इस्तेमाल किस चीज के लिए किया।
1: तो यही हम आपसे शुरुआत कर लेते हैं, अपने श्रोताओं से पूछ रहे हैं, तुम भी बताओ भाई, तुमने अपनी
0: तुम
1: फर्स्ट
0: बताओ,
1: सैलरी में
0: पहले
1: से
0: तुम
1: क्या किया
0: बताओ।
1: था? मैं अगर मेरी फर्स्ट सैलरी की बात करूँ, तो पहले मैं ऑनलाइन वर्क किया करती थी, तो वहां पर मेरे को फर्स्ट सैलरी मिली, और वो फर्स्ट सैलरी थी मेरी 58,000, 58,000 मेरी सैलरी थी, और जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे बिलीव नहीं होता है अभी भी कि मेरी सैलरी इतनी थी। और तो जब मेरे को फर्स्ट सैलरी मेरी अकाउंट में आई तो सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया, और उसके बाद आई थिंक 2-3 दिन के बाद मैंने कहा कि मम्मा मेरे को फर्स्ट सैलरी मिली है और

0: मैं आपके लिए कुछ यूनिक से लेकर आती हूँ। तो उस पैसों से मैंने मम्मा के लिए एक सिल्वर चेन बनवाई, उसमें राधे कृष्ण जी, हाँ बहुत सुंदर सी वो चित्र था उसके अंदर, मतलब उन्होंने डिजाइन करके बनाया हुआ था, तो मुझे वो पसंद आया और मैंने मम्मी को वो गिफ्ट किया।
1: और मैं अपनी मम्मी को बालाजी सालासर घुमाने के लिए लेकर गई थी।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: हाँ,
0: सुपर।
1: तो मतलब उस टाइम मेरे पापा बिजी थे, तो मतलब कुछ काम था, तो मैंने बोला कि चलो मैं लेके चलती, तो मैं लेके गई थी अपनी मम्मी को सालासर बालाजी घुमाने।
0: वो मेमोरेबल टाइम देखो अभी भी हमें याद आ रहा है तो कितना हैप्पी हो रहे हैं। और सोचो रीना जो हमारी ऑडियंस है उनको भी अपनी फर्स्ट सैलरी याद आ गई है कि हमने अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या किया था, तो वो भी बड़ा खुश हो रहे हैं कि देखिए आपकी बातों से हमारी भी यादें पुरानी ताजा हो गई है।
1: हाँ,
0: दोस्तों यही तो होता है रेडियो का प्यार जो दिल से दिल पहुंच ही जाता है।
1: और उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कंजूसी नहीं करनी है, मैसेज करके बताना है आपने पहले सैलरी आपने कहाँ खर्च किया था। हमारा नंबर है 9837896896 पर मैसेज करके बताना है, दिल पर हाथ रख के मैसेज
0: ओ, फिर
1: करिएगा।
0: वो गाना मुझे याद आ रहा है,
1: क्या
0: हाथ रख दे तू
1: दिल
0: दिल
1: पे
0: पे
1: जरा,
0: जरा। चलो दिल पे हाथ रखते हैं।
1: चलो ये गाना
0: अरे
1: प्ले
0: यार
1: कर
0: तुम्हारा दिल
1: देते
0: तो
1: हैं।
0: बड़े तेज से जोरों से धड़क रहा है भैया, हटा लेते हैं हाथ
1: नहीं, ये वो पता क्या बोला, लगे 440 वोल्ट
0: छूने
1: छूने
0: से
1: से
0: तेरे।
1: तेरे।
0: अरे वाह,
1: तो गाइज आप बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा गाना सुनना है।
0: हाँ
1: बाकी हम यहाँ पर म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: ये शानदार से गाना हमने अभी आपको सुनवाया और हमने भी इंजॉय किया, आपने भी इंजॉय किया। देखिए शाम को शानदार बनाना खुशी और रीना का काम है, वो हम ही रहे हैं अपनी पूरी अपना पूरा 100% शिद्दत से दे रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात तो उसको मिलाने में लग जाती है। और अब हम बात करने वाले हैं रीना इमरजेंसी सेविंग की। दोस्तों बचत सिर्फ भविष्य के सपनों के लिए नहीं होती है बल्कि अचानक आने वाली जरूरतों के लिए भी बहुत काम आती है जिंदगी में ना। कई बार दोस्तों ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो हमने सोची भी नहीं होती हैं। पता नहीं चलता घर में अचानक कोई जरूरी सामान लेना पड़ जाए, यात्रा करनी पड़ जाए या कोई ऐसा खर्च आ जाए जिसकी हमने प्लानिंग नहीं की होती है। और अगर थोड़ी सेविंग अलग रखी हो तो ऐसे समय में परेशानी कम हो सकती है, इसीलिए सेविंग का एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए रखना समझदारी हो सकता है। आपके हिसाब से हर महीने थोड़ी इमरजेंसी सेविंग रखना कितना जरूरी है? क्यों रीना, अभी देखो भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हमारी हेल्थ इश्यू हो जाए, अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम राइट टाइम पे अपना इलाज ट्रीटमेंट करवा पाएंगे।
1: बिल्कुल ये तो सही है। देखिए हम अगर हम 10 रुपए भी कमा रहे हैं तो 5 रुपए सेविंग करिए, 5 रुपए खर्च करिए।
0: हाँ,
1: कहने का मतलब है 10,000 भी अगर आप कमाते हैं तो 5,000 खर्च करिए, 5,000 अपने अकाउंट में रखिए, सेविंग रखिए उसको। सेविंग रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्या पता कब किस चीज के लिए आपको जरूरत पड़ जाए। और दूसरों से लेने से बजाय है कि जो आपके पास सेविंग है आप उसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं श्रोताओं दिखावे के खर्चे। आजकल ये बहुत ट्रेंड पर है, दिखावे के खर्चे बहुत ज्यादा चालू हो गए भैया। दिखावे के खर्चे इतने होते हैं ना कि अगर इतने 2,500 का सामान लिया है तो मैं इसे दुगना सामान लेने वाली हूँ। कई बार खर्च हमारी जरूरत से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर तय होता है। किसी के पास नया फोन आया है तो हमें भी चाहिए, कोई महंगे कपड़े पहन रहा है तो हमारा भी मन करता है, किसी ने नया बाइक लिया तो हमें भी लगता है कि नया बाइक ले लेते। मतलब हर चीज है ना हम दूसरों को देखकर ले लेते हैं जो हमारे अनयूज के लिए होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान की इनकम, जरूरत और प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तय करना सही नहीं है, इसीलिए अपनी कमाई के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना जरूरी है। क्या आपने कभी सिर्फ किसी को देखकर कोई चीज खरीदी है? खुशी में तुमसे पूछना चाहूंगी, तुमने गलती की हो कि नहीं यार इसने ये ड्रेस लिया है या कोई भी सामान हो तो तुम्हारे मन में आया है?
0: नहीं, मैंने किसी को देखकर तो शॉपिंग नहीं की है कि उसने ये खरीदा तो मैं भी ये खरीदूंगी। पर हाँ एक बार ही ऐसा हुआ था, राखी फेस्टिवल था आई रिमेम्बर, तो मैं और मेरी बहन मार्केट गई शॉपिंग करने के लिए। नॉर्मल सामान हम खरीदने के लिए गए थे पर हमें एक ड्रेस इतनी पसंद आ गई कि हमने उसको ले लिया।
1: अच्छा।
0: दोनों ने कि चलो दोनों ले लेते हैं और ड्रेस ले लिया, लेकिन बाद में हमने सोचा कि यार अभी तो हमें इस हैवी ड्रेस की नीड ही नहीं थी क्योंकि कोई फंक्शन भी नहीं था। और आपको पता है कि हैवी ड्रेस ऐसे पहन भी नहीं सकते हैं, कोई पार्टी होती है कोई फंक्शन होता है तभी हम पहनते हैं। तब मुझे वहां पर बहुत अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
1: मैं बचपन में ये चीजें करती थी।
0: ओके।
1: हाँ, जब देखती थी ना अच्छा आज स्कूल में ये ड्रेस पहन के आया तो मैं भी घर जाके जिद करती थी,
0: लेकिन मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए।
1: लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और खुद के पैरों पर मैं खड़ी हुई हूँ तो अब मुझे रियलाइज होता है कि उस टाइम की लाइफ और इस टाइम की लाइफ, अब मैं मतलब जो चीज मुझे जरूरत नहीं होती है मैं नहीं खरीदती, चाहे कुछ भी हो जाए।
0: रीना कहते हैं ना कि शौक तो पापा के पैसों से ही पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाती है।
1: सही बात है। चलिए आगे भी हम बात करेंगे। अब
0: दोस्तों के साथ शाम बिताने का मजा ही अलग है, चाय हो, खाना हो, मूवी हो या फिर कहीं घूमने का प्लान। दोस्तों के साथ समय जल्दी गुजर जाता है, क्यों रीना?
1: ये तो बिल्कुल सही कहा।
0: हाँ, लेकिन कई बार इस मस्ती में ना बजट भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। दोस्त कहते हैं चल ना आज खर्च कर देते हैं और हम भी सोचते हैं कि एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो तब पता चलता है जब महीने का लास्ट डे आता है और जब हम बजट का हिसाब लगाते हैं। इसीलिए दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए लेकिन अपनी फाइनेंशियल लिमिट को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप कभी भी कहीं अब नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं ना तो हम मना नहीं कर रहे हैं जाइए, लेकिन अपने बजट के अनुसार खर्च कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों के साथ फ्लो में कि यार चल मैं तुझे उस रेस्टोरेंट में खाना खिला, चल मैं वहां तुझे लेकर चल, उस चक्कर में फिर हमारा जो बजट है ना वो गड़बड़ा जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो, बाकी लाइफ को एंजॉय करो यार, और क्या है जिंदगी में। लेकिन पैसा भी सेव करके रखना बहुत जरूरी है।
1: तो अब तुमने पैसों की बात करी ही है तो मैं पूछना चाहती हूँ पैसे बचाना क्यों मुश्किल है? कई लोग कहते हैं हम पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हम बचत को महीने के अंत में बची हुई रकम मान लेते हैं। पहले सारे खर्च होते हैं, फिर अगर कुछ बचा तो सेविंग, लेकिन अगर हम शुरुआत में ही अपनी इनकम का एक हिस्सा अलग रखने की कोशिश करें तो सेविंग की आदत बनना आसान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रकम बहुत बड़ी हो, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए सेविंग में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कम इनकम, ज्यादा खर्च या प्लानिंग की कमी? अक्सर ये सारा चीज आपने देखना होता है, तभी आप पैसे बचा पाएंगे, अदरवाइज पैसे बचाना बहुत मुश्किल होता है।
0: रीना, मुझे बचत से याद आया कि बचपन में ना हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते थे कि पैसों को कैसे सेव करके रखना है, पैसों को कैसे जोड़कर आपको रखना है, बचत करनी है। छोटे थे ना बचपन में, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें मिट्टी की गुल्लक लाकर दी थी, मेरे भाई को भी और मुझे भी। तो हम जब स्कूल जाया करते थे तो एवरी डे पापा जी हमें 10 रुपए दिया करते थे, बड़े भैया को भी और मेरे को भी। तो मैं स्कूल लेकर जाया करती थी और 5 रुपए मैं अपने गुल्लक में जमा किया करती थी। तो और ऐसे करते करते काफी समय हो गया एंड मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए और वहीं पर भैया की गुल्लक में बस 3-4 सिक्के ही। तो उस समय पे फिर मम्मा ने कहा कि अच्छा बच्चों, आज देखते हैं तुम्हारे गुल्लक में कितने पैसे हैं, देखते हैं तुमने कितने पैसे जोड़े हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं अपने गुल्लक लेकर आती हूँ उठाकर। तो मैं तो खुशी खुशी अपने गुल्लक लेकर आई, इतनी भारी। मम्मी कहती है अरे कब से पैसा जोड़ रही हो तुम। मैंने कहा मम्मी एक बार गुल्लक को जरा तोड़ो तो सही। और जब गुल्लक तोड़ी तो इतने सारे पैसे निकले, और मेरे बड़े ब्रदर के गुल्लक से सिर्फ कितने पैसे निकले थे, आई रिमेम्बर सिर्फ 200, और मेरी गुल्लक से निकले थे 1000। वो मैंने जोड़े थे पैसे और मेरे पापा मेरी मम्मा बहुत खुश हुए कि चलो हमारी बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया है, पैसा जोड़ना सीख गई है। हाँ। लेकिन अब बड़े हो गए तो खर्च थोड़े ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हाँ
1: खर्चे ज्यादा करते, लेकिन गुल्लक अब देखने को बहुत कम मिलती है।
0: कम मिलती है हाँ।
1: अब हर कोई बैंक में सेविंग कर रहा है,
0: अब न्यू स्टाइल की गुल्लक आ गई है। और हाँ, हमने बच्चों की बात की है ना रीना, तो बच्चों की पैसों की वैल्यू ना, अगर बच्चे को हर जरूरत की चीजें तुरंत मिल रही है तो उसे पैसों की मेहनत समझना मुश्किल हो सकता है, मतलब उसको पैसों की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर उसे छोटी रकम संभालने, जरूरत और इच्छा का फर्क समझाना और थोड़ा पैसा बचाना सिखाया जाए तो धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप हो सकता है। बच्चों को बचत सिखाने का मतलब उनकी हर इच्छा रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करना सिखाना है। आपके घर में बच्चों को पैसों में बचाने की आदत आपने सिखाई है या नहीं? क्यों, बताओ बताओ। हाँ, तुम्हारे घर में भी तो वो छोटी गुड़िया है, बताओ उसको सिखाया है आपने या नहीं सिखाया है?
1: पैसे भैया कलेक्ट कर रखे उस लड़की ने।
0: अच्छा जी। अगर कोई रिलेशन वाले आते हैं, जैसे मेहमान आते हैं, तो वो भी पैसे देकर जाते हैं, है ना? और छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा देते हैं।
1: मैं बोलती हूँ ना मेरे पास 100 रुपए, तो कहती हूँ 100 रुपए, मेरे पास 3000 है।
0: अरे बाप रे, क्या बात है यार।
1: वो बहुत सेविंग करती है, अभी छोटी है। बहुत से बच्चे बाहर के खाने के जिद
0: हाँ, करते बहुत। दोस्तों हम बस यही कहना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को भी सिखाइए कि पैसा देखिए बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और बच्चों को ना हर चीज, जैसे अगर आपने भी कहा रही ना कि क्या होता है, कई बार बच्चे एक दूसरे को देखकर जिद करने लगते हैं कि मुझे भी यही चाहिए। हाँ, सेम टू सेम चाहिए।
1: अगर तुम भी कुछ दोगे ना खाने के लिए तो बोलेगी मैं नहीं लूंगी।
0: हाँ, तो मैं बोल रही हूँ वही कि बच्चे जैसे जिद करते हैं चीजों के लिए, वो चीजें तुरंत ना दें, क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर बच्चे को समझ में, वो बड़ा होगा तो उसकी आदत भी वही बन जाएगी। पैसा हो या ना हो, लेकिन उसको वो चीज चाहिए तो चाहिए। तो आप ऐसा मतलब ठीक है, जो जरूरत की चीजें हैं वो दिलाइए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज बच्चा जिद कर रहा है तो उस पर थोड़ी सी आपको रोक लगानी चाहिए।
1: ये तो सही करा है तुमने। और अब हम बात करेंगे पैसे और रिश्ते।
0: ये तो सबसे जरूरी है, बहुत मोस्ट टॉपिक आपने लिया है यार, पैसे और रिश्ते।
1: पैसा सिर्फ हमारी जरूरतें से जुड़ी नहीं है, कई बार रिश्तों में भी इसकी भूमिका बहुत होती है। परिवार में खर्च को लेकर डिस्कशन हो सकता है, दोस्तों के बीच उधार का मामला आ सकता है, या किसी की मदद करते समय हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखनी पड़ सकती है। किसी की मदद करना अच्छी बात, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर खर्च करना बाद में परेशानी बन सकता है। इसीलिए पैसे के मामले में साफ बातचीत और समझदारी जरूरी है। आपके हिसाब से रिश्तों में पैसे को लेकर सबसे जरूरी चीज क्या है, भरोसा या अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों चीज बहुत जरूरी है, भरोसा भी और समझदारी भी। अगर भरोसा भी है और समझदारी भी है तो मान लीजिए आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। कुछ रिश्ते होते हैं जो पैसे
0: पैसों पे ही चलते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है, बस साथ रहो यही हमारे लिए सब कुछ है। और वहां पर फिर हम बचत और सपने भी देखने लग जाते हैं, है ना। हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, किसी को अपना घर चाहिए, किसी को घूमने जाना है, किसी को नई चीज खरीदनी है और कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जमा करना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते हैं, उनके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है। सेविंग इसकी प्लानिंग का एक हिस्सा हो सकता है। अगर हम अपने किसी बड़े सपने को छोटे फाइनेंशियल गोल्स में, दिशा साफ हो सकती है। आपका वो कौन सा सपना है जिसके लिए आप सेविंग करना चाहते हैं?
2: वो तो हमारी ऑडियंस बताएगी। अब सब चीजें हम ही थोड़ी ना बताएंगे भाई, आप भी कुछ बताओ। ऐसे बैठे बैठे बस मुस्कुरा रहे हो आप, हाँ। चाहे आप कार में हो या फिर घर में हो, तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आप भी तो हमें बताइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो चलिए दोस्तों, बातें तो हम करते ही रहेंगे कंटिन्यू, लेकिन एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बातें।
3: क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या।

0: बताइए आपको जो जो जरूरत की चीजें हैं, जो सामान है वो आप ऐड कीजिए, बाकी पैसा आप अपना अकाउंट में सेव कर लीजिएगा, क्यों रीना? फिर उससे आपको इश्यू भी नहीं होगा कोई।
1: एक और टॉपिक है जो मुझे लगता है इस पर बात करना बहुत जरूरी है।
0: हाँ,
1: उधार लेना और देना।
0: उधार लेन देन जो होता है,
1: दोस्ती और रिश्तेदारों के बीच पैसों का लेन देन कभी कभी संवेदनशील विषय बन जाता है। जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उधार देते या लेते समय दोनों तरफ की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी रकम से शुरुआत हुई बात रिश्ते में तनाव तक पहुंच जाती है। इसीलिए पैसे के मामले में क्लियरिटी और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। अगर किसी को पैसे की जरूरत हो तो मदद करने से पहले अपनी कैपेसिटी जरूर होना चाहिए, तभी आप किसी को पैसे उधार दीजिए। अगर आपके पास लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो देखिए मुझे लगता है कि क्लियरिटी बहुत जरूरी है। साफ मना कर दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत से सोचते हैं कि रिश्तों में खराबी आ जाएगी, दोस्तों में खराबी आ जाएगी, और इस चक्कर में वो किसी से लेकर दे देते हैं, लेकिन वो समय पर नहीं चुकाते हैं तो इसका जो लेन देन है वो मुश्किल पड़ जाता है।
0: उसमें ना फिर उस सिचुएशन में क्या होता है ना रीना, रिश्ते ज्यादातर खराब भी होते हैं। दोस्तों देखिए अब हमारे जाने का समय हो गया है ना, और जाते जाते हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है, अहम है, क्योंकि पैसों के बिना भी लाइफ अधूरी है ना। तो आप पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा पूरा ही उड़ा देंगे। आप पैसा खर्च करो, लेकिन अपने बजट के अनुसार बैलेंस बनाकर रखो दोनों चीजों में। आप पैसे शॉपिंग भी करो एंड घर के खर्च भी करो, लेकिन थोड़ा पैसा सेविंग भी करो, सेव करो, वो बहुत जरूरी है आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या प्रॉब्लम हो जाए, क्या लाइफ में इश्यू हो जाए। इसीलिए पैसा सेव करो, लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जियो। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलेंगे नई बातों के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। नमस्कार, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और हाँ सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल लिसनर्स।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए फुटसो ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनवर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
4: आज मेरी हेड एक्सलेंसी के प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने को कंट्रीब्यूट करेगी।
0: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर या किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
8: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
9: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में DRF की 10 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल

0: की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहे ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस बदलाव की जो सिर्फ सड़कों और इमारतों में नहीं बल्कि लोगों की सोच और जिंदगी में भी दिखाई देता है।
1: और आज का हमारा सफर है पूर्वांचल के उस शहर का जिसकी पहचान साहित्य, संगीत, कला और अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत से है।
0: आजमगढ़ एक ऐसा शहर जहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं। यहां के युवाओं ने शिक्षा, कला, साहित्य और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन आज आजमगढ़ की कहानी में एक नया अध्याय भी जुड़ रहा है, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमिता।
1: आजमगढ़, बिल्कुल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने आजमगढ़ को प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से बेहतरीन कनेक्टिविटी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने का क्षेत्रीय आवागम और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
0: यानी तस्वीर बदल रही है, रास्ते बेहतर हो रहे हैं और इन्हीं बेहतर रास्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं आजमगढ़ के युवा।
1: क्योंकि आज का युवा सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं चाहता, वह अपना काम शुरू करना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करना चाहता है।
0: और इसी सोच को ताकत देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यानी CM युवा।
1: जरा सोच ये, पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा के मन में कारोबार शुरू करने का सपना हो, आइडिया हो, मेहनत करने का जज्बा हो, लेकिन शुरुआत करने की पूंजी,
0: यहीं पर कई सपने रुक जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता या सहयोग मिल जाए, मार्गदर्शन मिले और सरकारी सहायता का सहारा मिले, तो वही सपना एक उद्यम का रूप ले सकता है।
1: CM युवा का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार और उद्यमिक की दिशा में आगे बढ़ाना। योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में परियोजना के लिए लगभग 5 लाख तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही परियोजना लागत के अनुसार 10% तक का मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है।
0: और इसका लक्ष्य भी बड़ा है, हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर तैयार करना।
1: यानी संदेश साफ है, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने।
0: और आजमगढ़ में इस पहल का असर भी दिखाई दे रहा है। हालिया उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 12 अगस्त 2026 तक CM युवा के तहत आजमगढ़ में 5,745 इकाइयों के लिए ऋण वितरण हुआ और जिला इस मामले में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है।
1: वाह, यानी आजमगढ़ में सपने देखे नहीं जा रहे, उन्हें कारोबार की शक्ल भी दी जा रही है।
0: अब मिलते हैं हमारे पहले लाभार्थी से, ये उच्च शिक्षा प्राप्त

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

एक बार स्वागत है आपका फिर से एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें होंगी दिल से दिल की खूब सारी।

0: जब दोस्त होते हैं ना साथ में, तब सारी टेंशन जो है इधर उधर हो जाती है, कोई अपनी बात कोई अपनी बात कह कह के सारी बातें जो होती है ना सब निकाल देता है। तो चलिए आप भी अपनी कोई दिल की बात निकालिए 9837896896 पे कॉल करके। हमारे पहले लिसनर हमें मिल गए हैं और चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो इस समय। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लगता है आपने अभी खाना नहीं खाया है साहब। तो गोली वोली लिए नहीं लिए? चलिए आपको कर देते हैं आराम, आप फटाफट बताइए आपकी फरमाइश क्या है आज।
1: आज हमारी फरमाइश है दो रास्ते।
0: दो रास्ते से कौन से, कांट रोड वाले, दिल्ली रोड वाले?
1: अरे जहां क्या, दो रास्ते निकाल दो।
0: जरूर जरूर, दो रास्ते जरूर जरूर, आपके दो रास्ते भी आएंगे साहब, हमारे पास ही आएंगे दो रास्ते। और आप करिए आराम और थोड़ी सी दवाई का लीजिए, मतलब कहते हैं ना पूरे पानी के साथ। ठीक है जी, बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खमकेगी। जरूर जरूर जरूर खनकाएंगे सर, तो जरूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। ओके नरेंद्र जी, तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़ गए थे नरेंद्र जी और कहते हैं कि हमें दो रास्ते मूवी का सॉन्ग सुनना है, तो जरूर उनकी ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी। अगर आपकी भी कोई ख्वाहिश है ना तो जरूर हमें बताइए, ख्वाहिश ही बता दीजिएगा फटाफट। तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। 9837896896 पे जरूर मुलाकात होगी आपसे।

0: दोस्ती वो नहीं जो हर रोज बात करे, दोस्त जो दिल से साथ रहे। फासले चाहे कितने भी क्यों ना हो, दोस्त हमेशा दिल के पास ही रहता है साहब। और बिल्कुल सही, जब होता है ना दोस्त के साथ चाय समोसा या कोई भी, कहते हैं ना कोई भी आपका पसंदीदा खाना या पसंदीदा कोई आइटम, फूड आइटम, जब भी आप उसके साथ खा रहे होते हैं तो पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं। सारी कमियां, सारे नुक्स तभी निकल जाते हैं साहब, ये चीज़ कमी हो, ये चीज़ वो है। और दोस्त बड़े प्यार से मुस्कुरा के कह देता है, भाई खा ले यार, कहाँ इन चक्करों में पड़ा है तू। तो चलिए करते हैं नए कॉलर से बात और पूछते हैं वो क्या कह रहे हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: शाकिर बोल रहा हूँ मैं, सर।
0: शाकिर साहब कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं इस समय? शाकिर साहब आप मुरादाबाद में कहाँ से, किधर से बात कर रहे हैं?
1: मियां कॉलोनी से बात कर रहे हैं सर।
0: मियां कॉलोनी से, और इस समय कैसा हो रहा है आपकी कॉलोनी का मौसम?
1: मौसम बरसात का मौसम है और खूब पानी पड़ रहा है सर।
0: तो ऐसा हुआ है कभी शाकिर साहब, आप अपनी कॉलोनी से बाहर निकले हो तो पानी नहीं पड़ रहा, तो कॉलोनी में वापिस आए तो भाई साहब खूब बरसात हो रही है?
1: जी, खूब। हाँ ऐसा हुआ, कई बार हुआ है, माप ले आने के टाइम पे ऐसा होता
0: है। कई बार हुआ है आपके साथ ऐसा?
1: जी।
0: तो कोई शायरी वायरी का शौक रखते हैं? अरे सर जरूर जरूर जरूर सुनाइए सर।
1: मगरूर आंधियां दरख्त को उखाड़ देती हैं, मगरूर आंधियां दरख्त को उखाड़ देती हैं।
0: क्या बात है,
1: आप वही रह जाती है जो लटक जाती है।
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, आपने दो लाइनों में पूरा सार बता दिया साहब, बहुत ही अच्छी बात। तो कौन से गाना है, कौन सी आपकी फरमाइश है जो इस समय दिल के बहुत करीब है, जो सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी का नाम है आरजू सर।
0: आरजू लता मंगेशकर की आवाज में तो सारे गाने ही ऐसे होते हैं, मतलब कहते हैं ना बार बार रिवाइंड करके सुनना चाहते हैं, रिपीट सुनना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया आपने गाना, किसे डेडिकेट करना चाहते हैं आप? बेदर्दी बालमा
1: ये घर की फैमिली है हमारी,
0: सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप?

0: हमारे घर में ही जो हमारी मैडम है।
1: अच्छा हाँ सब ऐसी ऐसे आवाज में रुक रुक के बोल रहे हैं आपकी मैडम बगल में ही है। चलिए कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं साहब, कभी कभी नज़रों से भी काम हो जाता है।
0: जी
1: ठीक है शाकिर साहब, आपकी फरमाइश आपकी मैडम तक ज़रूर पहुँचेगी।
0: ओके
1: ओके सर। शाकिर साहब ने तो बिल्कुल चुपचाप अपने अंदाज में कह दिया साहब मेरी ये फरमाइश है, और वो दो लाइनें बोल भी दी लगे हाथ, तो आपकी भी कोई ऐसी दिल की निकली हुई बात है तो ज़रूर 9837896896 पे फटाफट मैसेज या कॉल कर दीजिए। हमारे पास आपके लिए कोई बेदर्दी बालमा है तो उनके लिए भी आप फरमाइश जरूर दे सकते हैं। जो बोल के तो गए हैं आपसे कि बस आ रहे हैं 10 मिनट में, मगर वो 10 मिनट से कब वो 1 घंटा लगा देना उन्हें भी नहीं पता चला।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: था आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें हो रही हैं दिल की और आपकी हसरतों की। क्या गाना है साहब, और कहते हैं ना कुमार सानू जी की आवाज़ जब भी आपके कानों में पड़ती है तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि भाई साहब अब तो मेरे दिल की बात ही कहने वाले। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सुनते हैं अपने दूसरे लिसनर्स की भी दिल की बातें। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है सर।
0: सर अपना नाम बताइए हमारे सभी लिसनर्स को और बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
1: जी सर, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और सर गुप्ता और आगे बोलना की जारत के पीछे नदी पैसे बोल रहे हैं।
0: तो नदी के पार हैं या नदी के उस पार हैं? क्योंकि नदी में इस समय बहुत उफान है साहब। कहीं इधर उधर मत जाइएगा, नदी से थोड़ा दूर रहिएगा।
1: अच्छा साहब, लव स्टोरी का गाना सुनना है।
0: कौन, लव स्टोरी का?
1: ये तेरी याद आ रही है।
0: और आपकी उम्र क्या, उम्र क्या है इस समय? आपकी उम्र क्या है इस समय?
1: हमारी उम्र ऐसी होगी 50 के लगभग होगी सर।
0: तो आप पता नहीं किसकी याद आ रही है आपको, किसकी याद आ रही है बता दीजिएगा सभी को। कौन सी शायरी सुनाएंगे आज?
1: वो आप कहेंगे सर।
0: हम नहीं कह रहे सर आपसे, आपको जो अच्छी लगे, जो दिल के करीब हो वो सुना दें आज।
1: ये बात आप जरूर सुनवाते हैं, जरूर आपने ऐसी बात करते हैं वो खुद ही सुनाएगा शायरी आपने।
0: जरूर जरूर सुनाइए आप कोई एक शायरी बढ़िया सी।
1: खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे,
0: क्या बात है,
1: मेरे दिल में उतर जाएंगे, महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर रहते हुए भी पास नजर आएंगे, दिल उनके लिए ही मचलता है, ठोकर खाता है फिर संभलता है, किसी ने इस कदर कर लिया दिल पे कब्जा, दिल मेरा है पर उनके लिए धड़कता है।
0: क्या बात है साहब, आज तो कई सारे दिल धड़केंगे आपके लिए, इतनी बढ़िया शायरी जो सुनाई है आपने।
1: बस आपकी मेहरबानी है।
0: तो उस्मान जी आपकी भी दिल की जो धड़कन है बढ़ाते हैं और आपका पसंदीदा गाना भी जल्दी सुनाते हैं। धन्यवाद उस्मान जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे उस्मान जी, जो हमेशा दिल की बात एकदम बेधड़क बोल देते हैं। तो आप भी अपने दिल की बात बेधड़क बोलें, 9837896896 पर कॉल करें और कहें कि भाई साहब क्या बात है, कोई तो ऐसी बात है जो दिल की बात आपके पास तक पहुंचे। और कहते हैं ना मस्ती यार अपनी जगह है, मगर सच में जब दोस्त साथ में होते हैं ना तो दोस्तों की बातें ही कुछ होती हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको बिना बताए ना मतलब सब बातें उन्हें पता चल जाती है, एक बार आपको देख लिया तो खुद ही पूछ लेते हैं भाई कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, और आप कहते रहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तब भी यही बोलता है कि भाई मुझे सब कुछ पता है, कुछ तो हुआ है, तू यही बोल दे। तो बस

यही दोस्ती है, उन्हीं के ऊपर एक शायरी जो आपके आस अगल बगल में बैठे हैं और दोस्ती का शब्द सुनते ही मुस्कुरा रहे हैं। कुछ दोस्त जिंदगी में ऐसे आते हैं जो दोस्त कम और परिवार ज़्यादा बन जाते हैं। हंसी हो या गम का कोई पल, वो हर वक्त हमारे साथ नज़र आते हैं। तो आपके जीवन में भी आपके पास वो दोस्त अगर बैठा है ना और आपके आसपास है, तो ज़रूर कॉल करके कह दीजिएगा, भाई कहाँ क्या कर रहा है तू, कहाँ घूम रहा है। तो चलिए भी सुनते हैं बढ़िया सा गाना जो उस्मान साहब ने डेडिकेट किया, उसके बाद लेते हैं बढ़िया सी कॉल, शायद आप ही की होगी वो, 9837896896 पर।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। और कहते हैं ना साहब, याद तो आती है, याद चाहे किसी भी रूप में आए, याद तो आनी ही है। खूब सारा टाइम ऐसे ही बीत जाता है। 9:47 हो गए हैं भाई साहब, घर से तो निकले थे 9 बजे, मगर अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं, ये कह के कि बस आ रहा हूँ 10 मिनट में। तो जल्दी से भाई साहब फ़ोन को साइलेंट मोड से हटाए और चुपचाप घर का रास्ता पकड़ लें, ये ना कहें कि आज तो मैं गाने सुनने में ही बिजी हो गया था। तो हाँ, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब तो सिर्फ सीधे घर जाना ही पड़ेगा। जाने से पहले लेते हैं एक और कॉल, क्योंकि अब हमारे लिसनर भी हो गए हैं तैयार अपने दिल की बात कहने के लिए। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया अखिल जी, आप सुनाइए, आप तो ठीक?
0: बढ़िया सर, बढ़िया। और क्या कर रहे हैं आप, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं तौफीक हुसैन बोल रहा हूँ, लाइन बार कुंदनपुर ढक्का से।
0: ढक्का से
1: जी,
0: ये ढाका से तो नहीं बोल रहे हैं साहब? पड़ोसी मोल के कहीं पता चला, बात करते करते ढाका पहुंच गए आप।
1: आपके पड़ोसी है, पड़ोस से ही बोल रहे हैं ढक्का
0: साहब? हाँ, ये तो हमें पता चल गया है कि आप हमारे पड़ोसी हैं। और क्या करते हैं आप तौफीक साहब?
1: अखिल जी मैं स्टील पॉलिस का काम करता हूँ।
0: क्या बात है साहब, आपने कईयों को चमका दिया, इसका मतलब
1: जी आपकी आवाज की तरह।
0: मेरी आवाज?
1: जी आपकी आवाज बहुत पसंद है मेरी वाइफ को।
0: अच्छा अच्छा, धन्यवाद साहब। आपको पसंद नहीं है?
1: नहीं मुझे भी है।
0: हाँ साहब, आपको पसंद होना जरूरी है पहले।
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए सर, क्या हो रहा है इस समय?
1: बस बैठे थे, आपका प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: तो कितना कितना टाइम हो गया आपको चमके हुए, मतलब आपकी शादी को?
1: जी लगभग 13 साल हो गए।
0: तो साहब आप अच्छे से चमक गए होंगे फिर।
1: जी बहुत अच्छे से।
0: तो कौन सा कोई एक शायरी, कुछ
1: सारा एक्सपीरियंस है आपको भी
0: सर, कोई एक शायरी सुनाइए सर इसी बात पे।
1: एक शायरी, एक बहुत पुरानी शायरी है, शायद आपको पसंद आए।
0: 13 साल पुरानी?
1: पुरानी
0: जरूर जरूर सर, आएगी, पसंद आएगी।
1: नजर बाग में नजर को देखा।
0: क्या बात है।
1: नजर बाग में नजर को देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर को घायल नजर से देखा।
0: क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप भी कहीं ना कहीं घायल हुए पड़े हैं इस समय।
1: जी लव मैरिज है मेरी।
0: हाँ तो सर घायल ही हैं आप फिर तो।
1: जी बिल्कुल।
0: तो कौन सा गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं आप?
1: पर वैसे वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी एक बार मैं मतलब उस जो पिछला टाइम है उस जिंदगी को मतलब महसूस करता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: उसकी लाइफ आज भी यादें मतलब आती हैं।
0: जरूर जरूर बोलिए, वो भी बताइए।
1: आदमी को कभी भी बोर नहीं होना चाहिए आप अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, कुछ ना कुछ नयापन ढूंढते रहना चाहिए, मगर इतना भी नयापन ना ढूंढ ले कि जो पुराना वाला है वही बेलन लेके भाग जाए।
1: वो असल में नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना है वो तो समझ लो सोना है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने साहब। और हमारे हाँ हाँ बोलिए।
1: जो हमने हीरे की तरह ये तराशा है, तो ऐसे मान लीजिए जो हमारी जो पसंद होती है वो एक हीरा होता है।
0: हाँ जी,
1: वो कभी भी खराब नहीं निकल सकती।
0: बिल्कुल सही कहा आपने साहब।
1: ही बात तो मुझे एक अपने दादाजी की एक शायरी और याद है भाई।
0: अच्छा, आपके दादाजी की?
1: जी दादाजी सुनाते थे मुझे।
0: हाँ हाँ बताइए साहब।
1: के दोस्ती करे तो हीरे से,
0: दोस्ती करे तो हीरे से,
1: तो घिसते घिसते रह जाए फिर भी लगा ले सीने से।
0: क्या बात कही साहब, क्या बात।
1: दोस्ती ना करे कंजरे और कमीने से।
0: अच्छा ये भी है सर, जो ना करे जो सुन रहे होंगे ना इस समय, जो गाड़ियों में बैठ के सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कहाँ है तौफीक भाई, कहाँ हो, इधर आओ जाओ।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, ये रियल बात है, ये हकीकत है बिल्कुल।
0: नहीं नहीं आज बैठा लेंगे आपके सब गाड़ी में। हाँ हाँ सर पूरी करिए बात।
1: दोस्ती ना करे कंजरे और कमीने से, मुफ्त में बदनाम हो धनिया और पुदीने से।
0: सही है, आज इसका मतलब आपकी खाने में धनिया और पुदीना दोनों ही डला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, साथ में पिज्जा भी है।
0: पिज्जा भी खा रहे हैं आप? चलिए आप गाना बता दीजिए साहब, अब वरना आपको पता नहीं क्या क्या और खाना पड़े जल्दी से।
1: पता नहीं बातें भी कब तक हो जाए, ये भी इसका भी कोई पता नहीं है।
0: नहीं नहीं बहुत ही अच्छा लगा तौफीक साहब, आपने बहुत ही मतलब कहते हैं ना, जब थोड़ी सी दिल की बातें निकलती है ना और दिल तक पहुंचती हैं, तो वो ऐसी ही होती हैं बातें सर।
1: जी बिल्कुल, और मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अखिल जी।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा तौफीक साहब, और पूरे मुरादाबाद में जो इसमें
1: दिल संभल जा जरा,
0: दिल संभल जा जरा। हाँ सर दिल तो संभालना ही पड़ेगा आपको, 13 साल जो हो गए। तो चलिए तौफीक साहब जरूर ये गाना हम आपके लिए प्ले कर, आप डेडिकेट किसे किसे करना चाहते हैं, दोस्तों को, वाइफ को?
1: नहीं नहीं है, मैं अपनी वाइफ को करने जाता हूँ।
0: हाँ सर, वो समझ में आ गया, आपके पास ही है वो, मतलब 10 मीटर की दायरे में होंगी, तभी आपने सिर्फ एक ही एकदम बोल दिया।
1: मेरे लगभग 2 मीटर की दूरी पे है।
0: हाँ तो ठीक है सर, आप भी संभल संभल के गाना सुनिएगा ये।
1: ठीक है, थैंक यू।
0: ओके सर, तो तौफीक साहब ने कर दी आज दिल की बात श्रोताओं, और आप भी करें अपने दिल की बात 9837896896, क्योंकि सिर्फ बचे हैं 10 मिनट, उसके बाद हमें भी घर जाना है साहब। तब तक ये गाना सुनते हैं और लेते हैं थोड़ा सा आनंद।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: जब लाल हो लोहा तब मार हथौड़ा,
2: जब तेल चढ़ा

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हाँ जी, आपका अपना ही है, क्योंकि आपके दिल की बातें जो आती हैं हमारे पास। अब चलने का समय हो गया, 10:02 हो गए साहब, थोड़ा सा ओवर टाइम हो गया, मगर कोई बात नहीं, आपके लिए तो इतना भी चलेगा। तो अब चलने से पहले पढ़ते हैं हमारे श्रोताओं के जो मैसेजेस आए हुए हैं ना, संदेश आए हुए हैं, और उसके बाद जो हमारे कॉलर लाइन पर हैं उनसे भी बात करते हुए करेंगे शो की एंडिंग। मगर पहले पढ़ते हैं कुछ मैसेजेस। पहला मैसेज आया है हमारे पास कि अखिल भाई, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे स्कूल टाइम का दोस्त है और आज भी हमारी दोस्ती वैसी ही है। क्या बात है साहब, स्कूल की दोस्ती अगर सालों बाद भी वैसी रहे ना तो सच में कमाल है। बिल्कुल, वो दोस्त है ही आपका बिल्कुल जिगरी, जहां कह दो वहां पहुंच जाएगा आपके पास। मैसेज करने वाले भाई ने अपना नाम नहीं लिखा है, मगर कोई बात नहीं साहब, अगली बार जब भी हमें आप मैसेज करें तो ज़रूर बताइएगा। दूसरा मैसेज है हमारे पास कुणाल जी का, ये लाजपत नगर से कह रहे हैं, हम चार दोस्तों का ग्रुप है, लड़ाई रोज़ होती है लेकिन दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती। अरे साहब बिल्कुल सही कहा, लड़ाई तो चलती रहनी चाहिए, मगर रोज़ रोज़ भी लड़ाई मत करो साहब। अगर आप लोगों की शादी हो गई तो बस सोच लो, बाकी वो काफ़ी हैं लड़ाई करने के लिए, अपने में क्यों लड़ना भाई। अगर कोई ऐसा है ना बाहर वाला दोस्त, कोई कुछ कह दे तो पूरा ग्रुप एक साथ हुआ था, ये तो मुझे पता है। चारों भाई साहब एक साथ चार स्तंभ की तरह खड़े हुए थे। तो आप भी अपने दोस्त के लिए कोई ना कोई हमें मैसेज ज़रूर भेजिएगा। ये जो दोनों लिसनर्स के हमारे पास मैसेजेस आए, हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए हम चलते हैं एंडिंग की तरफ और अपने लास्ट कॉलर से करते हैं बात। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, बढ़िया, आप बताइए।
0: बढ़िया सर, बढ़िया। हमारे सभी श्रोताओं को अपना नाम बताइए सर पहले।
1: आजम बोल रहा हूँ सर।
0: आजम जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं जॉब करता हूँ सर, फैक्ट्री में।
0: और इधर मुरादाबाद में आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जामा मस्जिद।
0: जामा मस्जिद से बात कर रहे हैं। तो आजम साहब, कुछ कोई दिल की शायरी, कोई दिल की बात आप कहना चाहेंगे सभी से?
1: जी जी जी, बिल्कुल, शायरी बोलूंगा मैं।
0: जरूर जरूर।
1: वो आए जब पर्दे में, बे पर्दा हो गए मुझे पर्दे में देखकर।
0: क्या बात, बहुत बढ़िया साहब, आपने सारी बात पर्दे में रह के कर दी आपने। ऐसे ही एक पर्दा मेरी माइक के आगे लगा, मगर आपकी सारी बातें उस पर्दे को चीरते हुए माइक पे पहुंच गई है। तो क्या गाना सुनना चाहेंगे, कौन सी दिल का फरमाइश है जो आपके?
1: खान मूवी का गाना है वो, और वो है पैसे की पहचान जहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं।
0: क्या बात है सर,
1: सबसे बेस्ट लगता है वो गाना सॉन्ग मुझे।
0: सर क्या बात है आप, मतलब मुझे गाना तो भले ही पुराना, मगर मुझे आप इतने पुराने नहीं लगते, मगर तब भी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। रफ़ी साहब की आवाज़ का ये गाना है और बहुत ही बढ़िया गाया उन्होंने। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
1: हाँ सर, मैं अपने फ्रेंडों को, मतलब अपने रिश्तेदारों के बारे में, क्योंकि आजकल कोई समझता नहीं है सर कुछ भी।
0: हाँ सर, को भी ये तो है सर,
1: आजकल बिजी हैं सब लाइफ में, आप सब बातें खत्म हो गई जो पहले थी सर।
0: हाँ सर, पहले का जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, अपने में भी इतने व्यस्त रहो कि दूसरा वाला कहे यार चलो ये तो मौजी बंदा है। तो बहुत ही बढ़िया, आपके फ्रेंडों को भी और आपके रिश्तेदारों को भी ये गाना जरूर डेडिकेट करेंगे सर। चलिए आजम जी, ओके। तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे आजम साहब, अभी जो कह रहे हैं, हाँ नहीं नहीं नहीं साहब, ये आजम साहब अपने मुरादाबाद के ही जुड़े हैं हमसे। तो इनकी भी ख्वाहिश पूरी होगी और अब हम चलते चलते आप लोगों के लिए एक शायरी तो कहते ही जाएंगे साहब। रिश्ते बहुत मिलेंगे जिंदगी के सफर में, लेकिन दोस्ती हर किसी से नहीं होगी। रिश्ते बहुत मिलेंगे जिंदगी के सफर में, लेकिन दोस्ती हर किसी से नहीं होगी। जो दोस्त दिल से आपका साथ निभाए, उससे खूबसूरत कोई दौलत नहीं होगी। तो उस दौलत को संभाल के रखिए साहब, ऐसा दोस्त कभी कभी मिलता है जो साथ में बिल्कुल कहते हैं ना, हर कदम पे आपके साथ रहता हो। तो चलिए अब इसी के साथ इस शाम की होगी विदाई, मस्ती हुई, हंसी हुई, दोस्ती की बातें हुई, कुछ तेरा तेरा साल की पुरानी बातें यादें आज ताजा हुई, और शायद आपने अपने किसी खास दोस्त को भी आज याद किया ही होगा जो जो ट्रैक आपने सुने होंगे। तो याद रखिए, जिंदगी कितनी भी लंबी है ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जिंदगी में कितनी खूबसूरत यादें बनेंगी ये काफी हद तक हमारे हाथ में है। तो दोस्ती के साथ जो है ना, दोस्तों के साथ हमेशा हंसिए, मिलिए, चाय पीजिए, पकौड़े भी खा लीजिए साहब, बिना वजह घूमने का समय निकाल लिए, क्योंकि बाद में ये छोटे छोटे पल जो है ना सबसे ज़्यादा याद आते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, बस चलते चलते लास्ट शायरी आपके और आपके दोस्तों के लिए। दोस्ती का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, हर दोस्त दिल के करीब हमारा होता है, दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, सच्चा दोस्त हमेशा दिल में हमारा होता है। तो मैं अखिल आपसे लेता हूँ इजाज़त, ये था दिल से दिल तक अखिल संग, और आज की शाम थी दोस्तों के नाम। मुस्कुराते रहिए, दोस्तों को संभाल के रखिए, और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़िए। हिंद न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़ी विशेष फिल्म। पावर्ड बाय ब्रजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, होटल MB ग्रीन्स क्लार्किन, राज कलेक्शन, ठाकुर राहुल सिंह श्री साई मीडिया एडवर्टाइजिंग PR एंड इवेंट्स, प्रभात मेडिकल स्टोर, मोहन ज्वेलर्स, मधुरम ग्रुप, हनुमान अंश स्पेशल इन इनिशिएटिव बाय हिंद न्यूज 9 एंड FM मुरादाबाद 89.6। एंट्री बाय इनविटेशन ओनली।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़िए। हिंद न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़ी विशेष फिल्म। पावर्ड बाय ब्रजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, SS ट्रेडिंग।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।